सुप्रभात। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आज दिन है बुधवार। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तीसरी तिथि तदनुसार 24 जून 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 28 सेकंड हो चुके हैं। हम उपस्थित हैं अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। इस सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यभर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरू में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमरीका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम

0: कुल उत्पादन का 28%, अरहर 27%, चना 17%, उड़द 12%, मटर 5%, मसूर और 11% में अन्य दाल हैं। 75% मोटे दाल को दाल में प्रसंस्करण करके ही खाया जाता है। दाल का प्रसंस्करण ग्रामीण स्तर से लेकर आधुनिक एवं बड़े स्तर तक किया जा रहा है। भारतवर्ष में 7,000 दाल मिल इकाई हैं, जो कि 110 से 120 लाख टन का प्रसंस्करण कर रहे हैं। इन इकाइयों में सीधे तौर पर 7,000 लोग जुड़े हुए हैं। रोजगार के साथ साथ यह इकाइयां उत्तमता वाली दाल भी प्रदान कर रही है। साथ ही यह क्षेत्र एक अच्छे व्यवसाय की संभावना को प्रकट करता है। जहां तक दाल व्यवसाय की बात है, तो यह क्षेत्र व्यवसाय के तौर पर एक अच्छा विकल्प है। समय में परिवर्तन आ रहा है। हमारा देश विकासशील से विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कि हम किस प्रकार अपने किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। इस समस्या को कुछ हद तक दूर करने में प्रसंस्करण उद्योग का एक अहम भूमिका निभा सकता है। हमें ग्रामीण स्तर पर छोटी इकाइयों से प्रसंस्करण स्तर को बढ़ावा देना है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हर किसान भाई किसी न किसी रूप में प्रसंस्करण इकाई से जुड़े। इसमें संभावना अपार है। देखिए, हमारे आसपास ग्रामीण स्तर पर विभिन्न प्रकार की इकाई, जैसे मोटे दाल से दाल बनाना, धान से चावल बनाना, तेल निकालने वाली मशीन, धान से चूड़ा बनाने वाली इकाई, आलू से चिप्स बनाने वाली इकाई, लेमन ग्रास से तेल निकालने वाली इकाई इत्यादि। इस प्रकार से हम महसूस कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में संभावनाएं अपार है। प्रसंस्करण की सबसे बड़ी बात है कि किसान भाई या उद्यमी इसमें अपने चीजों का मूल्य का निर्धारण स्वयं ही कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर गोटे अरहर का बाजार मूल्य 4,000 रुपया प्रति क्विंटल, परंतु बाजार में दाल 7,000 से 8,000 रुपया प्रति क्विंटल है, जबकि इसमें लागत लगभग 300 रुपये प्रति क्विंटल आती है। इसे किसान भाई अंदाज लगा सकते हैं कि कैसे कम समय में प्रसंस्करण के माध्यम से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ कमाकर अपनी आर्थिक स्थिति वो मजबूत कर सकते हैं। दाल प्रसंस्करण के बारे में जहाँ तक हम चर्चा करेंगे, तो तुअर दाल में सबसे पहले जो अरहर की दाल है उसको मिल से पहला पास किया जाता है। अनाज बाहर आते समय तेल लगाकर 6 से 8 घंटा रखा जाता है। दूसरे दिन धूप में सुखाकर दूसरा पास किया जाता है। इस समय भी तेल लगाकर अनाज का ढेर लगाकर रखा जाता है। अक्सर पूरे दिन के कार्य के बाद तेल लगाए हुए अनाज को बोरे में रात भर रखा जाता है। प्रथम और द्वितीय पास करते समय कुछ मात्रा में छिलके समेत दाल भी बनती है। इस दाल को भी तेल लगाकर रात भर बोरे में रखा जाता है। प्रथम और द्वितीय किए हुए सूखे दाल को तीसरा पास करने के लिए, अब आप तीसरा जब पास करें तो अरहर में पूरा छिलका निकलता है, जिससे व्यावसायिक रूप से गोटा कहा जाता है। इस गोटे को लगभग 8 से 10 लीटर पानी प्रति क्विंटल लगाया जाता है। पानी लगाया गोटा रात भर ढककर रखते हैं। गोटे को सुखाकर फटका यंत्र से निकाला जाता है, जिसमें प्रसंस्करण पूरा होकर तुअर दाल यानी अरहर दाल बनती है। इस तरह प्राप्त की हुई दाल को पॉलिश करने की आवश्यकता नहीं होती है। पहला और दूसरा पास करते समय जो दाल बनती है उसे भी तेल लगाकर सुखाने के बाद मिल से तीसरा पास करने से छिलका निकल जाता है और दाल मिलती है। अरहर से दाल बनाते समय सभी घटक यंत्रिका से अलग होते हैं और प्रति क्विंटल अरहर से दाल और अन्य घटक की मात्रा भी अच्छी मिल जाती है।
1: मिनी दाल की उपयोगिता, इस विषय पर जानकारी दे रही थी अनिता तिर्की, कार्यक्रम खेती किसानी में, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

0: बात उस समय की है जब सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी। एक गांव में परंपरा थी कि हर व्यक्ति अंधकार से मुक्ति के लिए हर रोज अंधेरे को टोकरियों में भरकर गांव के बाहर फेंक आया करता था। संयोग से एक दिन उस गांव में किसी घर के एक युवक की शादी के बाद दुल्हन आई। गांव की रवायत के अनुसार घर के बड़े बुजुर्ग ने उस नवविवाहित दुल्हन को भी टोकरी में अंधेरे को भरकर गांव के बाहर फेंक आने का आदेश दिया। दुल्हन काफी हैरत में पड़ गई और सोचने लगी कि भला अंधेरे को टोकरी में भरकर कैसे बाहर फेंका जा सकता है। अकस्मात उसके दिमाग में बिजली की गति से एक विचार कौंधा। वो घर के बाहर आई, बिना देरी किए मिट्टी का एक दिया बना लाई। उसने तत्क्षण ही कपड़े की बाती में थोड़ा सा तेल डालकर दिए को जला दिया। अब अंधेरा छट चुका था। गांव का हर व्यक्ति इस बात से हैरान था कि आखिर अंधेरे को इस प्रकार दूर कैसे किया जा सकता है। घर की बहू ने गांव के लोगों की आंखें खोल दी थीं। इसके बाद से उस गांव में फिर कभी अंधेरा नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने रोशनी के लिए दीप जलाना सीख लिया था। उस गांव में अंधकार दूर करने की अज्ञानता की कहानी हमारी अपनी कहानी है। सभ्यता के तेजी से विकास के बावजूद हम अपनी आत्मा में बसे अंधेरों से मुक्ति पाने में असफल रहे हैं। रोशनी जलाकर बाहर फैले अंधेरे को दूर कर हम आश्वस्त हो जाते हैं कि हमारे अंदर का अंधकार खत्म हो गया है और उजाला फैल चुका है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम अपनी आत्मा में ही नहीं झांक पाते हैं। जो झूठ, फरेब, बेईमानी, धोखा, मिथ्या, आनंद, अहंकार, छल प्रपंच और अन्य बेशुमार अमानवीय प्रवृत्तियों के तिमिर में डूबी हुई है। करुणा, दया, सहानुभूति, प्रेम, धर्म, चरित्र और नैतिकता का सर्वथा अभाव है। आत्मा तो है, पर मानवीय अनुभूतियों और संवेदनाओं से आप्लावित नहीं है। आज महत्वपूर्ण प्रश्न रोशनी की तलाश का नहीं है, बल्कि अति रोशनी की चकाचौंध में बंद हुए अपने प्रज्ञान चक्षु को खोलने का है, ताकि आत्मज्ञान, आत्मसंस्कार और आत्मउत्थान के दीप की बाती की लौ शाश्वत रूप से प्रज्वलित रहे।
1: अंतर मन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें आप सुन रहे थे दिनेश कुमार लाल से कार्यक्रम चिंतन में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम आराधना का। आराधना में हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम देशभक्ति गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म शहीद से, और इस गीत को गाया है आदिनाथ मंगेशकर और साथियों ने।

आराधना कार्यक्रम में अब हम सुनेंगे कुछ भक्ति गीत। गीतकार हैं पंडित नरेंद्र शर्मा और संगीतकार हैं हृदय नाथ मंगेशकर। कहते हैं ना कि सुबह की शुरुआत जब हम अपने इष्ट को याद करके करते हैं तो सारा दिन हम में नई ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार होता है। और अगर हम बात कर ले माँ आदिशक्ति दुर्गा की, तो इन्हें देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिन्हें माता, नौ दुर्गा, देवी शक्ति, आद्य शक्ति, भगवती, माता रानी, पार्वती, जगत जननी जगदम्बा, परमेश्वरी, परम सनातनी देवी जैसे कई नामों से जाना जाता है। दुर्गा को आदिशक्ति, परम भक्ति और भगवती, परम ब्रह्म बताया गया है। इनके कई नाम हैं, तो आइए स्मरण करते हैं हम माता का।

माता रानी के जीवन से जुड़े कई प्रसंग ऐसे हैं जो हमें संदेश देते हैं, जीवन में शक्ति, धैर्य और सकारात्मकता लाते हैं। माता के 9 अलग अलग रूप हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए हमें अलग अलग दृष्टिकोण और कौशल अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और जब भी हम परेशान होकर या अपनी खुशियों में माता के दरबार जाते हैं, उनके आगे शीश झुकाते हैं, तो हमारे मन को असीम शांति मिलती है और ऐसा लगता है कि हमारे लिए पूरी दुनिया बहुत ही सुकून देने वाली हो गई है और हम अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो आइए माता रानी के भवन में चलते हैं और हम भी शीश नवाते हैं।

सच ही तो है, जब हम देवी दुर्गा की मनमोहक मुस्कान देखते हैं तो हम बरबसी उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। यह मुस्कुराहट दर्शाती है कि कोई भी स्थिति कितनी भी शक्तिशाली या कठिन क्यों ना हो, हमेशा खुद को शांत और केंद्रित रखना चाहिए। माँ दुर्गा की आंखें जीवन में दृष्टि का चित्रण करती है और साथ ही साथ माँ के दरबार में जो जोत जलती है वो हमारे जीवन को रोशन करती है।

माता के 9 अलग अलग रूप हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए हमें अलग अलग दृष्टिकोण और कौशल अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। महिषासुर जैसी बुराई का नाश करने वाली माँ दुर्गा का चरित्र हमें सिखाता है अहंकार और अत्याचार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो अंत हमेशा सच्चाई और धर्म का ही होता है। माता रानी का आशीर्वाद अगर हम सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं तो उनकी कृपा हम पर होती है। उनका स्मरण करने मात्र से ही व्यक्ति कर्म करने और स्वयं पर अटूट विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। जब भी हम माता के भवन में जाते हैं या मन से याद करते हैं तो यकीन मानिए उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है।

शेर पर सवार होकर खुशियों का वरदान लेकर हर घर में विराजे अम्बे माँ, हम सबकी जगदम्बे माँ। बुरे समय का भी डटकर हम सामना कर पाते हैं जब माता रानी के चरणों में हम अपना शीश झुकाते हैं। माता रानी के इसी भजन के साथ आज का आराधना कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कार।

रानी कैकई ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है, ये सुनकर अयोध्या के महलों में विषाद का वातावरण छा गया है। किंतु श्री राम प्रसन्न है, उनका चित उल्लसित है। सब भाइयों को छोड़कर पिता ने उनका ही राज तिलक करने का निश्चय किया था, इस कारण जो विषाद उनके मन में उत्पन्न हुआ था वो अब मिट गया है। वो प्रसन्न मन माता कौशल्या के भवन में पहुंचे। श्री राम ने हाथ जोड़कर माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने गले लगाकर उन पर वस्त्राभूषण न्योछावर किए। वो उस शुभ लग्न की प्रतीक्षा में हैं जब राम का राज तिलक होगा। किंतु पुत्र के मुंह से ये सुनकर कि पिता ने उन्हें वन का राज्य दिया है और वो वन यात्रा के लिए माता का मंगलमय आशीर्वाद लेने आए हैं, माता कौशल्या के हृदय में जैसे वाण चुभ गया, जिसकी चुभन से वो तड़प उठी। पुत्र के वचन अत्यंत कोमल और शीतल थे, किंतु उन्हें सुनकर वो वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ते ही जवासा सूख जाता है।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कांड, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें कि आज हमारे दिन भर हमारे केंद्र से कौन से कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। 7:05 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, जिसमें आज आपको जानकारी मिलेगी कृत्रिम दांत और देखरेख। भेंटवार्ता गान है डॉक्टर विष्णुपति सिंह, उनसे बातें करेंगे संजीव कुमार लाल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली आप सुनते हैं 7:15 पर। खुला आकाश, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे 7:45 पर। आज इसमें चर्चा होगी योग और मानसिक स्वास्थ्य पर। संजीव कुमार लाल की बातचीत सुनेंगे आप डॉक्टर अर्चना कुमारी से। 8:45 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोकगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे मुंडारी भाषा में लोकगीत। कलाकार होंगे गुरु मुंडा और साथ ही। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन हम आपके लिए लेकर आते हैं 9:00। शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे अभिराम पाठक को 9:30 पर, जिनसे हम सुनेंगे राग देशी में आलाप और धमार गायन। संगत कलाकार होंगे पखावज पर रामबचन पाठक और हारमोनियम पर संचाली नाग। बढ़ते कदम, ये कार्यक्रम का समय होगा सुबह 10:00 का, जिसमें आज चर्चा होगी नशा मुक्त झारखंड अभियान, कितना बदलाव कितनी चुनौतियां। साथ ही भेंटवार्ता आप सुनेंगे विभिन्न जिलों के नशा मुक्त अभियान में शामिल अधिकारियों से बातचीत। भेंटकर्ता होंगे कमलेश कुमार मिश्र और कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। जोहार रांची का वक्त होता है 10:30 पर। आपकी पसंद कार्यक्रम आप सुनते हैं 11:30 पर। महिलाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का समय होता है दिन के 12:00। आज चर्चा होगी रिश्तों को सहेजती महिलाएं। साथ ही भेंटवार्ता आप सुनेंगे डिप्रेशन के शिकार होती महिलाएं। जानकारी मिलेगी ई रसोई पर सूजी के केक के बारे में। कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 12:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा और 1:20 पर हम लेकर आएंगे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। हमारी आज की कलाकारा होंगी सिद्धेश्वरी देवी। सुगम संगीत सुन पाएंगे 1:45 पर। युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवानी आप सुनते हैं 5:02 पर। आज इसमें चर्चा होगी भारतीय राजनयिक रिश्तों की सहस्ती महिलाएं। फिल्म संगीत आप सुनेंगे, इतिहास के दिन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और कार्यक्रम के कंपेयर होंगे मारिया और एडिथ। कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। श्रमिक लोग, यह कार्यक्रम हम लेकर आते हैं 5:30 पर। आज में इसमें कंपेयर होंगे सुषमा एक्का प्रणव कुमार। कार्यक्रम की प्रस्तुति है प्रशांत गौरव की। श्रोताओं, यह थी संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत और हिंदी समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threats for us.
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई भी व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमरीका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar.
4: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:05 और 17 सेकेंड हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आज आपको

0: कृत्रिम दांत हैं, किस तरह का होता है, उसकी देखरेख कैसे करें ताकि जो कृत्रिम दांत हैं उसकी उम्र लंबी हो और आपको किसी तरह की भविष्य में समस्या नहीं हो। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ आमंत्रित हैं रिम्स के सह प्राध्यापक दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णुपति सिंह। डॉक्टर साहब स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, दांतों से समस्या हर लोगों को होती है, तो हम बात करें कृत्रिम दांतों की, तो कृत्रिम दांत कितने तरह की होती है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कृत्रिम दांत लगवाने के समय में?
1: सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कृत्रिम दांत होते हैं या आर्टिफिशियल टीथ जिसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, वो मुख्यतः दो तरीके का बनाया जा सकता है। एक तो होता है फिक्स्ड दांत, जो कि आपके मुंह में बचे हुए दांतों से सपोर्ट लेकर के जो प्रोस्थेसिस बनती है और जिसे हम अपनी मर्जी से निकाल नहीं सकते हैं, वो एक फिक्स्ड तरीके की विधि हो गई और फिक्स्ड प्रोस्थेसिस उसे बोलते हैं। और दूसरे तरीके का जो दांत का रिप्लेसमेंट होता है, कृत्रिम दांत जो बनते हैं, वो होता है एक रिमूवेबल मींस, मतलब उसको बनने के बाद पहनाया तो डॉक्टर के द्वारा ही जाता है लेकिन मरीज अपनी सुविधा के अनुसार उसे बाहर निकाल सकता है अपने मुख से और एक प्लास्टिक के बंद डब्बे में पानी में उसे रख सकता है। फिक्स्ड में ही दो तीन ऑप्शंस और होते हैं जो आजकल एक नया तरीका है दांतों को मुंह में फिक्स तरीके से लगाने का, उसको इम्प्लांट्स भी बोलते हैं। एक डेंटल इम्प्लांट टाइटेनियम का बना होता है जो हड्डी के अंदर हम उसे ड्रिल करके डालते हैं और उसके ऊपर हम आर्टिफिशियल टीथ बनाते हैं, तो ये भी एक फिक्स्ड उपाय है दांतों को रिप्लेस करने का।
0: किसी साथी की एक दांत खराब हो या उसकी पूरी दांत खराब हो गई हो, तो वो कैसे देखरेख करे, क्या उपाय करें कि उसकी 32 दांत पूरी तरह से कृत्रिम रूप से लग जाए और उसकी देखरेख सही से करते रहे और उसका खान पान सही से होता रहे?
1: मुख्यतः हमें ध्यान ये देना है कि दांतों की परेशानी की जब शुरुआत हो तभी हमें सचेत हो जाना है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि शुरुआती दिनों में जब ये दर्द नहीं कर होता, दांत की दर्द से पाप परेशान नहीं होते हैं, मामूली सी कुछ दिक्कत होती है तो हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे अन्य रोगों के साथ भी करते हैं कि हम उसे बहुत सीरियसली तब लेते हैं जब हम उससे परेशान होने लगते हैं। तो जैसे पायरिया के शुरुआती लक्षण हैं कि अगर आपके मुंह से ब्रश करते टाइम खून आने लगे या जब आप बात करते हो किसी से और आपकी सांसों में दुर्गंध आने लगे, तो ऐसी शुरुआती लक्षण हमें बताते हैं कि हम प्रायरिया की तरफ अग्रसित हो रहे हैं, तो हमें एक अच्छी डेंटिस्ट के पास जाके जांच करानी चाहिए और पायरिया का पूर्णतः इलाज आज संभव है। दांतों की साफ़ सफाई करने के बाद अब उसकी एडवांस सर्जरी भी होती है और ये सब करके हम दांतों को बहुत अच्छा रख सकते हैं और उसकी लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं। हमें तो कोशिश ये करना चाहिए कि हमें कृत्रिम दांतों की आवश्यकता ही ना हो, क्योंकि कोई भी आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट, कभी भी जो नेचुरल टीथ हमें भगवान के द्वारा दिया गया है उसका रिप्लेसमेंट कभी नहीं कर सकता, वो
0: उसका मुकाबला
1: नहीं कर सकता। वो उसके बहुत नज़दीक जाता है और उसके फंक्शंस, उसके एस्थेटिक और उसके बाकी सारे चीज़ों का वो रूप ले लेता है, बट हूबहू नेचुरल टीथ जैसा कुछ हो जाए ये कभी नहीं हो सकता। तो हमें देख रेख तो बहुत अच्छे से करना चाहिए अपने नेचुरल दांतों का, और शुरुआती लक्षण दिखते ही दांतों में सड़न का, खाने का फंसना या बदबू आना, ब्रश करते टाइम खून आना, तो हमें एक उपयुक्त डेंटिस्ट के पास जा कर के इसकी सलाह मशवरा करना चाहिए इससे संबंधित, और इसकी देख रेख करके हमें इसकी लाइफ को बढ़ा लेना चाहिए
0: जी।
1: ब्रशिंग हमें सुबह और शाम दोनों टाइम करना चाहिए, ये बार बार बोला जाता है और लोगों को पता भी होता है लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो रात का ब्रशिंग भी उतना ही ज़रूरी है जितना सुबह का ब्रशिंग ज़रूरी है, क्योंकि रात को अगर आप ब्रश नहीं करते हैं तो क्या है, आप सो जाते हैं और लगभग 10-12 घंटे का समय आप मुंह के जो बैक्टीरिया हैं उनको देते हैं, खाने के ऊपर वो बैठते हैं, जो भी खाना दांतों में लगा हुआ है फिर वो एसिड प्रोड्यूस करता है और फिर वो दांतों में सड़न पैदा करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रात को ब्रश करें, दिन को तो करना आवश्यक है ही बट रात को ब्रश करना उतना ही आवश्यक है। तो खाने के बाद जैसे थोड़ा सा कुल्ला कर लिया, क्योंकि एक अच्छी ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करने से निश्चित तौर पे ज़्यादा फ़ायदा होगा उसके मुकाबले जो आप अगर अच्छी ब्रशिंग टेक्निक नहीं जानते हो और उस तरीके से ब्रश करते हो।
0: डॉक्टर साहब, हम थोड़ी खर्च की बात करें, कृत्रिम दांत हम लगवाते हैं,

0: चाहे एक हो चाहे पूरी दांत हम लगवाते हैं, तो खर्च कितना आता है और आपके यहाँ क्या व्यवस्था है इसकी?
1: मैं आपके रेडियो के माध्यम से सारे झारखंड वासियों को सूचित करना चाहूँगा कि रिम्स के प्रोस्टोरॉन्टिक्स विभाग में जो कृत्रिम दांत हैं वो मुफ्त में बनते हैं और रिमूवेबल दांत की सुविधा भी उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात है जो बत्तीसी बनती है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं किसी कारणवश जिनके मुंह में अब एक भी दांत नहीं है या चार पांच दांत बच गए हैं, वो हिलते डुलते अवस्था में हैं, उनसे वो अपने खान पान को सही ढंग से खा नहीं पा रहे हैं, तो वैसे चार पांच दांतों को निकाल करके पूरी की पूरी बत्तीसी रिम्स के प्रोस्थेटिक्स विभाग में बनती है और वो मुफ्त में बनती है। तो मैं तो चाहूँगा कि जो कोई भी लोग जिनको ज़रूरत हो बत्तीसी बनाने की तो वो रिम्स में आए। 5 अपॉइंटमेंट विजिट होता है, नकली दांत बनाने का जो बत्तीसी बनती है वो 5 अपॉइंटमेंट में बनती है और एक एक दो दो दिन के अंतराल पे हम अपॉइंटमेंट देते हैं और लगभग 15 से 20 दिनों में आपको कृत्रिम दांत जो बत्तीसी है वो बन के तैयार हो जाती है। तो प्राइवेट में तो बहुत इसका कॉस्ट है तो उसके डिटेल में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, बट ये मैं बताना चाहूँगा कि रिम्स के प्रोस्थेटिक्स विभाग में जो कृत्रिम दांत हैं रिमूवेबल प्रोस्थेसिस, या तो 32 हो या 5-7 दांत नहीं हो, 8 दांत नहीं हो, 10 दांत नहीं हो, बिल्कुल मुफ्त में बनता है और बहुत अच्छे क्वालिटी का बनता है। सक्षम डॉक्टरों के द्वारा बनाया जाता है जो विशेषज्ञ होते हैं इसी पर्टिकुलर फील्ड के, उसको हम प्रोस्टोडोंटिस्ट बोलते हैं। तो ये सुविधा तो रिम्स में अब उपलब्ध है।
0: तो दोस्तों यदि दांतों की कोई भी समस्या हो तो चाहे आपको दांत नकली लगवानी हो, रिम्स में आप चले जाएं, बिल्कुल निशुल्क सेवा आपको दी जाएगी, एक पैसे भी नहीं लगेंगे। और यही सेवा आप यदि बाहर किसी निजी चिकित्सक के पास जाते हैं, निजी डिस्पेंसरी में जाते हैं, तो आपके बहुत सारे पैसे लगेंगे। तो इस सुविधा का लाभ उठाइए और डॉक्टर साहब मसूड़े चमकते रहे, मोती जैसे चमचम करते रहे आपके दांतें, क्या कहेंगे अपने सुनने वाले साथियों को?
1: दांत अगर आपके किसी कारण गिर गए हो तो तुरंत ही उसका रिप्लेसमेंट ज़रूर कराएं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता बट धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा डाइट का रिप्लेसमेंट हो जाता है। बहुत कड़े चीज़ जो आप अपने नेचुरल टीथ से खा सकते थे, अब धीरे धीरे अगर आपके मुंह के अंदर दांत कम होने लगते हैं तो आप वो अपने पसंदीदा भोजन का सेवन नहीं कर पाते हैं और इससे फिर आपका स्वास्थ्य गिरने लगता है। और चूंकि ये सब इतना धीरे धीरे हो रहा होता है कि जब तक वो आपके स्वास्थ्य को गंभीर रूप से परेशान करता है तब तक थोड़ी देर हो चुकी होती है, आपका वज़न घट जाता है और आप बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माउथ इज़ द मिरर ऑफ द होल बॉडी। कभी कभी हम मुंह के अंदर झांक के शरीर की भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता लगा लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग हैं, आपको जब भी कुछ ज़रूरत हो किसी तरीके की सेवा की तो आप रिम्स में आ सकते हैं, डेंटल में, और हर तरीके की सुविधा वहाँ पर आपको उपलब्ध है।
0: तो मित्रों यदि आपके दांत मोती जैसे चमकते हैं, स्वस्थ हैं, तो यदि दांत स्वस्थ रहेंगे तो आप खूबसूरत दिखेंगे, आपका चांद जैसा चेहरा दिखाएगा और आपका व्यक्तित्व भी उतना ही प्रभावशाली होगा। तो डॉक्टर विष्णुपति सिंह, सह प्राध्यापक रिम्स, आज आप इस कार्यक्रम में, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
2: कृत्रिम दांत और देखरेख, इस विषय पर डॉक्टर विष्णुपति सिंह से संजीव कुमार लाल की बातचीत आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम सुबह सुरेली का। सुबह सुरेली कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सुबह की में जब आप काम में व्यस्त रहते हो, प्रायः सुबह में सभी घरों में लोग ऑफिस जाने की तैयारी, स्कूल जाने की तैयारी, महिलाएं जो हैं वो अपने किचन में काम को समेटती हैं, ऐसे में जब सुबह कुछ अच्छे मीठे मीठे गाने हमें रेडियो पे सुनाई पड़ते हैं तो यकीन मानिए काम हमारा बहुत अच्छे से होता है और दिन भी हमारा अच्छा गुजरता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे हमने लिया है मिस्टर एंड मिसेस 55 से। इस गीत को गाया है गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी ने। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
2: सुबह सुरीली कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। और अगला गीत हमने लिया है फिल्म बाप रे बाप से। इस गीत को गाया है आशा भोसले, किशोर कुमार ने। गीत के बोल लिखे हैं जान निशान अख्तर ने और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म फागुन से। गीत के बोल लिखे हैं कमल जलालाबादी ने, धुन बनाई है ओपी नैयर ने, इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरेली। अगला गीत हमने लिया है फिल्म मधुमति से। शैलेंद्र की शब्द रचना, सलील चौधरी का संगीत, मुकेश और लता मंगेशकर की खूबसूरत सी आवाज, आइए सुनते हैं ये गीत।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म असली नकली से। शब्द रचना है शैलेंद्र की, धुन बनाई शंकर जयकिशन ने और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:45 और 6 सेकेंड हो चुके हैं। वक्त है कार्यक्रम खुला आकाश का, जिसमें आज आपको जानकारी मिलेगी योग और मानसिक स्वास्थ्य पर। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अर्चना कुमारी और उनसे बातें कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।

मन और आत्मा को नियंत्रित करने में योग बहुत ही सहायक है। तो यदि हम प्रातःकाल योग का सहारा लेते हैं, कुछ योग क्रियाएं करते हैं, तो हमारा मन स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा।

0: चित्त शांत रहेगा तो कैसे योग को आत्मसात करें, योग के द्वारा कैसे हम स्वस्थ रहें, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ आमंत्रित हैं राज्य योगा केंद्र के योग प्रशिक्षक डॉक्टर अर्चना कुमारी। अर्चना जी स्वागत है। अर्चना जी, आज के समय में योग का कितना महत्व बढ़ गया है?
1: अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में योग को देखें तो सबसे ज़्यादा महत्व है इसका, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो लोगों की शारीरिक और मानसिक जो समस्याएं हैं वो घटने के बजाय बढ़ते ही चली जा रही है, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या में उन्होंने अब तनाव को अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया है, उसको अगर वो धीरे धीरे धीरे धीरे हटाते नहीं चले जाएंगे तो ये बढ़ते चली जाएगी। और उसको हटाने का, अपने शरीर और मन को शांत, शिथिल और स्थिर करने का एकमात्र उपाय योग है। अगर हम बात करें बीमारियों से लेके, तो आप देखेंगे आजकल की जो बीमारियां हो गई हैं वो मनोदैहिक हो गई हैं। मन से बीमारियां शुरू होती हैं और तब वो आपके शरीर में पहुंचती हैं। पहले के जीवन में था कि संयुक्त परिवार होता था, कोई भी हमारा खुशी वाला पल होता था या दुखी वाला पल होता था, हम घर में सबके साथ शेयर करते थे और वो वहीं पर ख़त्म हो जाता था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वैसा नहीं है। लोग अपनी बुरी समस्या हो वो कुछ भी बताना नहीं चाहते लोगों को, जिसके कारण वो तनावग्रस्त होते चले जा रहे हैं। तो योग जो हमारी भारतीय संस्कृति का भी हिस्सा रहा है, अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज के परिप्रेक्ष्य में महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया है अष्टांग योग, मतलब तो योग के आठ अंग जो आज के परिप्रेक्ष्य में कारगर सिद्ध हो रहे हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आती है। तो सामान्य भाषा में अगर हम इसको समझाना चाहें तो यम का मतलब होता है मन की शुद्धिकरण। मन का शुद्धिकरण कैसे होगा? नेगेटिव अगर हम सोचते रहेंगे तो उससे नहीं होगा ना? मतलब नेगेटिव विचारों को, नकारात्मक विचारों को आपको हटाना है और सकारात्मक विचारों को अपने अंदर प्रवेश करना है। जैसे सकारात्मक विचार आपके अंदर प्रवेश होंगे, आपके हार्मोन चेंज होने लगेंगे। तो ये हो गया मतलब कि आपके मन का शुद्धिकरण। नियम, दिन की जो क्रियाएं हैं जो शरीर के द्वारा की जाती हैं, जैसे मल का त्याग करना और भी छोटी छोटी चीजें। अगर छोटी सी चीजें हैं कि सुबह हमारा पेट साफ हो जाता है तो हम अपने शरीर और मन दोनों से फ्री हो जाते हैं। अगर पेट साफ नहीं होता है तो हम अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो नित्य कर्म की जो क्रियाएं हैं वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए। जैसे ही आप यम और नियम का पालन करने लगेंगे, आपका शरीर और मन दोनों आसन के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। मतलब फिजिकल जो भी प्रैक्टिस आप करेंगे वो इजी वे में होने लगेगा आपसे। और जैसे ही आप आसन करेंगे, आसन से आपका जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो प्रॉपर होगा। तो आपके जो इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन का जो फ्लक्चुएशन है वो कंट्रोल होता है, वो नियंत्रित होता है आपके आसन और प्राणायाम से। जैसे आप आसन प्राणायाम की क्रियाएं कंप्लीट करते हैं, प्रत्याहार के लिए आपका मन पूरी तरह से तैयार हो जाता है। आज के समय में आप कहीं भी चलते हैं, कोई भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर सकती है तुरंत, लेकिन जब प्रत्याहार जैसी चीज़ें आपके अंदर होंगी तो आप अपने मन को बाहरी वातावरण से आंतरिक वातावरण में इजीली प्रवेश करवा सकते हैं। तब आपको कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं करेगी। आपके लिए क्या सही है, आपके शरीर और मन के लिए, आप सोचने में सक्षम होंगे और उस चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। क्योंकि जब तक विचारों में चीज़ें नहीं आती हैं तब तक हम उन सब चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही प्रत्याहार के लिए हम तैयार होंगे तो हमारा जो शरीर और मन है वो आंतरिक चीज़ों के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब धारणा, ध्यान, समाधि। और इसको भी मैं बहुत सामान्य भाषा में बताना चाहूँगी। धारणा मतलब पर्टिकुलर किसी चीज़ पे फोकस करना, धारणा। ध्यान मतलब उस फोकस जहाँ हमने किया है उस पर कंटिन्यूटी को बनाए रखना। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो लोगों के बीच पेशेंस नहीं रह गया है, तो उस पेशेंस का ही नाम समझिए तो एक तरफ से ध्यान है। मतलब उसमें कंटिन्यूटी को आप बनाए रख रहे हैं। और समाधि, आप उसमें इंक्लूड हो जा रहे हैं, उस चीज़ को पा ले रहे हैं। तो ये धारणा, ध्यान, समाधि, जब आप इस चीज़ को करने लगेंगे तो हर छोटे छोटे वर्क में आपका जो छोटा छोटा डे टू डे लाइफ का नित्य प्रतिदिन का जो एक एम है आप उसको फुलफिल करेंगे। तब देखिएगा आप कैसे स्ट्रेस से, मतलब स्ट्रेस तक आप पहुँच ही नहीं पाएंगे, आप स्ट्रेस से निकलते चले जाएंगे। और दिन प्रतिदिन आप अपने बॉडी और माइंड की टॉक्सिसिटी को अगर रिमूव करते हैं तो आप देखेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट ईजिली हो जाता है आपके लिए। क्योंकि स्ट्रेस अगर जीरो होगा तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब भी कुछ नहीं पाएंगे। मतलब आप उसको बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अष्टांग योग बहुत हेल्पफुल है। आप देखेंगे नित्य प्रतिदिन के क्रिया में, मतलब 24 घंटे में अगर आप एक घंटा बहुत अच्छा योगा करते हैं जिसमें आसन प्राणायाम आप यूट्यूब देख रहे हैं, गूगल देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप कर रहे हैं और एक घंटा बहुत अच्छा योगा करेंगे, लेकिन 23 घंटे ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो, आप दूसरों के बारे में टॉक कर रहे हैं बार बार, जो खान पान का जो आपका तरीका है उस पर चेंजेस ला रहे हैं, जिस समय उठना है उस समय नहीं उठ के आप उस समय सो रहे हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिए समस्या का कारण बनती हैं। तो आप दिन में अगर 5 या 10 मिनट का टाइम निकालें और बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ों को टेक्निक को फॉलो करें जिससे आपका शरीर और मन दोनों बैलेंस में रहे, तो इसके लिए कुछ कुछ बीच में आपको योगा ब्रेक सेशन लेने होते हैं। तो योगा ब्रेक सेशन में जैसे कि कभी थकान होती है तो चाय पीने की इच्छा होती है, आप चाय पिए फिर फ्रेश हो गए, तो बीच बीच में योगा ब्रेक सेशन, तो योगा ब्रेक सेशन का मैं बहुत सारे उसके टेक्निक्स हैं कि कैसे करना है, लेकिन जो छोटी छोटी टेक्निक्स जो डे टू डे लाइफ में आप कर सकते हैं, जैसे जम्हाई लेना, आजकल के अगर हम सोसाइटी में कहीं बैठे होते हैं जम्हाई आती है तो हम रोक लेते हैं वहीं पर, अगर जम्हाई आ रही है प्रॉपर वे में जम्हाई ले लीजिए, अंगड़ाई आपको लेना है आप प्रॉपर वे में अंगड़ाई ले लीजिए, ये छोटी छोटी स्ट्रेचिंग टेक्निक्स हैं हमारी, अगर स्ट्रेचिंग टेक्निक्स आप फॉलो करेंगे कुछ कुछ समय पे, अगर आप कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं डाउन हो के तो थोड़ा पीछे आप स्ट्रेच कर लीजिए बॉडी को, फुल बॉडी को आपको ताड़ासन की मुद्रा में मतलब अंगड़ाई जैसे लेते हैं वैसे आप स्ट्रेच कीजिए तो बॉडी आपकी फ्री होती है। उसके बाद कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स, ब्रीदिंग मतलब आपको स्लोली इनहेल करना है फुल्ली एक्सहेल करना है, आप देखेंगे आप बैठे बैठे एक लंबी गहरी सांस भरते हैं तो आप क्या फील करते हैं, रिलैक्स करते हैं, अगर कंटिन्यूटी में 5 to 10 राउंड उसी समय कर लिया जाए तो आप बॉडी और माइंड से फुल्ली फ्री फील करेंगे। स्ट्रेस, डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस होना जेन्यून है क्योंकि आजकल का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है, खान पान ऐसा हो गया, तो आप उस पर कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे ओम का उच्चारण, ओम में 3 वर्ड्स इंक्लूड होते हैं अ ओ म, तीनों के बॉडी के अलग अलग सिस्टम पे इम्पैक्ट आता है, जैसे अ का है आपके एब्डोमिनल रीजन में आपका पूरा पेट वाला जो भाग है उसमें उसका इम्पैक्ट आता है, ऊ से आपका थोरेसिक रीजन जहाँ से आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं आपका पूरा छाती वाला भाग, और म के उच्चारण में पूरा नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन एक्टिव होता है, तो जैसे आप ओम का उच्चारण कर ले 5 बार बीच बीच में। दो चीज़ें हैं, एक तो ओम का उच्चारण हम भ्रामरी प्राणायाम में यूज कर सकते हैं जिसमें मुंह बंद किया जाता है जिसमें भौरे का गुंजन आता है, एक ओम का उच्चारण में आपको प्रॉपर साउंड क्रिएट करना होता है, तो मैं दोनों चीज़ें आपको बता रही हूँ आप बीच बीच में इसको कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग सीरीज करने के बाद हम इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। जैसे है आपका भ्रामरी प्राणायाम, जैसे इसमें लंबी गहरी सांस भरते हैं हम लोग और सांस छोड़ते हुए भौरे का गुंजन करते हैं,

उसको ध्यान ही रखना कि खींचना नहीं है। आपकी ब्रीदिंग जितनी है, अगर आपकी ब्रीदिंग शॉर्ट है तो शॉर्ट पीरियड में कंप्लीट होगी, आपकी ब्रीदिंग अगर लॉन्ग है तो वो लॉन्ग पीरियड में कंप्लीट होगी। रिदमिक वे में कंप्लीट करना है, 5 to 10 राउंड करना है, और आफ्टर जैसे कंप्लीट हो जाइए तो आपको वो जो वाइब्रेशन आपके मन मस्तिष्क में क्रिएट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उसको आपको फील करना है कुछ सेकेंड के लिए। उसी प्रकार ओम का उच्चारण करते हैं हम लोग, इसमें भी एक लंबी गहरी सांस भरते हैं,

0: आप जैसे ही ओम का उच्चारण करेंगे, आपके देखेंगे, आप खुद देखिएगा कैसे आपका जो अनवांटेड थिंकिंग है वो कैसे कंट्रोल होना स्टार्ट करती है, माइंड और बॉडी आपकी शांत शिथिल और स्थिर होना स्टार्ट करती है। आप इसको 5 to 10 राउंड में ही फील कर सकते हैं, बजाबते इसको प्रॉपर वे में किया जाए। और करने के बाद सडन आपको उठना नहीं है, सडन थोड़ी देर आपको फील करना है जो भी वाइब्रेशन आपका क्रिएट हुआ है, इससे आप फ्लक्चुएशन कम करने में हेल्पफुल होगा, प्लस ये स्ट्रेस को रिलीज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो कोशिश करना है हमें कि इनको डे टू डे लाइफ में, बीच बीच में जैसा हमारा वर्क पीरियड होता है, बीच बीच में हम एक योगा ब्रेक सेशन लें और उसको करें। ध्यान ये रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद चीज़ों को ना करें, बाकी आप कभी भी कर सकते हैं।
1: आज की जीवन शैली के बारे में आप क्या कहेंगे हमारे सुनने वाले साथियों को? अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय अपने लिए निकालें, काम के समय में थोड़ा सा ब्रेक करके इन सारी गतिविधियों को करें और आप खुश रहेंगे, तनाव से मुक्ति मिलेगी और आप खुश रहेंगे तो घर परिवार भी खुशहाल रहेगा।
0: देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में मैं पहले ये बोलना चाहती हूँ कि टाइम समय की कमी नहीं है, बस अवेयरनेस की कमी है। एज ए रिसर्चर अगर मैं कुछ बोलूँ तो योगा इज ओनली नेम ऑफ द अवेयरनेस। आप कैसे खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, एवरीथिंग इंक्लूड इन द योगा। अगर इन सब चीज़ों, क्योंकि ये तो जनरल रूटीन की चीज़ है आपकी, अगर इन पे थोड़ा सुधार कर दिया, थोड़ी अवेयरनेस लेकर अगर आए आप, तो 2 से 3 मिनट का समय निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। आप 2 से 3 मिनट सोच के बिता देते हैं, अगर उसमें आप चीज़ों को करना स्टार्ट करें तो आप देखिएगा, कहा जाता है ना कि कहना आसान होता है करना मुश्किल, लेकिन आप देखिए कहना जितना आसान होता है करना उतना और आसान हो जाएगा, बशर्ते उसको प्रॉपर वे में आप सोचें, एक बार थिंकिंग करें और इन सब चीज़ों को, योगा ब्रेक सेशंस हुए, इन सब चीज़ों को करें, केवल मोबाइल में बात नहीं करके, मोबाइल की चीज़ों को ना सुन के

0: केवल मूवी या फिर डे टू डे लाइफ में जो आजकल आप लोग देखते हैं उन सारी चीज़ों को जो नेगेटिविटी को उत्पन्न करती है, उन सब चीज़ों से थोड़ा दूर अगर रहें, आप पॉजिटिविटी जो क्रिएट करती है, अपने घर परिवार के लोगों से बात करें, ये करें, तो आप देखेंगे खुद आप तनाव मुक्त होना स्टार्ट हो जाएंगे।
1: तो मित्रों, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और कुछ समय योगा के लिए ज़रूर निकालिए। आप देखिए, आप तरोताज़ा महसूस करेंगे, आप खुश रहेंगे और तनाव आपसे दूर भागेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्चना कुमारी, आज आप इस कार्यक्रम में आए। और मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा, आज का दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो। नमस्कार।

योग और मानसिक स्वास्थ्य। अभी आप डॉक्टर अर्चना कुमारी से संजीव कुमार लाल की बातचीत सुन रहे थे कार्यक्रम खुला आकाश में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, समाचार के लिए भी थोड़ा सा वक्त हमारे पास है, तो थोड़ी सी बातें हम आपसे कर लेंगे। कुछ ऐसी बातें जो हमें प्रेरणा देती हैं। आपने देखा होगा कि भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते हैं और अच्छे लोगों की कभी भीड़ नहीं होती है, क्योंकि जो भीड़ से अलग होते हैं वो अपना काम खुद ब खुद अच्छे से कर सकते हैं। कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो समस्या है ना वो बहुत बड़ी है और इसका समाधान हमें दूसरों के पास से मिल जाएगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। हमारी समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास है, दूसरों के पास सिर्फ हमारे लिए सुझाव होता है। आज के दौर में पैसा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया पैसे के पीछे भागती है, तो ऐसा ना करके अगर हम पैसा है अच्छी बात है, लेकिन संस्कार, समर्पण और दूसरों की मदद करके भी हम आगे बढ़ते हैं तो ज़िंदगी बहुत खुशनुमा और खुशहाल लगेगी। कोई काम तब तक असंभव लगता है जब तक वह हो नहीं जाए और हमारी आत्मशक्ति से हम वो काम कर सकते हैं। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमरीका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threats for us.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के

0: समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमरीका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है, हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25 से 50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग

0: संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने सीयूईटी परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में सीयूईटी के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली एनसीआर में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0. Match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping, led by India's

0: द सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर और 26 फाइनेंस मैनेजर शामिल हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने पर गहरी प्रसन्नता व्यक्त की है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्वारा दिया गया यह सम्मान गुरुजी के कड़े जन संघर्ष, सामाजिक न्याय और अलग राज्य के निर्माण में उनके अमूल्य योगदान का सच्चा राष्ट्रीय आदर है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने इसे झारखंड की जनजातीय अस्मिता के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण बताया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने सभी झारखंड वासियों से इस गौरवशाली क्षण का जश्न मनाने की अपील की है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे गुरुजी के संघर्षों, सिद्धांतों और उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़े।
1: दिशम गुरु हमारे झारखंड के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है जमीनी स्तर पर उतरकर, जिस तरह से महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और झारखंड हमारा अलग राज्य बना, आज उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। तो हम लोग चाहेंगे कि गुरु जी को जो सम्मान मिला उसे पूरा झारखंड सेलिब्रेट करे।
0: राज्य के बहुचर्चित ट्रेजरी घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार पर फिर हमला बोला है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने प्रेस वार्ता कर सवाल उठाया कि इस पूरे घोटाले का असली मास्टरमाइंड कौन है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जांच समितियों और एसआईटी का खेल रचकर बड़ी मछलियों और सफेद पोषों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष, न्यायिक और केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग दोहराई है।
2: झारखंड में कई जिलों में, हजारीबाग में, बोकारो में, रांची में, चाईबासा में, पुलिस विभाग में ट्रेजरी से पैसे निकाले गए, करोड़ों रुपए की अवैध निकासी हुई। जैसे ये घोटाला सामने आया, राज्य सरकार ने घोषणा की कि हम इसकी जांच करेंगे कि इस घोटाले में राज्य सरकार कुछ सफेदपोश चेहरों को, जो राज्य में बड़ी ताकत है, उसको बचाने का प्रयास कर रही है।
0: झारखंड में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिला प्रशासन अलर्ट है। रांची में सदर एसडीएम वरुण रंजन की अध्यक्षता में बीएलओ और सुपरवाइजरों को डिजिटल प्रक्रिया का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे।
3: बीएलओ एंड बीएलओ सुपरवाइजर्स पे हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया, इनमेशन फेज और उसके आगे के जो फेजेस से संबंधित काम है उनके बारे में बताया, कैसे उन्हें फॉर्म कलेक्ट करना है, कैसे इनको फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कैसे उनको फॉर्म डिजिटाइज करना है। न्यूएंसेस की बात है, वो इनमेशन फेज में वो पार्ट नहीं आता है, क्योंकि इनमेशन फेज में हमें बस इनमेशन फॉर्म ही कलेक्ट करना है।
0: उधर साहेबगंज के विभिन्न प्रखंडों में बीएलओ और सुपरवाइजरों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हो गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
4: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के जल संसाधन मंत्री हाफिजुल हसन ने अपने

0: मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास को गति देते हुए 1,07,00,000 रुपए की लागत से 41 जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास किया है। पथल छपटी स्थित आवासीय कार्यालय से शुरू की गई इन विधायक मद की योजनाओं के तहत विभिन्न प्रखंडों में सड़क, नाली, जल मीनार और कीर्तन मंडली भवनों का निर्माण कराया जाएगा। मंत्री ने क्षेत्र के समग्र विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। रांची के कोकर खोरहा टोली से 47 दिनों से लापता 22 महीने की मासूम आदिति पांडे का सुराग न मिलने पर कल उसके माता पिता मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। पुलिस सुरक्षा कारणों से उन्हें रोककर गोंदा थाना पहुंचाया और सचिवालय में उनका आवेदन मुख्यमंत्री के एसओडी को प्राप्त कराया गया। डीएसपी संजीव कुमार बिस्ट्रा ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है।
1: के द्वारा जो आवेदन दिया गया पोस्टी साहब को रिसीव कराया गया है, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आगे की बेहतरीन तरीके से कार्रवाई की जाए। अब तक हम लोग को ऐसा कोई सुराग नहीं मिल पाया है। टीम भी ऐसे नहीं है कि बैठी हुई है, अपने स्तर से वो परिवार वालों को लग रहा है कि नहीं ये चीज होनी चाहिए, जो भी इनकी डिमांड हो रही है सारी चीज को पूरी की जा रही है।
0: रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रांची में मानसून की सक्रियता बढ़ने से मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य भर में मौसम का मिजाज बदलने के साथ साथ आज राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि पलामू और डालीगंज जैसे उत्तर पश्चिमी जिलों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने से उमस भरी गर्मी परेशान कर सकती है। छोटा नागपुर रॉयल्स ने जमशेदपुर स्टेलर्स को 7 विकेट से हराकर झारखंड T20 क्रिकेट लीग का पहला खिताब जीत लिया है। कप्तान कुमार कुशाग्र प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं जेसीए स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ पर रांची एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि एक गेट खुला होने और धीमी सुरक्षा जांच से दर्शकों का दबाव बढ़ा।
2: एक ही गेट वो आमजनों के एंट्री के लिए खुली हुई थी, आज इसकी वजह से अचानक से भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई और एंट्री में फ्रिस्किंग की स्पीड लो थी, जिसकी वजह से बाहर जो है पब्लिक का प्रेशर भी काफी बढ़ गया। थोड़ी देर के लिए भीड़ अनियंत्रित हुई थी, परंतु हम लोगों ने यहाँ पर आकर स्थिति को संभाल लिया है। कुछ लोग घायल हुए हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जेसीए स्टेडियम में झारखंड T20 लीग के फाइनल में प्रवेश द्वार के बाहर भगदड़ की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, अंदर चौके छक्के, बाहर लात घुसे, स्टेडियम में एंट्री नहीं मिली तो तोड़फोड़, भगदड़, 22 घायल। हिंदुस्तान लिखता है, झारखंड की दोनों सॉल्वर चंचल व पूनम की खंगाली जा रही है कुंडली। प्रभात खबर के अनुसार, अजमेर रांची के बीच जल्द दौड़ेगी अमृत भारत 3.0 ट्रेन। दैनिक जागरण के शब्द है, जेल में महिला के यौन शोषण मामले की न्यायिक जांच, रिपोर्ट कोर्ट को पेश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन में आयोजित भव्य समारोह में स्वास्थ्य विभाग के 262 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। दिशोम गुरु शिव सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान। राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया केंद्र सरकार का आभार। राज्य में SIR के तहत BLO और सुपरवाइजरों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। डिजिटल प्रक्रिया और इन्यूमरेशन फॉर्म भरने की दी गई जानकारी। देवघर के मधुपुर में मंत्री हाफिजुल हसन ने 1 करोड़ की लागत से 41 जन कल्याणकारी योजनाओं का किया शिलान्यास। क्षेत्र के समग्र विकास को बताया प्राथमिकता। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग में छोटा नागपुर रॉयल्स ने जमशेदपुर स्टिलर्स को 7 विकेट से हराकर जीता पहला खिताब। कप्तान कुमार कुशाग्र बने प्लेयर ऑफ द मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची का प्रसारण सुनीता के साथ।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग, जिसमें आज आप सुनेंगे मुंडारी भाषा में लोक गीत। कलाकार हैं गुरु मुन्ना और साथी।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम रसरंजन का। रसरंजन में आज हम आपके लिए लेकर आए बेहद खूबसूरत से प्यारे प्यारे गीत, और इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सुनीता। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म आरजू के इस गीत के साथ, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। अगला गीत हमने लिया है फिल्म अभिमान से। इस गीत को गाए है लता मंगेशकर ने। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है एस टी बर्मन ने।

एक मुसाफिर एक हसीना, इस फिल्म का गीत अभी आप सुनेंगे आशा भोसले और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में। गीत के बोल लिखे हैं SH बिहारी ने, धुन बनाई है OP नैयर ने।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म मेरे सनम से। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर और आवाज आशा भोसले की।

आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का। हमारे आज के कलाकार हैं अभिराम पाठक, जिनसे हम सुनेंगे राग देसी में आलाप और धमार गायन। बोल हैं उधो तुम चाहे कहो। संगत कलाकार हैं हारमोनियम पर संचाली नाग और पखावज पर साथ दे रहे हैं रामबचन पाठक। यह कार्यक्रम हम सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे अभिराम पाठक से राग देसी में आलाप और धमार गायन। संगत कलाकार थे हारमोनियम पर संचारी नाग और पखावज पर रामवचन पाठक। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, आइए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम अपने पर्यावरण पर, क्योंकि जिस तरह से आज परिवेश बदला है, समय बदला है, परिस्थितियां बदली हैं, मौसम में उतार चढ़ाव बदला है, ऐसे में जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण संरक्षण पर एक नजर जरूर डालें। थोड़ी सी कोशिश, छोटी छोटी कोशिश हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा, पीने योग्य पानी और मिट्टी से भोजन प्राप्त होता है। बढ़ते औद्योगिकरण और वनों की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसे रोकने के लिए पेड़ों का संरक्षण जरूरी है। सरकार अपने स्तर से प्रयास करती है, थोड़ी सी कोशिश

में भी करनी चाहिए। वृक्षारोपण हमें जरूर करनी चाहिए, जिससे हवा शुद्ध होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पर असर कम होता है, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग भी कम होती है। हमें अपने रोज के जीवन में पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी जगह पे कपड़े या जूट के बैग का प्रयोग हम कर सकते हैं। साथ ही आवश्यकता अनुसार पानी का प्रयोग करना चाहिए और बिजली बचाने के लिए हमें एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। सौर ऊर्जा एक अच्छा वैकल्पिक विषय हो सकता है। भारत सरकार भी इसके लिए हर दिन बता रही है लोगों को कि कैसे हम सोलर सिस्टम लगाकर एनर्जी बचा सकते हैं और अपना जो बिल है ना वो भी फ्री कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण केवल हमारी भी जिम्मेदारी है। सरकार अपने स्तर से प्रयास करती है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम भी पेड़ लगाएं। बहुत छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं। अगर हमारे आसपास जगह है तो कोई भी ऐसा पौधा लगाएं जो हमारे सेहत के लिए अच्छा हो। पेड़ लगाएंगे, धरती बचेगी, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, हमें स्वच्छ और साफ हवा मिलेगी, जिससे हम सेहतमंद और स्वस्थ रह पाएंगे। तो ये हो गई थोड़ी सी छोटी सी बातें। अगला कार्यक्रम हम लेकर आएंगे बस थोड़ी

0: आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम बढ़ते कदम का, जिसमें आज चर्चा होगी नशा मुक्त झारखंड अभियान, कितना बदलाव, कितनी चुनौतियां। भेंटवार्ता आप सुनेंगे राजीव रंजन, उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम जिला से। उनसे बातें कर रहे हैं कमलेश कुमार मिश्र। कार्यक्रम की प्रस्तुति है प्रभु शरण की।
1: नमस्कार, बढ़ते कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्र। पिछले कार्यक्रम में हमने नशा मुक्त झारखंड अभियान पे बात की, हमने अलग अलग युवाओं से बात की और ये समझने की कोशिश की कि आज ये नशे का जाल कैसे हमारे समाज को धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है। कार्यक्रम के आज के अंक में हम फिर से नशा पे ही बात करेंगे। हम बात उस जिले की करेंगे जहां नशा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, लेकिन झारखंड सरकार के प्रयासों से, जिला प्रशासन के कोशिशों से वहां पे भी एक बदलाव आया है। और जब हम एक अभियान की बात करते हैं, जब हम एक नई शुरुआत की बात करते हैं, तो ये कितना फर्क लाता है। जिस तरीके से 15 जून से 26 जून तक ये अभियान चल रहा है नशा मुक्त झारखंड का, वो कितना एक बदलाव लाता है। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त राजीव रंजन। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से पूर्वी सिंहभूम जिला में ये जो नशे की समस्या है, ये जो एक नशे का जाल है, क्योंकि वो एक बॉर्डर इलाका है तो वहां पे ये समस्या ज्यादा होती है, तो उनके लिए क्या चैलेंजेस होते हैं, कैसे वो आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कैसे इस तरह के अभियान से वहां पे एक बदलाव आ रहा है, वो समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही उनसे बात करने से पहले मैं उन अपनी जिम्मेदारियों की भी हम लोग बात करें जहां हमारी और आपकी एक भूमिका होती है। जब समाज में नशा जैसे दीमक जो धीरे धीरे हमें बर्बाद करते जाता है, हमारी सोच को खत्म करता है, हमारे में ऊर्जा नहीं रहने देता और हम सिर्फ अपने जिंदगी में एक अंधेरेपन की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसे कैसे रोकने में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं, ये हम सभी को सोचना पड़ेगा। हम सिर्फ दबाव के नाम पे आकर, हम किसी एक उदाहरण को लेकर हम नशे को अपना साथी नहीं बना सकते हैं। नशा सिर्फ हमारी जिंदगी को बर्बाद करता है, नशा कभी भी हमें हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देता है, नशा कभी भी हमें मुस्कुराहट नहीं देता है, नशा सिर्फ और सिर्फ अंधेरा देता है, हार देता है और आपको हर कदम पे वो तोड़ता जाता है, आपके आत्मविश्वास को खत्म करता जाता है। इसे हमें समझना है, इस विषय को हमें एक आंदोलन की तरह लेना चाहिए। अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ है पूर्वी

0: जिला के उपायुक्त राजीव रंजन, हम उनसे बात करते हैं। राजीव रंजन सर, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: राजीव सर। शुरुआत, क्योंकि एक ऐसे विषय को लेकर आज हम कार्यक्रम में हैं जो हमारे लिए चिंतनीय भी है, और आज वो समय आ गया है जब हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कैसे नशे को रोक सकते हैं, हम कैसे समाज में ये जो जहर फैल रहा है उस जहर को फैलने से रोक सकते हैं। और हम लगातार देख रहे हैं कि जब झारखंड सरकार की बात करते हैं तो बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, और आज आपसे बात करने का उद्देश्य भी यही है कि जो ये 15 जून से लेकर 26 जून तक का ये अभियान जो चलाया जा रहा है उसमें किस तरीके से आप लोगों तक पहुँच रहे हैं। सो सर, सबसे पहले क्योंकि पूर्वी सिंहभूम में बात करने का उद्देश्य आपके लिए विशेष एक बहुत बड़ी चुनौती है, कैसे आप इसे देखते हैं सर?
1: हाँ, ये तो नशा जो है समाज में इस तरह जहर की तरह घुल रहा है कि वो सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए चिंतनीय विषय बनते जा रहा है। सरकार ने अभी इसी एक महीने में इसलिए एक अभियान ऐसा चलाया है कि लोगों को कैसे हम नशे से दूर रखें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नशा व्यक्ति के न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पे भी नुकसान पहुंचाता है
0: जी।
1: तो इसीलिए इस पे ये अभियान जो है, हम लोग इसको चलाकर ऐसा प्रयास करेंगे कि लोगों को जागरूक करें, उनमें जागरूकता लाएं।
0: राजीव सर, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हम तो जब हम चीजों को अपने समाज में बदलते देखते हैं, हम जब परिवर्तन को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है। लेकिन बात जब हम नशे की करते हैं तो विशेषकर जो आज हमारे टीनेजर्स हैं, हमारे यूथ हैं, आपको क्या लगता है क्या ये वजह रह रही है कि जो हमारे यूथ हैं वो नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं?
1: ये इसका सबसे मुख्य वजह जो मुझे लगता है वो है कि बहुत ही मानसिक तनाव में बच्चे आजकल हैं। वो इतना अधिक कंपटीशन है उनका हर फील्ड में, जिस किसी भी फील्ड में जाते हैं तो बहुत अधिक कंपटीशन के दौर में जी रहे हैं। एक बहुत बड़ा उनपे प्रेशर, मानसिक दबाव है। वो दबाव घर पे भी है, बाहर भी है, मतलब हर जगह उनपे एक दबाव बना हुआ है। ऐसे में ही होता है कि थोड़ी संगति जो हम लोग बोलते हैं खराब हो जाती है उनकी, कुछ ऐसे लोगों के साथ हो जाते हैं। तो छोटी उम्र है, कच्ची उम्र है, बच्चे सही गलत का बहुत पहचान नहीं कर पाते हैं और क्षणिक सुख के लिए कभी कभी नशा वो लेना शुरू कर देते हैं। और नशा एक ऐसा है वो फिर उनको अपना एडिक्ट बना देता है। तो ये कारण एक हो सकता है नशे का इतने समाज में इसकी पैठ बनाने का।
0: तो सर, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जब हम एक उपायुक्त की बात करते हैं हम कहते हैं कि जिले की पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पे होती है, और एक बहुत बड़े एग्जाम से, देश के सबसे बड़े एग्जाम से आप निकल कर आते हैं, यूपीएससी की जब हम बात करते हैं तो आप उतनी कठिन परीक्षा को पास करते हैं, आपने अपने किताबों के साथ इतना वक्त बिताया होता है। मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर जब आप युवाओं से बात करते हैं या वो ऐसे कुछ लोग जो बातें करते हैं जब इस विषय पे, तो एक उदाहरण आता है कि पढ़ाई का प्रेशर इतना हो जाता है कि वो हैंडल कभी कभी नहीं कर पाते हैं, और फिर बच्चे जो है मूव कर जाते हैं, उनका जो दिमागी सोच जो होती है वो नशे की तरफ चली जाती है, उन्हें लगता है कि इससे अब वो बेहतर कुछ कर पा रहे हैं। सो ये कहीं से रिलेट करता है क्या? क्या क्या एजुकेशन का प्रेशर आज की तारीख में इतना बढ़ रहा है या लोग इसका सहारा ले रहे हैं?
1: नहीं, एजुकेशन का प्रेशर भी है और भी, मतलब कई तरह के प्रेशर है, एजुकेशन भी उसमें से एक है। आज चूंकि इतनी बढ़ती जनसंख्या हमारी है और उसमें कम्पीट करके हर व्यक्ति चाहता है कि आगे वो बढ़े, पैसा उसके पास हो, एक ऐसे पैसे की चाह भी एक ऐसे आ रही है, तो ये सब तरह का प्रेशर रहता है। कुछ पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि बच्चे हमारे जो है पेरेंट्स जो सोच रखे हैं उसको बच्चे कर सकें, तो ये सब भी एक प्रेशर का हिस्सा होता है और ये कारण बनता है कि वो नशे के आदि हो जाते हैं। और नशा तो आप जानते ही हैं कि कैसे अपने जाल में जकड़ लेता है,

0: शराब पीना जैसे बताते हैं आपको, उदाहरण हम बता रहे हैं, तो वो एक अच्छा नहीं माना जाता था सामाजिक रूप से, उसको हम सही नहीं मानते थे। और ऐसा अगर कोई मतलब ड्रिंक करता भी था तो प्रयास करता था कि बड़े लोग के सामने वो ना जाए, ऐसा सामाजिक लिहाज ऐसा रखा जाता था। तो ये देखिएगा धीरे धीरे अब ये टूट रहा है। यहाँ पे अब लोग मतलब कि घर में बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं, हम कई ऐसा उदाहरण देख रहे हैं, लड़कियां खूब ड्रिंक कर रही हैं। तो ये एक ऐसा ऐसा शो ऑफ कल्चर, इसको हम कह सकते हैं कि ऐसा शो ऑफ हो गया है, पाश्चात्य संस्कृति को देख करके एक ऐसा हो गया है कि इसको लोग मतलब ऐसा मानने लगे हैं कि हम पीते हैं तो अच्छे अच्छे लोग, बड़े लोग कहे जाएंगे हम, तो ये भी एक कारण है।
1: एक फैशन स्टेटमेंट बनता जा रहा है कि नहीं ये तो कूल है,
0: हाँ
1: मतलब ये तो होना ही चाहिए।
0: हाँ हाँ
1: सो
0: हाँ
1: कई
0: ऐसा
1: लोग
0: ऐसा
1: कहते हैं कि
0: कुछ है।
1: तुम नहीं लेते हो, तुम नशा नहीं करते हो, तो इस तरह के भी सवाल
0: हाँ
1: आने लगते हैं।
0: ऐसा है, ऐसा है।
1: ये भी एक बहुत चर्चा का विषय है सर, कि जो पाश्चात्य संस्कृति की हम बात कर रहे हैं कि फैमिली में पेरेंट्स और बच्चों के बीच का एक गैप भी बनता जा रहा है, जहाँ पे शायद बच्चे पेरेंट्स से अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे, या फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे रहे जितना समय उनको देना चाहिए। ये भी एक कारण है कि बच्चे इन चीजों के आदी हो जा रहे हैं।
0: हाँ ये भी समस्या का जड़ इससे भी शुरू होता है, क्योंकि लोग अपने लाइफ में इतने मशगूल हो गए हैं, बच्चे से तो बहुत एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, लेकिन उस अनुसार अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं, उनसे बातें नहीं शेयर कर रहे हैं, उनके पढ़ाई के बारे में रोज उनसे नहीं पूछते हैं, नहीं जानते हैं उनके और बाकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उनके निजी जिंदगी में क्या चल रहा है, इन सारी बातों पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं। सोचते हैं कि स्कूल का फी भर देना, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देना, से हमारा कर्तव्य पूरा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेरेंटिंग जो है वो जैसे एक पौधे को हम लोग कैसे पानी दे करके सींच करके उसको आगे बढ़ाते हैं, तो बचपन भी ऐसा ही होता है। ये नहीं होने से बच्चे जो है कहीं किसी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उनको घर में जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो वो बाहर की दुनिया में उसको खोजने लग जाते हैं, तो नशा जो है इसी इससे भी घुसता है उनके जीवन में।
1: यानी हर किसी को अपनी एक जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। राजीव सर, पूर्वी सिंहभूम जिला की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, और जब हम पूर्वी सिंहभूम जिला की बात करते हैं, यहाँ पर नशे को लेकर और विशेषकर जो निषिद्ध मादक पदार्थ है, जो सरकार की भी एक कोशिश होती है, जैसे हेरोइन हो गया, गांजा हो गया, अफीम हो गया, कोकीन हो गया, डेंड्राइट हो गया, ऐसे चीजों पे कंप्लीटली रोक लगाना है, लोगों को अवेयर करना है। आपके लिए ये बड़ी चुनौती बनती है क्योंकि पूर्वी सिंहभूम जिला में ये परेशानी और जिलों से ज्यादा है।
0: हाँ सही आप बता रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया हमारा है, दो स्टेट से यहाँ पे मिलता हुआ है, तो ऐसा जो है स्मगल होने का कभी कभी ऐसा हम लोगों को कंप्लेन आता है हम लोगों के पास, तो वो इस पे लगातार यहाँ पे पुलिसिंग करके प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग इस तरह के ड्रग पैडलर हैं और जहाँ से ये शुरू होके जहाँ तक जा रहा है, वो दोनों सोर्स को हम लोग इस पे पकड़ बनाएं अपनी, और उसको हम लोग पकड़े खोज करें कि ये सोर्स कहाँ से आ रहा है।
1: अभी अभियान चल रहा है सर, झारखंड सरकार प्रत्येक वर्ष उनका भी एक सतत प्रयास होता है कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए कि जो निषिद्ध मादक पदार्थ हैं कैसे उनसे बचना है। तो जब इस अभियान की बात करते हैं, मैं पूर्वी सिंहभूम जिला की बात करूं, कि किस किस तरह की एक्टिविटीज आप करते हैं, कैसे आप युवाओं तक पहुंच रहे हैं, किस तरह का अप्रोच आपका होता है?
0: ये नशा से दूर रखने का सबसे जो बेहतर तरीका है वो जागरूकता है। लोग जब जागरूक हो जाएंगे कि हाँ ये नशा निषिद्ध मादक पदार्थ जो है वो नहीं लेना है, वो उनके लिए घातक है, तब उसको वो छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे सर्वप्रथम ये प्रयास कर किया जा रहा है कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की गोष्ठी वगैरह आयोजित करके ऐसे स्कूल कॉलेजों को इसमें जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी हमारा हाट बाजार लगता है वहां भी निषिद्ध मादक पदार्थों के बारे में लोगों को माइकिंग करके, नुक्कड़ नाटक करके, तो मंडली के द्वारा लोगों को में जागरूकता लाई जा रही है कि इसको नहीं लेना चाहिए। तो कोशिश किया जा रहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों जगह पे अपनी पहुंच बनाई जाए और लोगों में इस बात का संदेश दिया जाए कि सरकार भी चाहती है कि निषिद्ध मादक पदार्थों को अपने जीवन से दूर रखें।
1: कितना एक प्रभाव पड़ता है जब इस तरह के अभियान की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर ये बात की जाती है। मैं आप क्योंकि आप तो जिस जगह पे हैं, आपको हर चीजें देखनी पड़ती हैं, आपको पुलिसिंग भी देखना है, आपको मैनेजमेंट भी देखना है। सो क्या एक फर्क पड़ता है जब हम इस तरह का कोई एक अभियान अपने जिले में करते हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं? अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि इससे कितना बदलाव आता है। क्या एक राजीव सर, क्या एक फर्क पड़ता है?
0: नहीं, इससे फर्क पड़ता है लोगों में, जब कोई ऐसा कोई अभियान

0: होता है जब सरकार उसको लेकर आती है, तो हम लोगों को भी, मतलब हमारे तो बहुत सारे काम होते हैं, बट जब भी सरकार से इस तरह का कोई डायरेक्शन आता है तो ऑलवेज वो हमारा बहुत प्रायोरिटी में आ जाता है। तो हम लोग अभियान के साथ साथ इन चीजों पे बाद में भी नजर रखते हैं, अभियान के बाद भी नजर रखते हैं। और लोगों को भी लगता है कि किसी चीज को जब गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है तो लोगों को भी एक ऐसा लगता है कि सरकार अब खुद इसको देख रही है, तो इसका बेहतर रिजल्ट आते हैं। हम लोग कई सारा जब भी अभियान चलाया गया है देश में अलग अलग कार्यक्रमों को, अलग अलग चीजों को लेकर के, तो परिणाम सब देखे हैं हम लोग कि बेहतर परिणाम उसका रहा है।
1: मैं अब इसके एक दूसरे पहलू को आपसे जानना चाहूंगा राजीव सर, कि हमेशा हम लोग कहते हैं कि अगर आपको किसी एक बुरी आदत को छोड़ना है तो आपको एक अच्छी आदत पकड़नी होगी, तो आप
0: जी
1: इसको
0: जी
1: कैसे देखते हैं कि कोई अगर इसके एडिक्शन में आ गया है, कोई युवा इसके जाल में फंस गया है, तो किन चीजों को वो अपनाए?
0: सबसे पहले इसमें फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो परिवार का, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए नशे को छुड़ाने के लिए। दूसरा, उनके जो भी मित्र हैं, सहयोगी उनके हैं, वो लोग को भी इसमें आगे आना होगा कि उनको कैसे काउंसिलिंग करके नशे से दूर रखें, और साथ ही साथ उनको स्वस्थ जीवन शैली जैसे जीने के लिए खेल इसमें एक बहुत अच्छा इसका उदाहरण बनता है, योग हम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, तो इन सारी चीजों से, और उनको उचित एक काउंसिलिंग का जरूरत होता है। जो लोग भी इस तरह के नशे के गंभीर रूप से आदि हो जाते हैं, एक उचित काउंसिलिंग भी उनका जरूरी होता है, तो ये उनको देने से नशे से हम लोग दूर रख पाते हैं, रख सकते हैं उनको।
1: आप उन पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां आज भी एक डर होता है कि अगर हम शायद किसी को ये बता दें कि हमारा बच्चा एडिक्टेड है या हमारा बच्चा तो निषिद्ध मादक पदार्थ लेता है तो शायद उनके स्टेटस पे चोट आ जाएगा, ये भी डर आज भी लोगों के मन में, रैदर देन कि उनको लग कि आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आप अपने बच्चे की जिंदगी बचा सकते हैं, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे राजीव सर?
0: ये ऐसा है ना कि हम लोग कहते हैं कि सुबह का भूला जब शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, तो नशे में पेरेंट्स को यही सोचना चाहिए कि ठीक है, समुचित ध्यान नहीं देने के कारण या बच्चे में ऐसी कुछ कमजोरी थी कि नशे की तरफ झुकाव उसका हो गया, बट अब वापस लाने का समय है, तो उनको आगे बढ़ करके इसको स्वीकार करना चाहिए और बच्चे को पूरा सपोर्ट करना चाहिए इस काम में, तभी वो नशे से दूर हो पाएंगे।
1: यानी आपको उस दायरे से बाहर आना होगा। एक आखिरी सवाल सर, कि जब आप पूर्वी सिंहभूम जिले की जिम्मेदारी आपने ली, और हम पहले भी देखते आ रहे हैं कि अब बहुत चीजें बदली हैं, आपके जिले के बच्चे नेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे खेल की बात कर ले या फिर अचीवमेंट्स की बात कर ले, और बहुत सारे स्कीम्स भी सरकार की है जो जिले में आप लोग बहुत बेहतर तरीके से लागू कर रहे हैं। सो एक नजर में जब आप पूर्वी सिंहभूम जिले को देख रहे हैं, कौन कौन सी संभावनाएं आपको अपने जिले में नजर आती
0: है? यहाँ पे तो बहुत संभावनाएं हैं, यहाँ पे जैसे आप खुद ही बताए, तो जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, यहाँ पे कॉलेजेस भी हैं अच्छे, यहाँ पे खेल के लिए यहाँ पे बहुत ही बेहतर माहौल है, बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पे है, तो बेसिक जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए वो इस शहर में पूरे झारखंड का अगर हम कंपेरिजन करें तो काफी अच्छा है, उसमें काफी बेहतर है, और लोग इसीलिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको बहुत सपोर्ट है, लोग यहाँ पे थोड़ा प्रगतिशील विचार को रखते हैं, और ये इस कारण से यहाँ पे बेहतर एक माहौल है, हर चीज का एक अच्छा माहौल है।
1: वो कौन सा सब्जेक्ट है या वो कौन सा क्षेत्र है जिस पे उपायुक्त के तौर पे राजीव सर ज्यादा काम करना वहाँ पे चाहते हैं या प्रायोरिटी बेसिस पे उस पे काम करना चाहते हैं?
0: यहाँ पे क्या है ना कि दो सेक्टर है, एक शहर है एक गांव है, दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। इस जिला में शहर के लोगों को जो अपनी समस्याएं उनकी होती है, बिजली पानी, ये शहर की समस्या हमेशा बनी रहती है, लेकिन गांव की समस्या इससे थोड़ी अलग होती है, वहां पे उतना शिक्षा का स्तर नहीं है, तो उनका और भी बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, इससे कनेक्टिविटी का कभी प्रॉब्लम होता है, वहां पे आंगनवाड़ी सेंटर नहीं है, वहां पे छोटे छोटे बच्चों को क्रेच की सुविधा नहीं है, तो ये दो तरह का, इसलिए हम लोग दो तरह से बांट के इसको प्लानिंग करते हैं, शहर के लिए क्या चाहिए और जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उनके लिए क्या चाहिए। सिंहभूम जिला में इसी ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं।
1: राजीव सर, बढ़ते कदम कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आज आपको सुन रहे हैं, उन्हें क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप?
0: हम यही कहना चाहेंगे कि नशा मुक्त समाज जो है वो स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध समाज की नींव है, इसीलिए हम सभी नागरिकों को नशा मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए।
1: राजीव सर, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आप शामिल हुए और हमारे श्रोताओं के साथ इतनी अच्छी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका।
0: धन्यवाद। जय हिंद।
1: बढ़ते कदम कार्यक्रम के आज के इस अंक में हमने बात की पूर्वी सिंहभूम

जिला के उपायुक्त राजीव रंजन से, और सर ने बहुत कुछ हमें बताया किस तरीके से हमें अपनी सोच में बदलाव लाना है और कैसे समाज में एक बदलाव लाना है, किस तरीके से माँ बाप को, बच्चों को एक दूसरे को समझना है, किस तरीके से समाज में हम इस नशे की जाल से बच सकते हैं, इस नशे की जाल को फैलने से रोक सकते हैं। कहते हैं ना कि हमेशा जो शुरुआत होती है वो खुद से करनी चाहिए। हम हमेशा जब बदलाव की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये बदलाव वहां से शुरू होनी चाहिए, लेकिन जब तक ये वहां खुद से नहीं होगा तब तक उसकी शुरुआत नहीं होगी। आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हम एक समृद्ध झारखंड के निर्माण में, एक खुशहाल झारखंड के निर्माण में आज से शुरुआत करेंगे। हम संकल्प लेंगे कि हम नशे को ना कहेंगे, हम जिंदगी को हाँ कहेंगे। हम संकल्प लेंगे कि जो भी इस जाल में फंसा है उसे इस भंवर से निकालने में हम पुरजोर कोशिश करेंगे। और आप विश्वास मानिए कि आपके एक सकारात्मक सोच की जरूरत है, आपके एक बढ़ते कदम की जरूरत है, और जैसे ही आप कदम आगे बढ़ाएंगे आपको अपनी जिंदगी नजर आएगी। और अच्छी बात है कि सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हमारे सामने होती हैं, सरकार के बहुत सारे ऐसे प्रयास होते हैं जिनसे जुड़कर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। चाहे केंद्र की बात करें, चाहे राज्य की बात करें, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जैसी योजनाएं जो आपको एक शुरुआत देती हैं, बस सकारात्मक सोच होनी चाहिए और आप अपने लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे ही केंद्र से बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जहां आप अपना स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो जब इतनी सारी चीजें हमारे साथ हैं तो फिर नशा क्यों? तो बस आज हमें ठानना है कि बहुत हो गया, अब हम सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर खुशियों को दौड़ने देंगे, अपने लक्ष्य को दौड़ने देंगे, अपने खेल को दौड़ने देंगे, अपने शिक्षा को दौड़ने देंगे। हम जीतेंगे, हम मुस्कुराएंगे और कभी भी किसी भी परिस्थिति में नशे को अपना साथी नहीं बनाएंगे। कार्यक्रम बढ़ते कदम के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान, नए विषय के साथ। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत, आपको छोड़े चल रहा हूं इस खूबसूरत से गाने के साथ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे बढ़ते कदम कार्यक्रम, जिसमें हमने सुना नशा मुक्त झारखंड अभियान, कितना बदलाव, कितनी चुनौतियां। भेंटवार्ता आप सुन रहे थे राजीव रंजन उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम जिला से, उनसे बातें कर रहे थे कमलेश कुमार मिश्र। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओ, थोड़ी सी बातें हम आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे। अभी आप बढ़ते कदम में सुन रहे थे नशा मुक्त झारखंड के बारे में, तो बात कर ली अगर हम नशे की, तो नशा जो है नाश का कारण होता है, ये हम सभी जानते हैं। थोड़ी सी कोशिश अगर हम करें ना, तो इससे अपने आप को दूर रख सकते हैं, और नशे से दूर रहने के लिए खुद को सकारात्मक आदतों, शारीरिक व्यायाम और शौक में व्यस्त रखें। नशा छोड़ने के लिए इच्छा होने पर गहरी सांस लें, पानी पिए, अपने परिवार या दोस्तों से बातें करें, यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाए रखेगा। नशे की लत से बचने के लिए छोटे छोटे काम है ना, वो हम कर सकते हैं।

बात कर रहे हैं हम नशे की, तो हम सभी जानते हैं कि नशा जो है ना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। अगर नशा कोई करता है तो यकीन मानिए उसके जीवन का जो वक्त है ना वो बर्बाद होगा, साथ ही वो हर वो काम नहीं कर पाएगा जो उसके मन में कभी न कभी इच्छा रही होगी। तो जरूरी है कि हम इस लत से बचें, इसे छोड़ने के लिए कुछ कदम तो हम जरूर अपना सकते हैं। सबसे पहले अपने समय का सही उपयोग करें, योग करें, मेडिटेशन करें और खेल कूद जैसी गतिविधियों को अपने दिन का हिस्सा बनाए रखें।

कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो नशे से ग्रसित लोग हैं उन्हें पता नहीं चलता कि वो किस कारणवश नशा कर रहे हैं। कभी तो शौकिया तौर पे, कभी दोस्तों के दबाव में, कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जब लोग सोचते हैं कि शायद मैं नशे में रहूंगा तो मुझे परेशानी नहीं होगी। तो ये गलत बात है। सबसे जरूरी है कि अगर आप नशे के शिकार हैं तो उसके कारणों को पहचानें, उन परिस्थितियां या लोगों से बचें जो इसके लिए आपको उकसाते हैं। साथ ही अगर आपको कोई स्ट्रेस है, मानसिक दबाव है, तो उससे भी उबरने की कोशिश करें। उससे उबरने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपनों से बात करें और उन लोगों से बातें करें जो आपको सही राह दिखाए। साथ ही साथ खुद के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। जरूरी नहीं है कि एक ही बार आप बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर ले और वो पूरा ना हो तो उसके चलते आप तनावग्रसित हो जाए और आपको फिर से नशे की ओर आना पड़े। तो इसलिए जरूरी है कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, छोटी छोटी मंजिलों को आप मन में सोचें और वो कैसे पूरे होंगे, किस तरह से पूरे होंगे, इसका ख्याल करें। और अगर नशा आपसे छूट नहीं रहा है तो बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनसे भी आप मदद ले सकते हैं, काउंसलिंग भी कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है कि अपने परिवार की, अपने दोस्तों की मदद लीजिए। और उससे भी ज़रूरी है आप अपना आत्मविश्वास बनाएं कि आपको इस मुसीबत से बाहर निकलना है। और एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि आपके पीछे आपकी पूरी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, घर होता है, परिवार होता है। तो उन सबको ध्यान में रखकर ये जरूर मन में सोचे कि नशा नहीं करना है। और अगर आपके सामने भी अगर कोई इस तरह से करता है तो उसे भी मना करे, उसे भी समझाने की कोशिश करे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना जो हमारे जीवन में काम आ सकती हैं। तो कोशिश करिए नशे से दूर रहें, लोगों को भी दूर रहने की सलाह दीजिए। और अब आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे जोहार रांची कार्यक्रम, बस थोड़ी ही देर में।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। 10:30 हुए हैं और ये वक्त होता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जोहार रांची का। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास रखना। रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, यदि हौसले बुलंद है तो मंजिल दूर नहीं रहती। इन बातों के साथ अस्मिता है आपके साथ और मेरे साथ है
1: और आपके साथ है सुनीता। आप सभी को हमारा नमस्कार जोहार।
0: तो क्यों ना आज के कार्यक्रम की शुरुआत इस मोटिवेशनल सॉन्ग के साथ करें।

0: जो हर आजी कार्यक्रम में हम जैसा कि अस्मिता जानते हैं कि बहुत सारी बातें हम अपने श्रोताओं से करते हैं और सबसे पहले जो हम बातें करते हैं ना उनसे हम कुछ अच्छी बातें करते हैं, अच्छे विचार हमसे शेयर करते हैं। तो आज क्या ऐसी बातें हैं जो हम अपने श्रोताओं से शेयर करना चाहेंगे?
1: तो आज का सुविचार है कि जीवन एक लंबी यात्रा है जिसमें कभी खुशी के पल आते हैं तो कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर छोटी कोशिश हमें अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले जाती है।
0: हमें याद रखना चाहिए कि असफलता अंत नहीं होती बल्कि सफलता की ओर कदम बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। हर गलती हमें कुछ न कुछ सिखाती है, आगे बढ़ने का अवसर देती है। इसलिए यदि कभी जीवन में कठिन समय आए तो निराश होने के बजाय उससे सीख लेने का प्रयास करें। जीवन है, उतार चढ़ाव आते रहेंगे श्रोताओं, इसलिए अपने आप को मजबूत रखिए, हिम्मत करिए, आगे बढ़िए। हौसलों से उड़ान होती है, आप सभी जानते हैं। और फिलहाल एक गीत आपके लिए।

जोहराची कार्यक्रम में बात कर लेते हैं अस्मिता मौसम की, क्योंकि मौसम का उतार चढ़ाव ना बहुत देखने को मिल रहा है। आज सुबह में जब मैं आ रही थी तो बिल्कुल बादल था और हवाएं बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अभी बहुत धूप है, धूप है, गर्मी है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है, जैसे कि सूचना आई है कि आज भी बादल छाएंगे, बारिश हो सकती है और आने वाले एक दो दिनों में बारिश होगी। मानसून एक बार फिर थोड़ा सक्रिय हो रहा है, तो देखते हैं हमारे यहाँ बारिश अब कब से शुरू होती है और मौसम कब से बहुत सुहाना हो जाता है। लेकिन फिलहाल अभी जो मौसम है उतना बुरा भी नहीं है, गर्मी कम है, थोड़ी कम है, मौसम का आनंद उठाइए, अपने श्रोताओं से यही कहेंगे। लेकिन मौसम बदल रहा है, इसमें अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, ऐसे में ही बीमारियाँ पनपती है। तो मौसम का मजा लीजिए इस खूबसूरत से गीत के साथ, आगे बातें करेंगे और भी बहुत सारी।

एक बार फिर से हाजिर हैं आपका कार्यक्रम जोहार रांची लेकर। तो चलिए अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हम कौन सा दिवस मना रहे हैं। 24 जून को विश्व स्तर पर मुख्य रूप से कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को वैश्विक कूटनीति और निर्णय लेने के क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है। और अब इतिहास के पन्ने को पलटते हैं और जानते हैं कि आज का इतिहास क्या है। 1963 की बात करें तो डाक एवं टेलीग्राफ विभाग ने राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा की शुरुआत की। 1974 में भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मैच की दूसरी पारी में मात्र 42 रन पर ऑल आउट हो गई थी। यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत का आज तक का सबसे न्यूनतम स्कोर है।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: अब बातें उनकी जिन्होंने इस दुनिया में कदम रखा। भारतीय राजनेता और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का जन्म आज ही के दिन यानी कि 1937 में हुआ था। और 1937 की बात करें तो अनीता देसाई, जो कि अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका हैं, उनका भी जन्म आज ही के दिन यानी कि 24 जून को हुआ था। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री संगीतज्ञ और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म भी 1847 में हुआ था। और बात करें 1885 की तो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा कट्टर सिख नेता तारा सिंह का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। भारत के क्रांतिकारी अमर शहीदों में से एक दामोदर हरी चापेकर का जन्म भी 1869 में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय लेखक, इतिहासकार, श्रेष्ठ वक्ता और विद्वान विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े का जन्म 1863 में हुआ था।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची। दोस्तों, अब बातें उनकी जिन्होंने आज के दिन ही इस दुनिया को अलविदा कहा। भारतीय लेखक और पत्रकार अवनाथम सीतारमन का निधन आज के दिन यानी कि 2001 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन चंद भारतीय सेनाओं में से एक थे जिन्हें ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा युद्ध पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस मिला था, और वो थे दरबान सिंह नेगी। उनका भी निधन आज ही के दिन यानी कि 1950 में हुआ था। ओम जय जगदीश हरे आरती के रचयिता तथा हिंदी पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रद्धा राम शर्मा का निधन भी आज के दिन यानी कि 1881 में हुआ था। भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध वीरांगना रानियों में से एक रानी दुर्गावती का निधन 1564 ईस्वी में हुआ था। गुणवानर साम्राज्य की महान वीरांगना महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस हर साल 24 जून को मनाया जाता है। उन्होंने 24 जून 1564 को मुगल सेनापति आसफ खान से युद्ध करते हुए अपनी मातृभूमि, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में जब आसफ खान ने गोंडवाना राज्य पर आक्रमण किया तो रानी ने वीरतापूर्वक कई मुगल हमलों पर विफल कर दिया। और बलिदान का प्रसंग की बात करें तो आखिरी लड़ाई में गंभीर रूप से घायल होने पर जब उनकी हार निश्चित हो गई तब उन्होंने शत्रु के हाथों अपमानित होने के बजाय अपनी कटार स्वयं अपने सीने में घोप कर वीरगति को प्राप्त करना उचित समझा। रानी दुर्गावती का समाधि स्थल वर्तमान मध्य प्रदेश में जबलपुर वर्गी रोड पर नरई नाला के पास स्थित है। उनके अद्वितीय साहस और बलिदान की स्मृति में भारत सरकार द्वारा 24 जून 1988 को उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित विश्वविद्यालय का नाम भी बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक श्री सोम गुरु सीबी सोरेन को और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा समेत 66 हस्तियों को प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। दिसुम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान मिलने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, बाबा को अलंकृत किया जाना उनके आजीवन संघर्ष, त्याग, जनसेवा और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण को दिया गया सम्मान है। और दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड को जल्द मिलेगी अमृत भारत वर्जन 3.0 ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, झारखंड को जल्द ही पहली अमृत भारत वर्जन 3.0 ट्रेन की सौगात मिल सकती है। रेलवे से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य को यह ट्रेन मिलने जा रही है। अजमेर से रांची के बीच वाया जयपुर होकर ट्रेन संचालित किए जाने की संभावना है। उम्मीद है कि जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा भारतीय रेलवे की द्वारा की जाएगी।

दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम सभी अपने काम में और पढ़ाई, परिवार और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ यानी अपनी सेहत का ध्यान रखना कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अभी तो समय है, बाद में अपनी सेहत पर ध्यान देंगे, लेकिन सच तो यह है कि अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो जीवन की सारी खुशियाँ फीकी पड़ जाती है। सेहतमंद रहने के लिए सबसे ज़रूरी है संतुलित भोजन। हमें अपने भोजन में हरी सब्जियां, ताजे फल, दालें, दूध और पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए। अक्सर हम स्वाद के चक्कर में जंक फूड और तली भुनी चीज़ों का अधिक सेवन कर लेते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए कोशिश करें कि घर का बना ताज़ा भोजन ही खाए। इसके साथ ही पानी का पर्याप्त सेवन करें। कई लोग दिन भर काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पानी पीना भी भूल जाते हैं, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त पानी पीना बेहद ही जरूरी है। पानी शरीर के लिए विषैली तत्वों को बाहर निकालता है और हमें तरोताज़ा बनाए रखता है।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: संगठनों स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। आप सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो हम सफर अस्मिता का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहेली फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के साथ। शब्द रचना गुलजार के हैं, संगीतबद्ध किया है एमएम करीम ने, आवाजें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की।

0: इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। और अगली फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, लवई से गुलाब दास मणिकपुरी, दंतरेंगी से भागवत वर्मा, और इन्होंने सुनना चाहा है मुस्कान फिल्म से ये गीत। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है निखिल विनय ने, आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।
1: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से चुपके तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो गया।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म कुछ तो है से समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने। आवाजें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की। और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, चैतिक बीरक और मीका बीरक।

इसी गीत के साथ आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम से अस्मिता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: गृहलक्ष्मी सुनने वाली हमारी सभी श्रोता बहनों को निधि का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका और आज मेरे साथ है खुशबू। और खुशबू कैसी हो तुम?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ निधि। नमस्कार सखियो और स्वागत है आप सभी का अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। आज हम अपनी ही सखियों के बारे में चर्चा करेंगे निधि कि किस तरह हमारी बहनें सबको जोड़े रखने का काम करती है, यानी जोड़ने का काम करती है।
0: बहुत अच्छी बात तुमने कही। तो खुशबू, ये तो हम जानते हैं और हम हमेशा देखते भी आए हैं कि महिलाएं ही होती हैं जो अपनी समझदारी और धैर्य से सभी रिश्तों को संभाल कर रखती हैं, चाहे वो विवाह के पहले हो या जब अपने माता पिता के घर में होती हैं या बाद में जब वे अपने माता पिता के घर को छोड़कर एक नए परिवार को अपनाती हैं तब भी। और स्त्रियां दो परिवारों में रिश्तों को जोड़कर रख सकती हैं। इनकी यही बात हमारे भारतीय संस्कृति और परिवार की नींव होती है।
1: बिल्कुल सही कहा निधि तुमने। और इसका कारण ये भी है कि इनमें दूसरों की भावनाओं को समझने की अधिक क्षमता होती है, क्योंकि महिलाएं है ना बहुत संवेदनशील होती हैं।
0: बिल्कुल,
1: वे कभी कभी तो दूसरों की बातों को बिना कहे भी समझ जाती है, खासकर अपने परिवार वालों की और अपने बच्चों की आवश्यकताओं को तो भली भांति ही जानती हैं। तभी तो वे सभी को एक धागे में बांध कर रखती हैं, कठिन परिस्थितियों में भी अपनी भावनाओं पर संतुलन बनाए रखती हैं। भले उनकी मानसिक स्थिति कैसी भी हो, लेकिन वो हमेशा तुम्हें खिलखिलाते मुस्कुराते हुए मिलेंगी, ताकि परिवार के सदस्य है ना को कभी परेशान ना हो।
0: हाँ, और यही बात उनकी जो ताकत है, शक्ति है, उसको दर्शाती है। तो दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझने के साथ साथ वे घर के सदस्यों की जो ज़रूरतें होती हैं उनको भी प्राथमिकता देती हैं। कई बार अपनी ज़रूरतों या पसंद को बाद में रखना, उसे उतनी प्राथमिकता ना देना, और ये सभी जो गुण है ना हमारी बहनों के अंदर, वही जो है वो धैर्य का काम करती हैं और धैर्य से काम लेने में उनकी मदद भी करती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा निधि तुमने। वैसे हम महिलाएं होती ही बहुत धैर्यवान हैं और हर परिस्थिति में, चाहे वो विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें धैर्य रखती हैं। और यही कारण है कि जीवन के सभी उतार चढ़ाव से गुजरते हुए रिश्तों को हम जोड़ कर रख पाती हैं, सहेज कर रख पाती हैं। क्योंकि तुमने देखा होगी बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो पूरी

0: परिवार को एक सूत्र में बांध के रखती हैं,
1: बिल्कुल
0: और वो परिवार है ना, हमेशा चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा खुशहाल ही दिखेगा तुम्हें।
1: खासकर जो परिवार में जो बड़े उम्र की महिलाएं होती हैं, जैसे
0: बिल्कुल
1: कि तो उनकी जो जिम्मेदारी है वो बहुत अहम होती है, उनका योगदान भी जो होता है ना खुशबू, बहुत अहम होता है, क्योंकि उनके हाथों में ही ये जिम्मेदारी होती है कि वो सबको एक साथ कैसे जोड़ कर
0: जोड़
1: रखें।
0: के रखें।
1: क्योंकि मनमुटाव जो है, या छोटी छोटी बातों पे कभी कुछ नाराज़गी हो जाती है, या कभी हम दूसरों की भावनाओं को ठीक से नहीं समझ पाते, तो इसमें क्या होता है कि आपसी मतभेद हो जाता है कभी कभी। तो एक ऐसी महिला होनी चाहिए घर में जो सबको समझा बुझा कर और सबको प्यार से रहना सिखलाए।
0: सिखाए
1: और महिलाएं सिर्फ अपने जीवन में ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी में भी वे इस संस्कार की नींव डालती हैं, है ना।
0: बिल्कुल। और आज के आधुनिक युग में रिश्तों को संभालना महिलाओं के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गया होगा,
1: हाँ बिल्कुल,
0: क्योंकि घर से बाहर भी उनकी भूमिका होती है, जिसकी वजह से उन्हें अधिक जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। और ऐसे समय में यदि परिवार के सदस्यों का साथ मिलता है तो परिवार बहुत अच्छी तरह से चलता है। हालांकि महिलाओं पर ही ये जिम्मेदारी होती है कि वे परिवार को सहेजे, लेकिन परिवार के सदस्यों का सहयोग
1: बिल्कुल
0: भी बहुत ज़रूरी है।
1: हाँ, और चुनौतीपूर्ण तो है ही स्थिति, क्योंकि दोहरी भूमिका में आ गई हैं हमारी बहनें आजकल। पहले की बात अगर हम करें तो वे घर की ही जिम्मेदारी निभाती थी, लेकिन आज बाहर की भी जिम्मेदारी उन्हें निभानी है। और ऐसे में अगर वे रिश्तों को भी सहेज कर रखती हैं तो ये वाकई सराहनीय बात है। और घर परिवार में ऐसे अनेक अवसर आते रहते हैं, जैसे तुम देखो शादी ब्याह का अवसर है, उत्सव है, या किसी का जन्मदिन हो, बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जिसका निमंत्रण हमें मिलता है, और उस वक्त हमारे लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारी जो बहनें हैं वो इतनी व्यस्त रहती हैं, दोहरी भूमिका भी निभाती हैं, लेकिन फिर भी हर एक अवसर के लिए, छोटे या बड़े अवसर के लिए, पूजा पाठ के लिए और सब लोगों के लिए वक्त निकालती हैं, तभी तो वे रिश्तों को संभाल कर रख पाती हैं।
0: बिल्कुल। और वे इसमें सामंजस्य बिठाती हैं, संतुलन बिठाती हैं। वो घर बाहर दोहरी जिम्मेदारी निभाते हुए घर और बाहर दोनों ही रिश्तों को संभालती हैं, तभी वे सबकी आशाओं को पूरा करती हैं और अपने बच्चों को, खासकर बेटियों को भी इसकी शिक्षा देती हैं, ताकि वे भी इस परंपरा को आगे बनाए रख सकें।
1: ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात है खुशबू, क्योंकि ये जो बात है ना रिश्तों को सहेजने की, वो सिर्फ ये गुण जो है वो अपने तक ही सीमित नहीं रखती।
0: बिल्कुल।
1: आने वाली पीढ़ी को भी उसे देना, उस परंपरा को सिखाना, खास करके अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को वो सिखाती हैं और इसकी एक मजबूत नींव रखती हैं। और सच हम कहते हैं ना कि अगर स्त्रियों में इतना धैर्य और त्याग ना हो तो रिश्ते बिखरने लगेंगे। और
0: क्योंकि हम स्त्रियों के इस योगदान के बिना संस्कारों की कल्पना भी नहीं कर सकते,
1: बिल्कुल, और एक मजबूत परिवार की कल्पना भी
0: नहीं
1: कर
0: कर सकते
1: सकते
0: हैं।
1: तो अब महिलाओं की बात हो रही है तो चलो, अभी तो मैं नहीं बताऊंगी कि कौन सा गाना सुनवाने जा रही हूँ, वैसे हम बताते भी नहीं है, लेकिन कुछ इसी से संबंधित है ना।
0: बिल्कुल, सुनते
1: तो
0: हैं ये
1: चलिए
0: प्यारा सा गीत।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर

0: पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सखियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और अब निधि बताएंगी कि आगे कार्यक्रम में क्या है। निधि,
5: तो बहनों, कार्यक्रम को हम अब आगे बढ़ाते हुए पेश कर रहे हैं भेंट वार्ता, और आज का हमारा विषय है डिप्रेशन का शिकार होती महिलाएं। और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर ओमी सिंह, और इनसे बातें कर रही हैं कुमारी खुशबू। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
6: वर्तमान समय में मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर विषय बन गया है, और महिलाओं में डिप्रेशन या अवसाद की समस्या तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। परिवार, कार्यस्थल, सामाजिक अपेक्षाओं तथा व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रयास में अनेक महिलाएं मानसिक तनाव का सामना करती हैं। यदि यह तनाव लंबे समय तक बने रहे तो यह अवसाद का रूप ले सकता है। डिप्रेशन का शिकार होती महिलाएं, आज इसी विषय पर हमसे बातें कर रही हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर ओमी सिंह। ओमी जी, आपका हमारे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
7: धन्यवाद खुशबू जी, आज आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए मुझे बुलाया है अपने कार्यक्रम में, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी आभारी हूँ।
6: ओमी जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज के समय में महिलाओं में डिप्रेशन के बढ़ते मामलों के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं?
7: महिलाओं में डिप्रेशन के बढ़ते मामले, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, दिन प्रतिदिन यह बढ़ता ही जा रहा है। और आप अगर कारणों के बारे में खुशबू जी पूछ रही हैं, तो मैं आपको एक जो सबसे प्रमुख कारण हमें दिखता है वो है संयुक्त परिवार का विघटन और एकाकी परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली का समाज में अस्तित्व में आना। क्या शहर, क्या गांव, हर जगह न्यूक्लियर फैमिली का प्रचलन बढ़ गया है, जिसके ऑफकोर्स कई रीजन है, कई कारण है, पर इसकी वजह से ये जो अकेलापन आ गया है ये एक बहुत बड़ा कारण है। चाहे वो एक स्टूडेंट है, 18-20 साल की लड़की है, या 28-30 साल की हाउसवाइफ है, या एक वर्किंग फीमेल है, किसी भी एज ग्रुप की महिला है, वो अपनी जगह पर अकेली ही जूझ रही है अपनी समस्याओं से
6: जी।
7: दूसरा एक कारण है परफॉर्मेंस प्रेशर, यानी अगर वो एक गृहिणी है तो भी उसपे पहले के जैसा, पहले क्या था, गृहिणियां अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो बच्चे को कोई और पढ़ा रहा है, गृहिणी अपने काम में लगी है घर के काम में तो घर के बाकी मेंबर हैं वो बच्चों को कोई नहला दे रहे हैं, कोई उन्हें स्कूल पहुंचा दे रहे हैं, कोचिंग पहुंचा दे रहे हैं, तो उनपे आज के समय में उनपे प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, उनका मल्टीपल रोल हो गया, बहुत सारे कर्तव्यों को, दायित्वों को, भूमिकाओं को वो अकेले निभा रही है
6: जी। आज हम देखते हैं कि महिलाएं घरेलू और कार्यस्थल पर दोनों जगह व्यस्त है और अपनी भूमिका निभा रही है, तो ऐसे में उनके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?
7: निसंदेह बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप एक महिला को देखिए जो घर भी देख रही है और अपना वर्क स्पेस यानी अपना कार्यस्थल, सुबह उठने से लेकर रात वापस सोने तक में उसकी जो डे टू डे की लाइफ है वो जटिलताओं से भरी हुई है, वो पहले वाली सादगी नहीं रही, कॉम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ गई है कि वो सुबह उठते सोचती है कि आज खाने में क्या बनाना है, घर में सब्जी है या नहीं। अगर उसने हाउस हेल्प लिया भी है कि कोई आ रही है उसे मदद करने के लिए घर में, तो उसके लिए पूरी तैयारी है या नहीं, बच्चे को खाने में क्या पसंद है, घर के जो वृद्ध लोग हैं जिन्हें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उनकी दवाइयां आई है या नहीं, उन्हें समय पे खाना कम तेल मसाला वाला मिलना चाहिए। फिर वो अपने कार्यस्थल का भी सोचती है कि मुझे वक्त पर पहुंचना है, मेरे इतने आज वहां असाइनमेंट्स हैं, टास्क हैं, ये भी मुझे करना है, मतलब वो मल्टीटास्किंग में सुबह से लेकर रात तक कभी वो थॉटलेस नहीं रहती, वो रिलैक्स रहे, उसको

0: नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट खुशबू जी उसके दिमाग में चलता ही रहता है राउंड द क्लॉक। इवन अगर वो बेड पे चली गई फिर भी वो सोचती है, अरे मैंने तो दही नहीं जमाया, मैंने राजमा नहीं डाला कल के लिए।
1: जी, ये आपने बहुत सही कहा ओमी जी। महिलाएं निरंतर व्यस्त है, चाहे वो घर हो या बाहर। यहाँ तक कि जब भी वो सोने जाती हैं, तब भी उन्हें अनेक काम याद आते हैं, तो ऐसे में उनपे बहुत सारा मानसिक तनाव होता है। तो हम किस तरह से डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण को पहचान सकते हैं और इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं, आप हमें बताएं।
0: देखिए, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि कोई भी महिला है, वो 18 साल से लेकर के 48 साल है, मेनोपॉज के स्टेज में कहीं भी है, वो एक परिवार के अंदर है। हाँ, परिवार में जब रिलेशनशिप में यानी रिश्तों के बीच में कुछ दरार आना, कुछ परेशानी होना, कुछ खटास आना, ये चीजें चलती ही रहती हर एक परिवार में, और इस जगह उनका चुप हो जाना या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाना या वो अपने इंटरेस्ट को अपनी रुचियों में अब रुचि नहीं ले रही है, जो उनके शौक हुआ करते थे वो छोड़ रही है, वो भविष्य को लेकर के बिल्कुल ब्लिक फ्यूचर हम लोग कहते हैं कि उन्हें कोई भविष्य दिख ही नहीं रहा अपने जीवन का, उनकी नींद गड़बड़ जा रही है, या तो वो बहुत ज्यादा सो रही है या बिल्कुल नहीं सो रही है, 2-4 घंटे ही सो पा रही है, उन्हें खाने में रुचि नहीं रही, उन्हें शरीर में कई जगह दर्द हो रहा है, सिर में दर्द बना रहता है, हेयर फॉल हो रहा है, स्किन में प्रॉब्लम आ रहे हैं, पिंपल्स एंड ऑल, बहुत तरह के रैशेस आ रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हैं, याददाश्त कमजोर हो रहा है, तो ये डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं।
1: जी, आपने शुरुआती लक्षणों के बारे में बताया, तो इनसे उबरने में परिवार और समाज किस तरह से मदद कर सकता है एक महिला को?
0: समाज और परिवार से सबसे पहले, समाज की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई एक परिवार है, तो उस परिवार के बाकी सदस्यों का बहुत अलर्ट रहना, अवेयर रहना, उन्हें समझना, ये नहीं कहना कि तुम करती ही क्या हो दिन भर घर में रहती हो। तो इवन आज के डेट में बच्चे बोल देते हैं कि माँ तुम तो हाउसवाइफ हो, ये माहौल नहीं बनाएं, बताएं कि यही घर की धुरी है, इसकी वजह से घर चल रहा है। तो परिवार सबसे पहले अर्ली वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स को पहचाने, घर वाले नहीं पहचान पा रहे, रिश्तेदार पड़ोसी वो बोले तुम इतनी चुप चुप क्यों रहती हो, या तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी।
1: जी,
0: वो उनका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बने, उन्हें जज नहीं करें, और अगर लगे कि ये बहुत ज्यादा बात बढ़ रही है तो ये कोई स्टिग्मा नहीं है, कोई कलंक की बात नहीं है, बीमार पड़ना कोई भी बीमार पड़ सकता है खुशबू जी, आप भी मैं भी।
1: जी,
0: विशेषज्ञ के पास जाएं।
1: अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो महिलाओं को तुरंत संपर्क करना चाहिए। महिलाओं का जीवन कई अवस्थाओं से गुजरता है और उसमें कई तरह के बदलाव आते हैं, तो क्या हार्मोनल बदलाव या गर्भावस्था या मेनोपोज भी महिलाओं में अवसाद का कारण बन सकते हैं?
0: बिल्कुल सही बात आपने उठाया। ये जो आपने कुछ चेंजेस बताया, हार्मोनल चेंजेस, जिसमें एक है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले बच्चियों का चिड़चिड़ाना, सैडनेस रहना, कंटिन्यूअस एंजाइटी में रहना, ये डेफिनेटली हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये दो हार्मोन है जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन जिन्हें हम कहते हैं, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं मूड। तो ऐसे में परिवार का समझना कि ये अभी अपने जीवन के उस दौर से गुजर रही है जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, प्री मेंस्ट्रुअल है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी इसका ही एक पार्ट है, जो बच्चे के बर्थ के तुरंत बाद ड्रॉप हो जाता है एस्ट्रोजेन में और प्रोजेस्टेरॉन में, अगर ये एक वीक तक रहा तो वी कॉल इट बेबी ब्लूज, और ये विद इन अ वीक ठीक हो जाना चाहिए। पर अभी मैं अपने क्लिनिक में देख रही हूँ एक केस, वो खुद एक डेंटल डॉक्टर हैं और बेबी के होने के 6 मंथ्स बाद भी सी इज ऑलवेज वरीड कि मेरी बच्ची को खतरा है, उसकी जान को खतरा है। तो ये अब बहुत आगे बढ़ गया है ये हार्मोनल चेंज, और ये उनके लिए अब एक सीवियर डिप्रेशन की ओर जा रहा है। तो ऐसे में हम दवाइयां, थेरेपी, काउंसलिंग सबकी मदद ले करते हैं और पेशेंट को बाहर निकालते हैं समस्या से।
1: तो क्या हम डिप्रेशन को केवल एक मानसिक कमजोरी मान सकते हैं या ये गंभीर स्वास्थ्य समस्या है?
0: पहली बात है, मानसिक कमजोरी शब्द ही अपने आप में एक गलत शब्द है, ये कमजोरी है ही नहीं। अगर हमें टाइफाइड हो गया, हमें वायरल फीवर हो गया, तो हम क्या कहते हैं, शारीरिक कमजोरी है, इन्फेक्शन हो गया हम ये कहते हैं ना, और इन्फेक्शन तो साल में कई बार

0: कहीं भी आपकी ही बात नहीं है, आपके रिश्तेदार में, आपके पास पड़ोस में समस्या में दिख रही है, तो पहले उन्हें जाए, उनसे बात करें, कनेक्टेड फील कराए उन्हें, उन्हें अकेला नहीं फील करने दें, उन्हें बोले कि हम हैं यहाँ मदद करने के लिए। मैंने सुना है डिप्रेशन के बारे में, और खुशबू जी वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास एशिया के दो बड़े इंस्टीट्यूट है, CIP और रिन पास रांची में, तो हम वहां भी मदद ले सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उनके घर वालों को अवेयर करा सकते हैं। कई बार मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं, उनके दोस्त आते हैं 20-22 साल के बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की, कि वो बोल रहा है कि अगर एग्जाम नहीं निकला ना मैम तो मैं कुछ कर लूंगा। तो ये बातें जल्दी से जल्दी किसी को बताएं, किसी के मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि जीना ही बेकार है अगर ये सफलता नहीं मिली तो, क्योंकि मॉडर्न लाइफ स्ट्रेसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं
1: जी।
0: तो समाज को अवेयर होकर के जागरूकता अभियान, न्यूज़पेपर, रेडियो, बहुत माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें फैलाना है, सामने आना है, मदद करना है और सबको विशेषज्ञ तक जल्दी से जल्दी पहुंचाना है।
1: जी सखियों, ये आवश्यक है कि हम महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बने और ये समझें कि अवसाद केवल मानसिक कमजोरी नहीं बल्कि एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसका अगर सही समय पर उपचार हो और परिवार का सहयोग हो तो इसका समाधान संभव है। स्वस्थ और खुशहाल महिलाएं ही स्वस्थ परिवार का निर्माण कर सकती हैं और स्वस्थ समाज की नींव भी होती हैं। डॉक्टर ओमी जी, आप हमारे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में आई, हमारी सखियों को इतनी अच्छी जानकारी दी, अपना इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं भी आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ खुशबू जी कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने के लिए मुझे अब बुलाया।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंटवार्ता, डिप्रेशन का शिकार होती महिलाएं, और भेंटवार्ताकार थी डॉक्टर ओमी सिंह, इनसे बातें की थी कुमारी खुशबू ने। और खुशबू, अब बातों बातों में वक्त हो चला है
3: बिल्कुल
2: बहनों से विदा लेने का। हम बता दें कि आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की। तो अभी के लिए दें इजाजत अपनी सखियों निधि और
3: खुशबू को।
2: नमस्कार।
4: गृहलक्ष्मी।

अभी आप सुन रहे थे भाग मिल्खा भाग फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत, जिसे लिखा था प्रसून जोशी ने, संगीत से सजाया था शंकर एहसान लॉय ने, आवाजें थी जावेद बशीर और श्रेया घोषाल की।

0: अभी आप सुन रहे थे रिफ्यूजी फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत, जिसे लिखा था जावेद अख्तर ने, धुन बनाई थी अनु मलिक ने, आवाज़ें थीं सोनू निगम और अलका याग्निक की। कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सूर्यवंशम से कुमार शानू और अनुराधा पोटलवाल की आवाजों में, जिसे लिखा है समीर ने, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

कार्यक्रम का अगला गीत और आखिरी गीत पीके फिल्म से स्वानंद किरकिरे के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शांतरु मोइत्रा ने। आवाज़ें हैं शान और श्रेया घोषाल की।

0: इसी प्यारे से गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि साध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को योजना तक देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। यह दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शमशुदुरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन है।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर, जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. India strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at a United Nations forum, accusing Islamabad of politicizing the platform, also slammed it for misusing its position as co-chair instead of being unbiased as behooves the position. The remarks were made by India's permanent representative to the UN in New York, P. Harish, in response to comments by Pakistan's permanent representative, Asif Iftikhar Ahmed. Responding to Pakistan's intervention, Mr. Harish criticized the conduct of the co-chair and reiterated India's long-standing position on Jammu and Kashmir. He added that Union territory of Jammu and Kashmir is a matter strictly internal to India. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations call for stronger cooperation to address the widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world. The Indian Embassy in Tehran has issued a revised advisory for Indian nationals in view of the improving security situation in the country. Indian nationals are advised to continue to avoid all non-essential travel to Iran until further notice. The embassy said Indian citizens are advised to exercise a high degree of caution, remain vigilant and maintain constant situational awareness. It also urged them to regularly monitor the embassy's official website and social media platforms for updates and further advisories. For assistance, the embassy has issued emergency helpline numbers +98912810-9115, +98912810-9109, +98912810-9102, and +98993217-9359. Indian nationals can also contact the embassy through email at cons.tehran@mea.gov.in and mail to cons.tehran@mea.gov.in. U.S. Secretary of State Marco Rubio has begun a 3-day tour of the Gulf region.

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद रांची में स्वास्थ्य विभाग के नव नियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। राज्य के चिकित्सा ढांचे को मिलेगी मजबूती। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का विपक्ष पर तीखा हमला। कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वालों को चुनावों में मिला करारा जवाब। नामांकन गड़बड़ी की जांच के लिए रिम्स पहुंची सीआईडी की टीम। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, गड़बड़ी में शामिल दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्र के समक्ष मजबूती से रखा झारखंड का पक्ष। किसानों के लिए मांगा राहत पैकेज। और संताल दौरे के दूसरे दिन साहिबगंज के बरहरवा पहुंचे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार। बीएलओ प्रशिक्षण का किया औचक निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नव नियुक्त अभ्यर्थियों को अब से थोड़ी देर बाद नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस विशेष समारोह में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी विशेष रूप से उपस्थित हैं। समारोह के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सक, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर जैसे पदों के लिए नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को खारिज कर डेस्क थपथपाकर जश्न मनाया था, जिसका महिलाओं ने चुनावों में करारा जवाब दिया। मंत्री ने कहा कि दशकों से लंबित इस ऐतिहासिक कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हकीकत में बदला है।
1: नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण देने की जो बात थी, जो उन्होंने रिजेक्ट किया, तो उनको पता चल गया कि महिलाएं सब बर्दाश्त कर सकती है, अपना अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती। और जब ये बिल गिरा तो मेज थपथपाकर उन्होंने खुशियां मनाई। तो बंगाल के चुनाव में, आसाम के चुनाव में करारा जवाब उन्होंने दिया है और महिलाओं का उसका अधिकार मिले। कई दशक से ये बिल आ रहा था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको मूर्त रूप दिया है और आने वाले समय में उनको पूरा अधिकार मिले, इसके लिए सहयोग करें।
0: राज्य में ठोस कचरे से बिजली उत्पादन की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। शहर का कचरा लोगों के लिए परेशानी नहीं बल्कि बिजली का एक नया और पर्यावरण अनुकूल स्रोत बनेगा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के जरिए प्रतिदिन ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और ग्रिड को अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति होगी।
2: सिंगल यूज प्लास्टिक्स हम बिजली उत्पादन कैसे करें, उसके लिए हम एक विजन प्लानिंग प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। एकाध दो स्टेटों में इस तरह की मॉडल शुरुआत हुई है। जिन स्टेटों पर इस तरह का मॉडल तैयार करके प्रोडक्शन लिया जा रहा है, उसका हम अवलोकन करने की, राज्य में भी हम लोग इस तरह का एक दो प्लांट लगाएंगे ताकि कचरा का कचरा प्रबंधन भी हो जाए और बिजली भी हम उससे ले पाए।
0: इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि केवल घोषणाएं करने से धरातल पर काम नहीं होता और पूर्व की कई कल्याणकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। श्री शाह ने कहा कि नगर निगम और प्रशासन पहले शहर की चरमराई सफाई व्यवस्था को सुधारे, क्योंकि कचरे का सही उठाव न होने से जनता त्रस्त है।
3: सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का स्कीम था, वो करप्शन के भेंट चढ़ गया। छोटे छोटे नगर परिषद आप जाइए या नगर निगम जाइए, वहाँ पर आपको एक ही कहानी मिलेगी, या तो जमीन नहीं मिल रही है, और अगर जमीन मिल भी गई तो वहाँ पर जो वेस्ट मैनेजमेंट पावर प्लांट है वो कई सालों से नहीं लगा। अन्य योजनाओं की तरह यह भी करप्शन की भेंट चढ़ेगा।
0: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने धनबाद के बरवाड्डा में पत्रकारों से बातचीत में राज्यसभा चुनाव में गठबंधन उम्मीदवार की हार के लिए भाजपा पर धनबल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि राज्य में 200 से अधिक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को लाया गया है और जल्द ही बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जाएंगी। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्र सरकार से राज्य के किसानों के लिए राहत पैकेज की मांग की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों के कृषि मंत्रियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने टिड्डी हमले के खतरे से निपटने के लिए राज्य की सतर्कता और आकस्मिक कार्य योजना की जानकारी दी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@irnewsalerts और फेसबुक

0: फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची स्थित रिम्स में नामांकनों में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए झारखंड सीआईडी की टीम अस्पताल पहुंची है। सीआईडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने रिम्स प्रबंधन से मुलाकात कर पूर्व में हुए एडमिशन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों और फाइलों को अपने कब्जे में ले लिया है। इस बड़ी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
1: जांच का आदेश दिया था राज्य के सभी निजी मेडिकल कॉलेज हो या सरकारी मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर जो यूजी और पीजी एजुकेशन जो ले रहे हैं, प्रवेश पत्र जो काउंसलिंग जो हुआ था, तो उसमें कई लोगों ने जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र गलत दे दिया है, भेज दे दिया है। तो उसी के तहत हमने जाँच का आदेश दिया था और 3 संसद मेंबर्स की कमेटी हमने बनाकर थोड़ी जाँच करो।
0: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने संथाल परगना दौरे के दूसरे दिन आज साहेबगंज के सीमावर्ती प्रखंड बरहरवा का दौरा किया। उन्होंने +2 उच्च विद्यालय में बीएलओ और सुपरवाइजरों को दिए जा रहे विशेष प्रशिक्षण का औचक निरीक्षण किया और मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर अंतर्गत सोनपोखरी गांव में खेत की जुताई के दौरान एक पुराना मोर्टार शेल मिलने से कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ते की मदद से इस भारी विस्फोटक को सुरक्षित कर दिया है। पुलिस के अनुसार सेना की विशेषज्ञ टीम की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। रेडियो फरमाइशों के लिए दुनिया भर में मशहूर कोडरमा का डुमरी तिलैया अब एक खास मिठाई के लिए विश्व मानचित्र पर चमकेगा। ये मिठाई केसरिया कलाकंद है जो जीआई टैग पाने वाला राज्य का एकमात्र खाद्य पदार्थ बन गया है। 60 के दशक में विभाजन की त्रासदी झेलकर पाकिस्तान से आए हंसराज और मुल्कराज भाटिया परिवार ने इस हुनर की नींव रखी थी। इस उपलब्धि से स्थानीय व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई उड़ान मिलेगी।
2: 60 साल पहले हम लोग पाकिस्तान से जो डिवाइड हुआ उसके बाद में यहाँ के बसे हम लोग तिलैया में मिठाई की दुकान खोली और सबसे फर्स्ट कलाकंद हम लोगों ने यहाँ पर बनाया। इतना फेमस हुआ कि फॉरेन तक गया। फादर का ये प्रोडक्ट है, जीआई टैगिंग हमको मिल रही है, इसका सुन के बहुत ही खुशी हुई है और हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं।
0: आज दोपहर के सेशन में घरेलू इक्विटी इंडेक्स लगभग 0.7% ऊपर ट्रेड कर रहे थे। सेंसेक्स 603 अंक बढ़कर 76,804 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,800 रुपये प्रति ग्राम 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,35,000 रुपये प्रति किलो है। 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सुरक्षित और सुगम यात्रा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत और नए सुरक्षा केंद्रों की स्थापना से नागरिक सेवाएं अधिक पारदर्शी और सुलभ हुई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद रांची में स्वास्थ्य विभाग के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। राज्य के चिकित्सा ढांचे को मिलेगी मजबूती। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का विपक्ष पर तीखा हमला, कहा नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वालों को चुनावों में मिला खरारा जवाब। नामांकन गड़बड़ी की जांच के लिए रिम्स पहुंची सीआईडी की टीम। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा गड़बड़ी में शामिल दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी तिर्की ने केंद्र के समक्ष मजबूती से रखा झारखंड का पक्ष। किसानों के लिए मांगा राहत पैकेज और संताल दौरे के दूसरे दिन साहेबगंज के बरहरवा पहुंचे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार। बीएलओ प्रशिक्षण का किया औचक निरीक्षण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और एफ एम 100.5 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। आज की कलाकार है सिंधेश्वरी देवी।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भूपेंद्र और मिताली सिंह की आवाज़ों में चंद गज़लें।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अगुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अगुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमरीका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया।

0: समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमरीका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2000 क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवास
2: एक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ही की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन है।
1: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। यह दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत नए पासपोर्ट सुरक्षा केन्द्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थीं। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार

0: समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ITIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक के उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरूआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मिडी में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम जय भारती, जहां हम करते हैं सलाम उन वीर जवानों को जो दिन रात हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं। जब हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं तब

हमारे देश के सैनिक बर्फीली पहाड़ियों, तपते रेगिस्तानों और घने जंगलों में डटे रहते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है, देश की रक्षा और देशवासियों की खुशहाली। भारतीय सेना का हर जवान अपने दिल में तिरंगे की शान और देशभक्ति की आग लेकर चलता है। उनका साहस, त्याग और समर्पण हम सब के लिए प्रेरणा है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम जय भारती। यह कार्यक्रम समर्पित है उन वीर जवानों को जो अपनी खुशियों के वो पीछे छोड़कर देश की रक्षा के लिए हमेशा डटे रहते हैं। जब कोई सैनिक सरहद पर होता है तो उसके दिल में देश के साथ साथ अपने परिवार और अपने प्यार की यादें भी होती हैं।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में

0: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपी। इस विशेष समारोह में कुल 262 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी विशेष रूप से उपस्थित थे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कदम से राज्य के चिकित्सा प्रबंधन और ढांचागत व्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी।
1: आज लगभग 262 लोग नियुक्त हुए हैं और इस बात को जरूर जहन में रखिएगा, जिस काम के लिए हमें तनख्वाह मिलती है उसको हम ईमानदारी पूर्वक निभाने का हम प्रयास करें। मैं नहीं कहता किसी भी व्यक्ति से गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम गलतियां हो। सरकार आपसे काफी उम्मीद के साथ और जिम्मेवारी के साथ चलने को तैयार है।
0: झारखंड में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में बीएलओ और सुपरवाइजरों को डिजिटल प्रक्रिया का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया को पारदर्शी समावेशी बनाने के लिए बीएलओ 2 की भूमिका अहम और अपेक्षित है।
2: पूरा झारखंड में सभी बीएलए 2 राजनीतिक दल का द्वारा वो नियुक्ति किया हुआ पदाधिकारी है, उनका साथ में बैठक हो रही है। उसी बैठक में आपका वो आने वाली चल रही है, वो स्पेशल एसआईआर के बारे में उनको जानकारी दिया जा रहा है, साथ में उनका एक सहयोग भी मांगा जा रहा है ताकि एक भी पात्र नागरिक का नाम छूटे नहीं।
0: देश के युवा नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप ने यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के 8वें संस्करण में जीत हासिल की। यह पहल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इंडिया और सिटी फाउंडेशन द्वारा अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है और टी हब फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। नीति आयोग ने बताया कि इस वर्ष के चैलेंज के लिए 28 राज्यों के स्टार्टअप से 350 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। बहुचर्चित बोकारो ट्रेजरी घोटाला मामले में सीआईडी की विशेष अदालत ने आज 3 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने लेखा शाखा के एसएसआई अशोक भंडारी, गृह रक्षक सतीश कुमार और काजल मंडल को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। इससे पहले अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जामताड़ा में साइबर पुलिस ने कर्माटांड़ थाना क्षेत्र से साइबर अपराध में लिप्त 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन तथा 4 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। राज्य में आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। इसी कड़ी में पाकुड़ में पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के नेतृत्व में जिला बल और आईआरबी के जवानों ने दंगारोधी उपकरणों के साथ विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास के दौरान भीड़ नियंत्रण, अश्रु गैस और वाटर कैनन के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने और आम जनता के बीच विश्वास बहाली के लिए जिले के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। पुलिस प्रशासन ने सभी नागरिकों से शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की है।
3: मुहर्रम का पर्व है, पुलिस प्रशासन है शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उसके लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं। जो इंटरनल मोबिलाइजेशन है फोर्सेस का वो किया गया है। स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं असामाजिक तत्वों को कि यदि वो कानून को अपने हाथ में लेंगे तो हम लोग जो है कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे।
0: धनबाद में ओलंपिक दिवस के उपलक्ष्य में धनबाद जिला ओलंपिक संघ द्वारा चलाए जा रहे साप्ताहिक वृक्षारोपण अभियान के तहत संजीवियर्स इंटरनेशनल स्कूल परिसर में 1 दर्जन फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। विद्यालय के प्राचार्य इंद्रनाथ सिन्हा और संघ के महासचिव रंजीत केशरी ने छात्रों को पौधारोपण कर उनकी देखभाल का संकल्प दिलाया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम जिला ओलंपिक संघ तथा झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग के तहत आज बिरसा मुंडा इंडोर स्टेडियम परिसर में खेल उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें कुल 96 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं, कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं, जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टाने चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की

0: बूंदें टपकाकर बनाया। अद्भुत है ना जी। किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुंब सर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओ, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गई। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुंब सर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुंब सर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: Children, have you ever seen the leaves growing in the tree? The new tender leaves spurting out from the branches? Like the flowers blossoming? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green. Turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
1: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
1: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लेंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में

0: शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
0: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्म जगदीतल तासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
0: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
2: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
0: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
2: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
0: से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
1: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधि भी सीखी।
0: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
1: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
2: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा।

0: परीक्षा तो लेनी ही होगी।
1: जी मैं प्रस्तुत हूँ।
0: तो फादर मैं चाहता हूँ कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के दो पदों की इसी समय सब प्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
1: जी अवश्य।
2: फादर कामिल बुल्के ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
0: ओह अद्भुत। तो फादर अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
1: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
0: जी।
2: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
3: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
2: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
1: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
4: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
1: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
4: जी जी,
1: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
4: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
1: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही राम कथा की उत्पत्ति और विकास है।
4: जी,
1: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं राम कथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
4: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
1: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
4: जी।
2: तो फिर क्या था? विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
3: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
1: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
3: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कंबन द्वारा तमिल में रचित कंब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों

0: में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
1: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
2: सबहें नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
1: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
0: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
1: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
2: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
1: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
2: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
0: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
1: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रांची मेलोडीज। रांची मेलोडीज का पहला गीत हमने लिया है सूर्यवंशम फिल्म से। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने। आवाजें हैं सोनू निगम और जसपिंदर नरूला की।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने, आवाजें हैं अमिताभ भट्टाचार्य और आशा भोसले की।

अभी आप सुन रहे थे 1 2 का 4 फिल्म से ये गीत। आवाज़ें थी सोनू निगम और लता मंगेशकर की, धुन बनाई थी ए आर रहमान ने। आइए अब सुनते हैं चलते चलते फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत। आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को, धुन बनाई है जतिन ललित ने।

कार्यक्रम रांची मेलोडीज़ का अगला और आखिरी गीत हमने लिया है हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से। आवाज़ें हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस समारोह में कुल 262 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कदम से राज्य के चिकित्सा प्रबंधन और ढांचागत व्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। झारखंड में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिले में बीएलओ और सुपरवाइजरों को डिजिटल प्रक्रिया का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया को पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए बीएलओ 2 की भूमिका अहम और अपेक्षित है। देश के युवा नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप ने यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के 8वें संस्करण में जीत हासिल की। यह पहल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इंडिया और सिटी फाउंडेशन द्वारा अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है और टी हब फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। सरायकेला खरसावां जिले में आज टाटा चाईबासा मुख्य मार्ग पर समाहरणालय मोड़ के पास सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि उनके रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गढ़वा जिले में अब तक सामान्य से कम वर्षा होने तथा लगातार भीषण गर्मी पड़ने से भूमिगत जल का स्तर काफी नीचे जा चुका है। जिले में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झार जल पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की और समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है बढ़ते कदम। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन

0: सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: नमस्कार, बढ़ते कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्रा। पिछले कार्यक्रम में हमने नशा मुक्त झारखंड अभियान पे बात की, हमने अलग अलग युवाओं से बात की और ये समझने की कोशिश की कि आज ये नशे का जाल कैसे हमारे समाज को धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है। कार्यक्रम के आज के अंक में हम फिर से नशा पे ही बात करेंगे। हम बात उस जिले की करेंगे जहां नशा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, लेकिन झारखंड सरकार के प्रयासों से, जिला प्रशासन के कोशिशों से वहां पे भी एक बदलाव आया है। और जब हम एक अभियान की बात करते हैं, जब हम एक नई शुरुआत की बात करते हैं, तो ये कितना फर्क लाता है। जिस तरीके से 15 जून से 26 जून तक ये अभियान चल रहा है नशा मुक्त झारखंड का, वो कितना एक बदलाव लाता है। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त राजीव रंजन। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से पूर्वी सिंहभूम जिला में ये जो नशे की समस्या है, ये जो एक नशे का जाल है, क्योंकि वो एक बॉर्डर इलाका है तो वहां पे ये समस्या ज्यादा होती है, तो उनके लिए क्या चैलेंजेस होते हैं, कैसे वो आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कैसे इस तरह के अभियान से वहां पे एक बदलाव आ रहा है, वो समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही उनसे बात करने से पहले मैं उन अपनी जिम्मेदारियों की भी हम लोग बात करें जहां हमारी और आपकी एक भूमिका होती है। जब समाज में नशा जैसे दीमक जो धीरे धीरे हमें बर्बाद करते जाता है, हमारी सोच को खत्म करता है, हमारे में ऊर्जा नहीं रहने देता और हम सिर्फ अपनी जिंदगी में एक अंधेरेपन की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसे कैसे रोकने में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं, ये हम सभी को सोचना पड़ेगा। हम सिर्फ दबाव के नाम पे आकर, हम किसी एक उदाहरण को लेकर हम नशे को अपना साथी नहीं बना सकते हैं। नशा सिर्फ हमारी जिंदगी को बर्बाद करता है, नशा कभी भी हमें हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देता है, नशा कभी भी हमें मुस्कुराहट नहीं देता है, नशा सिर्फ और सिर्फ अंधेरा देता है, हार देता है और आपको हर कदम पे वो तोड़ता जाता है, आपके आत्मविश्वास को खत्म करता जाता है। इसे हमें समझना है, इस विषय को हमें एक आंदोलन की तरह लेना चाहिए। अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हैं पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त राजीव रंजन, हम उनसे बात करते हैं। राजीव रंजन सर, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: राजीव सर, शुरुआत क्योंकि एक ऐसे विषय को लेकर आज हम कार्यक्रम में है जो हमारे लिए चिंतनीय भी है और आज वो समय आ गया है जब हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कैसे नशे को रोक सकते हैं, हम कैसे समाज में ये जो जहर फैल रहा है उस जहर को फैलने से रोक सकते हैं। और हम लगातार देख रहे हैं कि जब झारखंड सरकार की बात करते हैं तो बहुत सारे इनिशिएटिव हैं और आज आपसे बात करने का उद्देश्य भी यही है कि जो ये 15 जून से लेकर 26 जून तक का ये अभियान जो चलाया जा रहा है उसमें किस तरीके से आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। सो सर, सबसे पहले क्योंकि पूर्वी सिंहभूम में बात करने का उद्देश्य कि आपके लिए विशेष एक बहुत बड़ी चुनौती है, कैसे आप इसे देखते हैं सर?
3: हाँ, ये तो नशा जो है समाज में इस तरह जहर की तरह घुल रहा है कि वो सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए चिंतनीय विषय बनते जा रहा है। सरकार ने अभी इसी एक महीने में इसलिए एक अभियान ऐसा चलाया है कि लोगों को कैसे हम नशे से दूर रखें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नशा व्यक्ति के न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पे भी नुकसान पहुंचाता है
2: जी।
3: तो इसीलिए इस पे ये अभियान जो है, हम लोग इसको चलाकर ऐसा प्रयास करेंगे कि लोगों को जागरूक करें, उनमें जागरूकता लाएं।
2: राजीव सर, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि हम तो जब हम चीजों को अपने समाज में बदलते देखते हैं, हम जब परिवर्तन को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है, लेकिन बात जब हम नशे की करते हैं

0: विशेषकर जो आज हमारे टीनेजर्स हैं, हमारे यूथ हैं, आपको क्या लगता है क्या ये वजह रह रही है कि जो हमारे यूथ हैं वो नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं?
1: ये इसका सबसे मुख्य वजह जो मुझे लगता है वो है कि बहुत ही मानसिक तनाव में बच्चे आजकल हैं। वो इतना अधिक कंपटीशन है उनका उनका हर फील्ड में, जिस किसी भी फील्ड में जाते हैं तो बहुत अधिक कंपटीशन के दौर में जी रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा उन पे प्रेशर, मानसिक दबाव है। वो दबाव घर पे भी है, बाहर भी है, मतलब हर जगह उन पे एक दबाव बना हुआ है। ऐसे में ये होता है कि थोड़ी संगति जो हम लोग बोलते हैं खराब हो जाती है उनकी, कुछ ऐसे लोगों के साथ हो जाते हैं। तो छोटी उम्र है, कच्ची उम्र है, बच्चे सही गलत का बहुत पहचान नहीं कर पाते हैं और क्षणिक सुख के लिए कभी कभी नशा वो लेना शुरू कर देते हैं। और नशा एक ऐसा है वो फिर उनको अपना एडिक्ट बना देता है। तो ये कारण एक हो सकता है नशे का इतने समाज में इसकी पैठ बनाने का।
0: तो सर आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जब हम एक उपायुक्त की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जिले की पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पे होती है, और एक बहुत बड़े एग्जाम से, देश देश के सबसे बड़े एग्जाम से आप निकल कर आते हैं, यूपीएससी की जब हम बात करते हैं, तो आप उतनी कठिन परीक्षा को पास करते हैं, आपने अपने किताबों के साथ इतना वक्त बिताया होता है। मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर जब आप युवाओं से बात करते हैं या वो ऐसे कुछ लोग जो बातें करते हैं जब इस विषय पे, तो एक उदाहरण आता है कि पढ़ाई का प्रेशर इतना हो जाता है कि वो हैंडल कभी कभी नहीं कर पाते हैं, और फिर बच्चे जो हैं मूव कर जाते हैं, उनका जो दिमागी सोच जो होती है वो नशे की तरफ चली जाती है, उन्हें लगता है कि इससे वो बेहतर कुछ कर पा रहे हैं। सो ये कहीं से रिलेट करता है क्या? क्या क्या एजुकेशन का प्रेशर आज की तारीख में इतना बढ़ रहा है या लोग इसका सहारा ले रहे हैं?
1: नहीं, एजुकेशन का प्रेशर भी है और भी मतलब कई तरह के प्रेशर है, एजुकेशन भी उसमें से एक है। आज चूंकि इतनी बढ़ती जनसंख्या हमारी है और उसमें कम्पीट करके हर व्यक्ति चाहता है कि आगे वो बढ़े, पैसा उसके पास हो, एक ऐसे पैसे की चाह भी एक ऐसे आ रही है। तो ये सारा तरह ये सब तरह का प्रेशर रहता है। कुछ पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि बच्चे हमारे जो है पेरेंट्स पेरेंट्स जो सोच रखे हैं उसको बच्चे कर सकें, तो ये सब भी एक प्रेशर का हिस्सा होता है। और ये कारण बनता है कि वो नशे के आदी हो जाते हैं। और नशा तो आप जानते ही हैं कि कैसे अपने जाल में जकड़ लेता है। और

0: मतलब कि घर में बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं, हम कई ऐसा उदाहरण देख रहे हैं, लड़कियां खूब ड्रिंक कर रही हैं। तो ये एक ऐसा ऐसा शो ऑफ कल्चर, इसको हम कह सकते हैं कि ऐसा शो ऑफ हो गया है, पाश्चात्य संस्कृति को देख करके एक ऐसा हो गया है कि इसको लोग मतलब ऐसा मानने लगे हैं कि हम पीते हैं तो अच्छे अच्छे लोग, बड़े लोग कहे जाएंगे हम, शायद ये भी एक कारण है।
1: एक फैशन स्टेटमेंट बनता जा रहा है कि नहीं ये तो कूल है,
0: हाँ
1: मतलब ये तो होना ही चाहिए।
0: हाँ हाँ
1: सो
0: हाँ
1: कई
0: ऐसा
1: लोग
0: ऐसा
1: कहते हैं
0: कुछ
1: कि
0: है। हाँ
1: तुम नहीं लेते हो, तुम नशा नहीं करते हो, तो इस तरह के भी सवाल आने लगते हैं।
0: ऐसा है, ऐसा है।
1: कि ये भी एक बहुत चर्चा का विषय है सर, कि जो पाश्चात्य संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, कि फैमिली में पेरेंट्स और बच्चों के बीच का एक गैप भी बनता जा रहा है, जहां पे शायद बच्चे पेरेंट्स से अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे, या फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे रहे जितना समय उनको देना चाहिए। ये भी एक कारण है कि बच्चे इन चीजों के आदी हो जा रहे हैं।
0: हाँ, ये भी समस्या का जड़ इससे भी शुरू होता है, क्योंकि लोग अपने लाइफ में इतने मशगूल हो गए हैं, बच्चे से तो बहुत एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, लेकिन उस अनुसार अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं, उनसे बातें नहीं शेयर कर रहे हैं, उनके पढ़ाई के बारे में रोज उनसे नहीं पूछते हैं, नहीं जानते हैं उनके और बाकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उनके निजी जिंदगी में क्या चल रहा है, इन सारी बातों पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं। सोचते हैं कि स्कूल का फी भर देना, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देना, तो हमारा कर्तव्य पूरा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेरेंटिंग जो है वो जैसे एक पौधे को हम लोग कैसे पानी दे करके सींच करके उसको आगे बढ़ाते हैं, तो बचपन भी ऐसा ही होता है। ये नहीं होने से बच्चे जो है कहीं किसी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उनको घर में जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो वो बाहर की दुनिया में उसको खोजने लग जाते हैं, तो नशा जो है इसी इससे भी घुसता है उनके जीवन में।
1: यानी हर किसी को अपनी एक जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। राजीव सर, पूर्वी सिंहभूम जिला की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, और जब हम पूर्वी सिंहभूम जिला की बात करते हैं, यहाँ पर नशे को लेकर और विशेषकर जो निषिद्ध मादक पदार्थ है, जो सरकार की भी एक कोशिश होती है, जैसे हेरोइन हो गया, गांजा हो गया, अफीम हो गया, कोकीन हो गया, डेंड्राइट हो गया, ऐसे चीजों पे कंप्लीटली रोक लगाना है, लोगों को अवेयर करना है, आपके लिए ये बड़ी चुनौती बनती है, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम जिला में ये परेशानी और जिलों से ज्यादा है।
0: हाँ, सही आप बता रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया हमारा है, दो स्टेट से यहाँ पे मिलता हुआ है, तो ऐसा जो है स्मगल होने का कभी कभी ऐसा हम लोगों को कंप्लेन आता है हम लोगों के पास, तो वो इस पे लगातार यहाँ पे पुलिसिंग करके प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग इस तरह के ड्रग पैडलर हैं और जहाँ से ये शुरू होके जहाँ तक जा रहा है, वो दोनों सोर्स को हम लोग इस पे पकड़ बनाए अपनी, और उसको हम लोग पकड़े, खोज करें कि ये सोर्स कहाँ से आ रहा है।
1: अभी अभियान चल रहा है सर, झारखंड सरकार प्रत्येक वर्ष उनका भी एक सतत प्रयास होता है कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए कि जो निषिद्ध मादक पदार्थ है कैसे उनसे बचना है। तो जब इस अभियान की बात करते हैं, मैं पूर्वी सिंहभूम जिला की बात करूं, कि किस किस तरह की एक्टिविटीज आप करते हैं, कैसे आप युवाओं तक पहुंच रहे हैं, किस तरह का अप्रोच आपका होता है?
0: ये नशा से दूर रखने का सबसे जो बेहतर तरीका है वो जागरूकता है। लोग जब जागरूक हो जाएंगे कि हाँ, ये नशा निषिद्ध मादक पदार्थ जो है वो नहीं लेना है, वो उनके लिए घातक है, तब उसको वो छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे सर्वप्रथम ये प्रयास कर किया जा रहा है कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं वहां पे नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की गोष्ठी वगैरह आयोजित करके ऐसे स्कूल कॉलेजों को इसमें जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी हमारा हाट बाजार लगता है वहां भी निषिद्ध मादक पदार्थों के बारे में लोगों को माइकिंग करके, नुक्कड़ नाटक करके, तो मंडली के द्वारा लोगों को में जागरूकता लाई जा रही है कि इसको नहीं लेना चाहिए। तो कोशिश किया जा रहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों जगह पे अपनी पहुंच बनाई जाए और लोगों में इस बात का संदेश दिया जाए कि सरकार भी चाहती है कि निषिद्ध मादक पदार्थों को अपने जीवन से दूर रखें।
1: कितना एक प्रभाव पड़ता है जब इस तरह के अभियान की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर ये बात की जाती है, मैं आप क्योंकि आप तो जिस जगह पे हैं आपको हर चीजें देखनी पड़ती हैं, आपको पुलिसिंग भी देखना है, आपको मैनेजमेंट भी देखना है। सो क्या एक फर्क पड़ता है जब हम इस तरह का कोई एक अभियान अपने जिले में करते हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं, अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि इससे कितना बदलाव आता है, क्या एक राजीव सर क्या एक फर्क पड़ता है?
0: नहीं, इससे फर्क पड़ता है लोगों में, जब कोई ऐसा कोई अभियान होता है, जब सरकार उसको लेकर आती है, तो हम लोगों को भी, मतलब हमारे तो बहुत सारे काम होते हैं, बट जब भी सरकार से इस तरह का कोई डायरेक्शन आता है तो ऑलवेज वो हमारा बहुत प्रायोरिटी में आ जाता है, तो हम लोग अभियान के साथ साथ इन चीजों पे बाद में भी नजर रखते हैं, अभियान के बाद भी नजर रखते हैं, और लोगों को भी लगता है कि किसी चीज को जब गवर्नमेंट अपने

0: हाथ में ले लेती है, तो लोगों को भी एक ऐसा लगता है कि सरकार अब खुद इसको देख रही है, तो इसका बेहतर रिजल्ट आते हैं। हम लोग कई सारा जब भी अभियान चलाया गया है देश में अलग अलग कार्यक्रमों को अलग अलग चीजों को लेकर के, तो परिणाम सब देखे हैं हम लोग कि बेहतर परिणाम उसका रहा है।
1: मैं अब इसके एक दूसरे पहलू को आपसे जानना चाहूंगा राजीव सर, कि हमेशा हम लोग कहते हैं कि अगर आपको किसी एक बुरी आदत को छोड़ना है तो आपको एक अच्छी आदत पकड़नी होगी, तो आप इसको
0: जी
1: कैसे देखते हैं कि कोई अगर इसके एडिक्शन में आ गया है, कोई युवा इसके जाल में फंस गया है, तो किन चीजों को वो अपनाए?
0: सबसे पहले इसमें फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो परिवार का, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए नशे को छुड़ाने के लिए। दूसरा, उनके जो भी मित्र हैं, सहयोगी उनके हैं, वो लोग को भी इसमें आगे आना होगा कि उनको कैसे काउंसिलिंग करके नशे से दूर रखें, और साथ ही साथ उनको स्वस्थ जीवन शैली जैसे जीने के लिए, खेल इसमें एक बहुत अच्छा इसका उदाहरण बनता है, योग हम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, तो इन सारी चीजों से, और उनको उचित एक काउंसिलिंग का जरूरत होता है। जो लोग भी इस तरह के नशे के गंभीर रूप से आदि हो जाते हैं, एक उचित काउंसिलिंग भी उनका जरूरी होता है, तो ये उनको देने से नशे से हम लोग दूर रख पाते हैं, रख सकते हैं उनको।
1: आप उन पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां आज भी एक डर होता है कि अगर हम शायद किसी को ये बता दे कि हमारा बच्चा एडिक्टेड है या हमारा बच्चा तो निषिद्ध मादक पदार्थ लेता है तो शायद उनके स्टेटस पे चोट आ जाएगा, ये भी डर आज भी लोगों के मन में, रादर देन कि उनको लग कि आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आप अपने बच्चे की जिंदगी बचा सकते हैं, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे राजीव सर?
0: ये ऐसा है ना कि हम लोग कहते हैं कि सुबह का भूला जब शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, तो नशे में पेरेंट्स को यही सोचना चाहिए कि ठीक है, समुचित ध्यान नहीं देने के कारण या बच्चे में ऐसी कुछ कमजोरी थी कि नशे की तरफ झुकाव उसका हो गया, बट अब वापस लाने का समय है, तो उनको आगे बढ़ करके इसको स्वीकार करना चाहिए और बच्चे को पूरा सपोर्ट करना चाहिए इस काम में, तभी वो नशे से दूर हो पाएंगे।
1: यानी आपको उस दायरे से बाहर आना होगा। एक आखिरी सवाल सर, कि जब आप पूर्वी सिंहभूम जिले की जिम्मेदारी आपने ली, और हम पहले भी देखते आ रहे हैं कि अब बहुत चीजें बदली हैं, आपके जिले के बच्चे नेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे खेल की बात कर ले या फिर अचीवमेंट्स की बात कर ले, और बहुत सारी स्कीम्स भी सरकार की है जो जिले में आप लोग बहुत बेहतर तरीके से लागू कर रहे हैं। सो एक नजर में जब आप पूर्वी सिंहभूम जिले को देख रहे हैं, कौन कौन सी संभावनाएं आपको अपने जिले में नजर आती
0: तो
1: हैं?
0: यहाँ पे तो बहुत संभावनाएं हैं, यहाँ पे जैसे आप खुद ही बताए, तो जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, यहाँ पे कॉलेजेस भी हैं अच्छे, यहाँ पे खेल के लिए यहाँ पे बहुत ही बेहतर माहौल है, बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पे है, तो बेसिक जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए वो इस शहर में पूरे झारखंड का अगर हम कंपेरिजन करें तो काफी अच्छा है, उसमें काफी बेहतर है, और लोग इसीलिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको बहुत सपोर्ट है, लोग यहाँ पे थोड़ा प्रगतिशील विचार को रखते हैं, और ये इस कारण से यहाँ पे बेहतर एक माहौल है, हर चीज का एक अच्छा माहौल है।
1: वो कौन सा सब्जेक्ट है या वो कौन सा क्षेत्र है जिस पे उपायुक्त के तौर पे राजीव सर ज्यादा काम करना वहां पे चाहते हैं या प्रायोरिटी बेसिस पे उस पे काम करना चाहते हैं?
0: यहाँ पे क्या है ना कि दो सेक्टर है, एक शहर है एक गांव है, दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। इस जिला में शहर के लोगों को जो अपनी समस्याएं उनकी होती है, बिजली पानी, ये शहर की समस्या हमेशा बनी रहती है, लेकिन गांव की समस्या इससे थोड़ी अलग होती है, वहां पे उतना शिक्षा का स्तर नहीं है, तो उनका और भी बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, इससे कनेक्टिविटी का कभी प्रॉब्लम होता है, वहां पे आंगनवाड़ी सेंटर नहीं है, वहां पे छोटे छोटे बच्चों को क्रेच की सुविधा नहीं है, तो ये दो तरह का, इसलिए हम लोग दो तरह से बांट के इसको प्लानिंग करते हैं, शहर के लिए क्या चाहिए और जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उनके लिए क्या चाहिए। सिंहभूम जिला में इसी ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं।
1: राजीव सर, बढ़ते कदम कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आज आपको सुन रहे हैं, उन्हें क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप?
0: हम यही कहना चाहेंगे कि नशा मुक्त समाज जो है वो स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध समाज की नींव है, इसीलिए हम सभी नागरिकों को नशा मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। जी
1: राजीव सर, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आप शामिल हुए और हमारे श्रोताओं के साथ इतनी अच्छी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका।
0: धन्यवाद, जय हिंद।
1: बढ़ते कदम कार्यक्रम के आज के इस अंक में हमने बात की पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त राजीव रंजन से, और सर ने बहुत कुछ हमें बताया किस तरीके से हमें अपनी सोच में बदलाव लाना है और कैसे समाज में एक बदलाव लाना है, किस तरीके से माँ बाप को, बच्चों को एक दूसरे को समझना है, किस तरीके से समाज में हम इस नशे की जाल से बच सकते हैं, इस नशे की जाल को फैलने से रोक सकते हैं। कहते हैं ना कि हमेशा जो शुरुआत होती है वो खुद से करनी चाहिए। हम हमेशा जब बदलाव की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये बदलाव वहां से शुरू होनी चाहिए, लेकिन जब तक ये वहां खुद से नहीं होगा तब तक उसकी शुरुआत नहीं होगी। आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हम एक समृद्ध झारखंड के निर्माण में, एक खुशहाल झारखंड के निर्माण में आज से शुरुआत करेंगे। हम संकल्प लेंगे कि हम नशे को ना कहेंगे, हम जिंदगी को हाँ कहेंगे। हम संकल्प लेंगे कि जो भी इस जाल में फंसा है उसे इस भंवर से निकालने में हम पुरजोर कोशिश करेंगे। और आप विश्वास मानिए कि आपके एक सकारात्मक सोच की जरूरत है, आपके एक बढ़ते कदम की जरूरत है, और जैसे ही आप कदम आगे बढ़ाएंगे आपको अपनी जिंदगी नजर आएगी। और अच्छी बात है कि सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हमारे सामने होती हैं, सरकार के बहुत सारे ऐसे प्रयास होते हैं जिनसे जुड़कर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। चाहे केंद्र की बात करें, चाहे राज्य की बात करें, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जैसी योजनाएं जो आपको एक शुरुआत देती हैं, बस सकारात्मक सोच होनी चाहिए और आप अपने लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे ही केंद्र से बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जहां आप अपना स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो जब इतनी सारी चीजें हमारे साथ हैं तो फिर नशा क्यों? तो बस आज हमें ठानना है कि बहुत हो गया, अब हम सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर खुशियों को दौड़ने देंगे, अपने लक्ष्य को दौड़ने देंगे, अपने खेल को दौड़ने देंगे, अपने शिक्षा को दौड़ने देंगे। हम जीतेंगे, हम मुस्कुराएंगे और कभी भी किसी भी परिस्थिति में नशे को अपना साथी नहीं बनाएंगे। कार्यक्रम बढ़ते कदम के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान, नए विषय के साथ। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत, आपको छोड़े चल रहा हूं इस खूबसूरत से गाने के साथ। नमस्कार।

इस समय आप सुन रहे थे कार्यक्रम बढ़ते कदम। प्रस्तुति स्वर कमलेश कुमार मिश्र की थी और प्रस्तुति प्रभु शरण की। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगले कार्यक्रम से पूर्व आइए आज के कुछ कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते चलें।

अब से कुछ देर बाद यानी 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। संध्या 5 बजे, संध्या 6 बजे आप सुना करते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार और संध्या 7 बजे का वक्त हुआ करता है प्रादेशिक समाचारों का। पांच बजकर 2 मिनट पर आप सुन सकेंगे युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत, इतिहास में आज का दिन, रोचक तथ्य, समसामयिकी और आपको जानकारी दी जाएगी मौजूदा भू राजनीति और भारत की वर्तमान विदेश नीति के संबंध में। 5:30 पर आप सुनेंगे श्रमिक बंधुओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम श्रमिक लोक। कार्यक्रम में आज के लिए चर्चा का विषय है महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग। साथ ही आपको जानकारी दी जाएगी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सामाजिक सशक्तिकरण का एक दशक। आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे आयुष्मान भारत, सुरक्षा भी सम्मान भी।

संध्या 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम, क्षमा करेंगे, संध्या 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी और हमारी दुनिया। खेती बाड़ी कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा टपक सिंचाई का महत्व, साथ ही आपको जैव कीटनाशकों द्वारा सब्जी एवं फलों में कीट प्रबंधन के बारे में जानकारी देंगी डॉक्टर प्रीति प्रिये।

हमारी दुनिया कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी। सफलता के लिए मेहनत जरूरी। साथ ही आप सुनेंगे हिंदी वार्ता, डिजिटल शिक्षा आज की आवश्यकता। वार्ताकार हैं आंचल कुमारी। सात बजकर 7:15 पर आदिवासी अखरा। आज का यह कार्यक्रम मुंडारी भाषा में है। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, नशा से दूर रहें लोग। साथ ही आप सुनेंगे कविता और कहानी। सात बजकर 7:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा में। 8:45 पर समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9। 9:15 पर उर्दू में समाचार। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित विश्वमोहन भट्ट से गिटार पर राग बागेश्री में अलाप और गत। साथ ही आप सुन सकेंगे गिटार पर ही राग मिश्र गारा में धुन। श्रोता इस समय हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स तथा एफएम 102.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम है सांझ सरगम। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं फिल्म आशिकी में कुमार शानू को। गीत रचना मदन पाल की है, संगीत नदीम श्रवण का।

इस समय आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम है सांझ सरगम। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं कुमार शानू को ही, फिल्म दीवाना में। गीत रचना समीर की है, संगीत नदीम श्रवण का।

कार्यक्रम में आगे सुनते हैं कुमार शानू और अलका याग्निक को। शब्द रचना समीर की है, संगीत नदीम श्रवण का। फिल्म का नाम है साजन।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी में उदित नारायण को। गीत रचना समीर की है, संगीत नदीम श्रवण का।

फिल्म राजा हिंदुस्तानी के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स तथा FM 102.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस समारोह में कुल 262 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कदम से राज्य के चिकित्सा प्रबंधन और ढांचागत व्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। राजधानी रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में मेडिकल सीट अलॉटमेंट और नामांकन प्रक्रिया में कथित अनियमितता मामले में अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी की टीम ने आज रिम्स में डीन कार्यालय समेत विभिन्न विभागों में उपलब्ध दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच शुरू की। सीआईडी अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई पिछले शैक्षणिक सत्र में हुए दखलों से संबंधित शिकायतों के आधार पर की जा रही है। मुहर्रम के मौके पर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर बोकारो जिले के सभी थानों को विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में माराफारी थाना क्षेत्र के जुलूस मार्गों का सत्यापन ड्रोन के माध्यम से करते हुए ऊंची ऊंची इमारतों का निरीक्षण किया गया। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन को सुगम बनाने के उद्देश्य से आज बोकारो समाहरणालय परिसर से सीएसआर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मद के तहत बैटरी चालित ट्राई साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के चयनित 16 दिव्यांग लाभुकों के बीच बैटरी चालित ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। जामताड़ा में साइबर पुलिस ने करवाटांड थाना क्षेत्र से साइबर अपराध में लिप्त 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन, 4 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और पॉजिटिविटी से भरे होंगे। तो आ जाइए अपने रेडियो के करीब, क्योंकि हम लेकर आए हैं आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम युवानी। तो आज के इस आधे घंटे के सफर में और ढेर सारी जानकारियों के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त एडिथ,
1: और मैं हूँ आपकी दोस्त मारिया।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद खास और प्रेरणादायक सफर के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में शांति, कूटनीति और दो देशों के बीच के रिश्तों को संवारने में हमारी नारी शक्ति कैसे इतिहास रच रही है?
0: जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस के बारे में, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी।
1: हर वर्ष 24 जून को दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस मनाया जाता है, और इस दिन को मनाने की शुरुआत 2022 में ही की गई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस दिन का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। यह दिन वैश्विक शांति, सतत विकास और निर्णय लेने के हर स्तर पर महिला राजनयिकों के योगदान को सम्मानित करने और कूटनीति में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।
0: बिल्कुल मारिया। दोस्तों, कूटनीति वह कला है जिसके माध्यम से देश आपसी संवाद, सहयोग और समझ के जरिए वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजते हैं। लंबे समय तक यह क्षेत्र पुरुषों के प्रभुत्व वाला माना जाता रहा है, लेकिन आज महिलाएं भी इस क्षेत्र में अपनी योग्यता, नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता का सफल परिचय दे रही है।
1: हाँ एडिथ, सही कहा तुमने। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में शांति, सुरक्षा और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं की समान भागीदारी आवश्यक है। जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होती हैं, तो समाज और देशों के बीच सहयोग और विश्वास को नई मजबूती मिलती है।
0: बिल्कुल ठीक कहा मारिया। भारत में भी महिलाओं ने कूटनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। भारतीय विदेश सेवा में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। वे विभिन्न देशों में राजदूत, उच्चायुक्त और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उनके प्रयासों से भारत के वैश्विक संबंध और अधिक मजबूत हो रहे हैं।
1: हाँ, और महिलाएं अपनी संवेदनशीलता, संवाद कौशल और नेतृत्व क्षमता के माध्यम से जटिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। चाहे वह शांति स्थापना का प्रयास हो, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, या मानवीय सहायता से जुड़े कार्य, महिलाओं की भागीदारी नई सोच और सकारात्मक परिणाम लेकर आती है।
0: बिल्कुल मारिया। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली भारत की गौरव विजय लक्ष्मी पंडित हो, या फिर हाल के वर्षों में दुनिया के सामने भारत का पक्ष मजबूती से रखने वाली हमारी महिला राजनयिक, भारतीय महिलाएं हर जगह लोहा मनवा रही हैं।
1: हाँ एडिथ, कूटनीति डिप्लोमेसी सिर्फ फाइलों और संधियों पर हस्ताक्षर करने का सीमित नहीं है। यह दुनिया को बेहतर, सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने का माध्यम भी है। जब शांति समझौतों और कूटनीतिक फैसलों में महिलाएं शामिल होती हैं, तो परिणाम ज्यादा सकारात्मक और अस्थायी होते हैं।
0: इसलिए आवश्यक है कि लड़कियों को शिक्षित करने, नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आज की युवा पीढ़ी के लिए यह अवसर प्रेरणा

चाबी है। यदि आपके अंदर देश और दुनिया को बेहतर बनाने का जज्बा है तो कूटनीति का क्षेत्र आपके लिए अनंत संभावनाएं लेकर आता है। तो दोस्तों, बातें तो और भी करेंगे और नई नई जानकारियां भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे उन महिलाओं की जो भारत की राजनयिक रिश्तों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
3: दोस्तों, डिप्लोमेसी केवल देशों के बीच समझौते और वार्ताओं तक सीमित नहीं है। यह विश्वास, सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम भी है।
2: बिल्कुल एदित, आज भारतीय महिलाएं इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता से देश का नाम विश्व भर में रोशन कर रही हैं।
3: बिल्कुल मारिया, भारतीय विदेश सेवा में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। वे विभिन्न देशों में राजदूत, उच्चायुक्त और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत की प्रतिनिधि बनकर कार्य कर रही है। उनकी मेहनत और कुशलता से भारत के वैश्विक संबंध और अधिक मजबूत हो रहे हैं।
2: भारत की पहली महिला विदेश सचिव रही चोकीला अय्यर ने इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए नए रास्ते खोले। वहीं निरुपमा राव तथा रुचिरा कंबोज जैसी कूटनीतिज्ञों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है।
3: बिल्कुल सही कहा, आज भारतीय महिला राजनयिक केवल राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर ही नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर भी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में योगदान दे रही है और साथ ही भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को दुनिया तक पहुंचाने का कार्य भी कर रही है।
2: हाँ एदित, ठीक कहा तुमने। कोविड-19 महामारी के दौरान भी भारतीय महिला अधिकारियों ने विदेश में फंसे भारतीयों की सहायता और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संकट की घड़ी में उनकी संवेदनशीलता और नेतृत्व क्षमता ने भारत की सकारात्मक छवि को और मजबूत बनाया।
3: बिल्कुल, समर्पण, ज्ञान और आत्मविश्वास के बल पर किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है। आज की भारतीय महिला केवल अपने परिवार और समाज का ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए वैश्विक स्तर पर नए आयाम स्थापित कर रही है।
2: तो दोस्तों, भारतीय राजनयिक रिश्तों को सहेजने और मजबूत बनाने में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी दूरदर्शिता, संवाद कौशल और नेतृत्व क्षमता भारत को विश्व समुदाय के साथ और अधिक मजबूती से जोड़ रही है।
3: दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं इतिहास।

0: रिसोर्ट रिसर्च में डाक एवं टेलीग्राफ विभाग ने राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा की शुरुआत की।
1: 1966 में आज ही के दिन मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे एयर इंडिया के विमान के स्विट्जरलैंड के माउंट ब्लैक में दुर्घटनाग्रस्त होने से 117 लोगों की मौत हो गई थी।
0: 1980 में भारत के चौथे राष्ट्रपति वी गिरी का निधन हुआ।
1: 2005 ईस्वी में अमेरिका द्वारा भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी की मान्यता दी गई।
0: वर्ष 2006 में फिलीपींस में मौत की सजा समाप्त की गई।
1: वर्ष 2020 ईस्वी में भारत चीन ने सीमा पर तनाव कम करने के लिए राजनयिक वार्ता की।
0: वर्ष 2024 में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के समीप लिथियम बैटरी बनाने वाले कारखाने में आग लगने से 22 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: your Apple.
1: दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं करेंट अफेयर्स की। संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए झारखंड के दो सांसदों को चुना गया है, सांसद निशिकांत दुबे और सांसद विद्युत बरन महतो को।
2: दिसोम गुरु के नाम से लोकप्रिय झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को वर्ष 2026 में मरणोपरांत देश के प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है।
1: जी हाँ दोस्तों, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 200 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी।
2: नॉर्वे देश ने प्राथमिक विद्यालयों में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
1: जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ को स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित समारोह में दिया गया।
2: UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण देश बना है।
1: FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2025-26 का खिताब भारत ने जीता।
2: दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ दिलचस्प और हैरान कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। हिंदी शब्द को इसका नाम फारसी शब्द हिंद से मिला है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि।
1: हिंदी शब्द को इसका नाम फारसी शब्द हिंदी से मिला है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया।
2: पृथ्वी पर हर जगह गुरुत्वाकर्षण एक जैसा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का आकार पूरी तरह से गोल ना होने और इसके अलग अलग हिस्सों में पदार्थों के घनत्व में अंतर के कारण गुरुत्वाकर्षण का मान हर स्थान पर थोड़ा बदलता रहता है।
1: हमारी जीभ सिर्फ एक मांसपेशी नहीं है, बल्कि 8 परस्पर जुड़ी हुई मांसपेशियों का एक समूह है जो एक साथ काम करती है।
2: एक वयस्क मनुष्य का हृदय आराम की स्थिति में औसतन 72 बार प्रति मिनट धड़कता है और मनुष्य के हृदय की मांसपेशियां प्रतिदिन औसतन 1,00,000 बार धड़कती हैं।
1: फिलीपींस से पाए जाने वाला बोया पक्षी प्रकाश में रहने का इतना शौकीन होता है कि अपने घोंसले के चारों ओर जुगनू भरकर लटका देता है।
2: वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है और इसका क्षेत्रफल 0.2 वर्ग मील है और इसकी आबादी औसतन 770 है और इसकी राजधानी वेटिकन सिटी ही है।
1: विश्व की 60% से अधिक झीलें कनाडा में स्थित है। इस देश में 8,80,000 से भी ज्यादा छोटी बड़ी झीलें मौजूद हैं।
2: मानव मस्तिष्क इतनी ऊर्जा बनाता है कि उससे एक 10 वाट का बल्ब जलाया जा सकता है।
1: सोते समय हमारा दिमाग दिन भर की घटनाओं को छांटकर हमारी यादों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल देता है।
2: मनुष्य की आंखें 1 करोड़ रंगों में अंतर पहचान सकती है।
1: दोस्तों, अब हम बात करते हैं मौजूदा भू राजनीति और भारत की वर्तमान विदेश नीति पर। भारत की भू राजनीति का केंद्र हिमालयी सीमाओं की सुरक्षा, हिंद महासागर पर रणनीतिक उपस्थिति, पड़ोसी देशों के साथ संबंध और वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखना है। यही कारण है कि भारत आज दुनिया की उभरती हुई प्रमुख शक्तियों में गिना जाता है।
2: जी हाँ दोस्तों, आज की वैश्विक राजनीति कई बड़े बदलावों से गुजर रही है।

0: ऐसे में भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और वैश्विक प्रभाव को बढ़ाना है।
1: बिल्कुल दोस्तों, भारत किसी एक शक्ति गुट का हिस्सा बनने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेने की नीति को अपनाता है। यही कारण है कि भारत अमेरिका और रूस दोनों के साथ संबंध बनाए रखता है।
0: और दोस्तों, भारत अपने पड़ोसी देशों बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और भी पड़ोसी देश हैं, उनके साथ आर्थिक, ऊर्जा और संपर्क संबंधों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है।
1: जी हाँ दोस्तों, भारत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार, कनेक्टिविटी और सुरक्षा बढ़ा रहा है। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करना है।
0: क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसका उद्देश्य मुक्त, खुला और सुरक्षित इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना है।
1: बिल्कुल दोस्तों, भारत विकासशील देशों के हितों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने का प्रयास कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और विकास वित्त जैसे मुद्दों पर भारत सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
0: बिल्कुल, भारत विदेशी निवेश आकर्षित करने, व्यापार समझौते बढ़ाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी भूमिका मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है।
1: तो दोस्तों, भारत का लक्ष्य एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना है और विभिन्न शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखना है।
0: दोस्तों, बातें तो और भी करनी थी पर वक्त का तगाजा है, तो फिर मिलते हैं नई सोच और बातों के साथ। तब तक अपनी दोस्त मारिया
1: और एडिथ
0: को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार जुहार, मेहनत को सम्मान और सेहत को सलाम। आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम श्रमिक लोग, जहां गूंजती है श्रमिकों की आवाज, जुड़ती है उम्मीदें और मिलती है स्वस्थ जीवन की नई राह। आप तमाम श्रोता मित्रों का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सुषमा।
1: और मैं हूं प्रणव। स्वीकार कीजिए प्रणव का भी सस्नेह नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, क्योंकि स्वस्थ श्रमिक ही सशक्त समाज और समृद्ध राष्ट्र की पहचान है। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद शरीर को चाहिए आराम और मन को चाहिए सुकून। ऐसे में योग बन सकता है आपका सबसे भरोसेमंद साथी।
0: बिल्कुल सही बात कहते हैं ना, योग वह शक्ति है जो थके हुए शरीर में नई ऊर्जा और व्यस्त मन में नया उत्साह भर देती है। योग केवल व्यायाम नहीं साथियों, बल्कि शरीर मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक जीवन शैली है। आज हम

0: बात करेंगे महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर।
1: साथियों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं घर, परिवार, शिक्षा, नौकरी और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच कई चुनौतियों का सामना करती
0: हैं। बिल्कुल।
1: ऐसे में तनाव, थकान, चिंता और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ना स्वाभाविक है, और योग इन समस्याओं से निपटने का एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी माध्यम है।
0: हाँ साथियों, योग न केवल शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। नियमित योगाभ्यास से रक्त संचार बेहतर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर ऊर्जावान बना रहता है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि महिलाओं के जीवन में विभिन्न चरणों जैसे किशोरावस्था, मातृत्व और मेनोपॉज में योग शारीरिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: जी समय साथियों, दिन में केवल 20 से 30 मिनट का योगाभ्यास आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ, संतुलित तथा खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाएं।
0: बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद का एक प्रेरक कथन है प्रणव, वह है एकाग्र मन, दृढ़ इच्छा शक्ति और स्वस्थ शरीर सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है। साथ साथ ये भी याद रखना है साथियों कि स्वस्थ महिला सशक्त परिवार और समृद्ध समाज की आधारशिला है। और पता है प्रणव, आज राजनयिक क्षेत्र में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उन महिलाओं को हम नमन करते हैं जिन्होंने कूटनीति और वैश्विक नेतृत्व में अपनी सशक्त पहचान बनाई है।
1: बिल्कुल, आज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमन इन डिप्लोमेसी मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन ने इस दिवस को मान्यता दी है और इसे हर वर्ष 24 जून को मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों कि कूटनीति केवल देशों के बीच केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि शांति, सहयोग और विश्वास का सेतु है।
0: बिल्कुल, और आज दुनिया भर में महिलाएं विदेश नीति, शांति वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का इसका प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने अपने संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण से भारतीय कूटनीति को नई पहचान दी है। विदेशों में फंसे भारतीयों की सहायता हो, संकट के समय त्वरित सहायता पहुंचाना हो, या सोशल मीडिया के माध्यम से अपना मतलब आम नागरिकों से सीधे संवाद करना हो, उन्होंने कूटनीति को जन केंद्रित बनाया।
1: हाँ साथियों, उनकी कार्यशैली ने साबित किया कि नेतृत्व में संवेदनशीलता और दृढ़ता साथ साथ चल सकती है। हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए, बल्कि याद रखना चाहिए कि जब महिलाएं निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनती हैं, तो संवाद अधिक समावेशी और भविष्य अधिक शांतिपूर्ण बनता है।
0: इसलिए साथियों, इस दिवस पर हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि कूटनीति और नेतृत्व के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देंगे। और साथियों, अब वक्त है म्यूजिकल ब्रेक लेने का। वैसे साथियों, जीवन में सुख दुख, मिलन विरह और बदलाव का सिलसिला तो चलता रहता है, समय कभी ठहरता नहीं, लेकिन उम्मीदों के फूल हमेशा खिलते रहते हैं। इसी खूबसूरत एहसास को शब्द और संगीत में पिरोता हुआ ये सदाबहार गीत आपके लिए, आइए सुनते हैं इसकी मधुर धुनों की, आनंद लेते हैं।

हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

0: वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अगुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अगुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम श्रमिक लोग। मेहनतकश हाथों की ताकत ही देश की प्रगति की असली पहचान है। साथियों, पिछले एक दशक में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी पहलें शुरू की गई हैं।
3: और इन योजनाओं ने करोड़ों श्रमिकों को पेंशन, बीमा, दुर्घटना सहायता और आर्थिक सुरक्षा का कवच प्रदान किया है। अब मजदूर केवल श्रम शक्ति नहीं बल्कि देश के विकास के सशक्त भागीदार बन रहे हैं। जागरूकता और सरकारी सहयोग के माध्यम से उनके जीवन में सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास का नया अध्याय जुड़ रहा है।
2: यानी श्रम का सम्मान, श्रमिक का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा से होगा सशक्त परिवार। इस प्रकार एकता में शक्ति है और सहयोग में समृद्धि है।
3: और इसी विचार को साकार करता है सहकारिता आंदोलन। आज जब सामाजिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सामूहिक विकास की बात हो रही है, तब सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था और श्रमिक वर्ग के सशक्तिकरण का मजबूत आधार बनकर उभर रही है। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहकारिता विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार एफ्रेम जॉर्ज कुजूर, और आपसे बातचीत कर रहे हैं हमारी रेडियो सहयोगी सुषमा एक्का। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता सहकारिता से समृद्धि की ओर।

0: साथियों, श्रम शक्ति समृद्ध भारत की पहचान है। आज हम बात करेंगे उस ताकत की जिसने गांव से लेकर शहरों तक विकास की नई धारा बहाई है। हम बात कर रहे हैं सहकारिता की, सहकारिता से समृद्धि की ओर। इस विषय पर आज हम बात करेंगे सहकारिता निदेशालय झारखंड रांची के डिप्टी रजिस्ट्रार श्री एफ्रम जॉर्ज कुजूर जी से, और जानेंगे कि आखिर सहकारी समितियां कैसे लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है, श्रमिकों और आम नागरिकों में क्या बदलाव ला रही है। तो आइए जानते हैं कैसे सहयोग और सहभागिता से जन्म लेती है समृद्धि की राह। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम श्रमिक लोक में। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सहकारिता की मूल भावना क्या है या अर्थ क्या है, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसकी कार्य प्रणाली कैसे होती है।
1: धन्यवाद, मुझे खुशी है कि आज हम इतने महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। सहकारिता सच में समाज के आर्थिक विकास की रीढ़ है। मैं बतलाना चाहूंगा कि सहकारिता एक विभाग नहीं बल्कि एक आंदोलन है, और सहकारिता का मूल उद्देश्य है लोगों के साथ साझेदारी में कार्य करना, मतलब एक और एक ग्यारह की भावना हम कह सकते हैं इसको। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति से समाज की ओर विकास करना, या एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें सभी सदस्य मिलजुल कर लाभ कमाते हैं और जिम्मेदारी भी बांटते हैं। यही कारण है कि सहकारी संस्थाएं समाज के हर वर्ग को जोड़ती है, चाहे वो किसान हो, श्रमिक हो या छोटे व्यापारी। सभी वर्गों को सहकारिता के एक अम्ब्रेला में, है ना, श्रमिकों को और किसानों को हम इसका सदस्य बनाकर उसको हम लाभ अर्जित करने के लिए हम लोग प्रमोट कर सकते।
0: वैसे सहकारी समितियां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किस तरह श्रमिकों को या कहें लोगों को रोजगार दे रही है या आत्मनिर्भर को बढ़ावा दे रही है?

0: देखिए, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि श्रमिक वर्ग के लिए ये कोऑपरेटिव या सहकारी समितियां बहुत उपयोगी है। जैसे सहकारी समितियां उन्हें ना केवल रोजगार देती है बल्कि उचित मजदूरी, प्रशिक्षण और सामूहिक बचत की भी सुविधा देती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, जैसे यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या फिर हम यूं कहें कि फिशरी सोसाइटी है, या दूध उत्पादन की समितियां, या अन्य बहुत सारी छोटी छोटी समितियां हैं जिसमें कि हमारे श्रमिक वर्ग को है ना एक अच्छी सुविधा देती है। उदाहरण के तौर पर मैं बतलाना चाहूंगा कि श्रमिक सहकारी निर्माण समितियां कई राज्यों में सफलतापूर्वक काम कर रही है। इन समितियों के माध्यम से श्रमिक खुद ठेकेदार बनते हैं और अपने काम का पूरा पूरा लाभ खुद उठाते हैं और यही बात उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है।
1: जी बिल्कुल। वैसे गांव में जो सहकारी संघियां समितियों का जो प्रभाव बहुत देखा जा रहा है आजकल, क्या आप बताएंगे कि यह ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पर कैसे समृद्धि ला सकते हैं?
0: जी हाँ बिल्कुल, मैं बतलाना चाहूंगा कि गांव में कृषि सहकारी समितियां, दूध उत्पादन सहयोग समितियां, हस्तशिल्प सहयोग समितियां या यूं कहे बुनकर सहयोग समितियां किसानों और तमाम छोटे कारीगरों को एक मंच देती है।
1: जी।
0: शहरों की बात करें तो शहरों में हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको हम लोग साख सहयोग समिति कहते हैं, ये आम नागरिकों को एक आर्थिक सुरक्षा देती है।
1: जी बिल्कुल।
0: है ना, और इससे स्थानीय रोजगार को भी बढ़ाता है और लोगों को अपने क्षेत्र में काम के अवसर इससे मिलते, और कहना चाहिए कि यही इसका असली समृद्धि है।
1: जी, क्या कोई ऐसी सफलता की कहानी है जो आपके विभाग के कार्यों का उदाहरण बने हैं?
0: हाँ बिल्कुल, मैं बतलाना चाहूंगा कि आज के तारीख में झारखंड में एक महिला दूध उत्पादन सहयोग समिति है। जहाँ पहले महिलाएं केवल घर तक ही सीमित थी, पर सहकारिता से जुड़ने के बाद उन्होंने डेयरी शुरू किया, प्रशिक्षण लिया और आज वे हर महीने अच्छी आमदनी कमा रही है। मैं बताना चाहूंगा छोटा सा उदाहरण झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, हमारे झारखंड में अभी मेधा दूध है ना, जो जिसका प्रोडक्ट पूरे हमारे झारखंड में झारखंड मिल्क फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब उसी से लोग हमारे महिलाएं यहाँ पर ही गांव-गांव की महिलाएं सहकारी समितियां जो झारखंड मिल्क फेडरेशन से संबद्धता प्राप्त करते या यूं कहे जुड़कर, अब वही महिलाएं अपने गांव की रोल मॉडल बन गई और यही है सहकारिता की असली ताकत, आत्मनिर्भरता और समान पाने की ताकत।
1: जी बिल्कुल, और ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और सर, सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने की कौन सी योजनाएं चल रही हैं अभी आपके विभाग से?
0: बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं बतलाना चाहूंगा कि हमारे झारखंड में पहले भी बहुत सारी योजनाएं चल रही थी और अब भी कुछ नई योजनाएं झारखंड सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, हमारे पूरे भारतवर्ष में, हमारे झारखंड में ऐसी योजनाएं चल रही है। जैसे मैं बतलाना चाहूंगा कि उसमें महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो सहकार से समृद्धि योजना, राष्ट्रीय सहकारिता नीति और अब डिजिटल कोऑपरेटिव पोर्टल भी तैयार किया गया है, जिससे पंजीकरण, वित्तीय पारदर्शिता और सदस्यों की जानकारी डिजिटल में ही आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा झारखंड के परिपेक्ष में, मैं पुनः बताना चाहूंगा कि देखिए पहले हमारे झारखंड में जितनी भी समितियां थी, अब भी है बहुत सारे जो ऑफलाइन पर काम करती थी, अब क्या है डिजिटल हो जाने से है ना, और हमारे पूरे झारखंड में अभी लगभग 1500 समितियां को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है ना, और वही हमने बताया कि वो डिजिटल कोऑपरेटिव पोर्टल भी इनका तैयार किया गया है और उसी के माध्यम से आप ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता की जो बात कर रहे हैं, वो अब आने वाले समय में हमारे सारे सहकारी समितियों में देखने को मिलेगी। और तो और अब समितियां ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और मार्केटिंग तक कर पा रही।
1: सर, तो हम जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में सहकारिता क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए आपके विभाग से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या योजनाएं तैयार की जा रही हैं?
0: आज के तारीख में हमारे विभाग के माध्यम से 3-4 प्रमुख योजनाएं धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख है IT इंटरवेंशन द्वारा सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन, वार्षिक रिटर्न, बायलॉज संशोधन आदि ऑनलाइन हो सके। नबार्ड द्वारा कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत फिलहाल झारखंड के सहकारिता विभाग में लगभग 1500 पैक्सों अर्थात प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटियों को पहले चरण में शामिल

0: का करने का प्रयास किया गया। दूसरा हम कह सकते हैं लागत संवर्धन और भंडारण व इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल, जिसमें जिले स्तर के समितियों में जितने भी लैम्स पैक्स है, जहां पर ही लैम्स का जीर्णोद्धार करना हो या नया गोडाउन बनाना हो, उसमें विभाग के माध्यम से अभी 100 मैट्रिक टन और 500 मैट्रिक टन का इंफ्रास्ट्रक्चर के फलस्वरूप उसमें गोदाम निर्माण किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में संबंधित समितियां सरकार की योजनाओं के तहत धान अधिप्राप्ति का कारोबार कर सकती है, किसानों से धान की अधिप्राप्ति करती है, साथ ही साथ किसानों को उस लैंड पैक्स के माध्यम से खाद बीज उचित दर पर मुहैया कराने का काम करती है। इसके अंतर्गत और भी अच्छी योजनाएं, सदस्यता वृद्धि अभियान चलाया जा रहा है, कंप्यूटरीकरण तो किया ही जा रहा है, गोदाम निर्माण कराया ही जा रहा है, साथ ही साथ अभी फसल बीमा का भी काम हमारे लैंप्स पैक्स के माध्यम से, जो जहां पे गोडाउन बनने के पश्चात वो सेंट्रलाइज करके उससे धान अधिप्राप्ति के साथ साथ फसल बीमा का भी किसानों से काम कराया जाएगा। इसी साथ मैं योजनाओं की बात करें तो हमारे सहकारिता विभाग के माध्यम से लघु व ग्रामीण उद्यमों व उत्पादन समूहों को सृजन करने की बात हम लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। जैसे राज्य में जोहार प्रोजेक्ट नामक विश्व बैंक सहायता प्राप्त ग्रामीण आजीविका परियोजना है, जिसमें लगभग 2 लाख से अधिक ग्रामीणों के घर परिवारों को लक्षित किया गया है, और इसमें उत्पादक समूह जो प्रोड्यूसर ग्रुप और किसान निर्माता कंपनी, जिसको हम लोग FPO के नाम से भी जानते हैं, इनको स्थापित करने की प्रक्रिया शामिल है, जो सहकारी समूह आधारित मॉडल को बढ़ावा देती है। इस प्रकार हमारे विभाग के प्रमुख योजनाओं के तहत हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हमारे किसानों को, युवाओं को और महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे महिलाएं रोजगार से जुड़ सकी, किसानों को ज्यादा से ज्यादा अपने खेती के माध्यम से लाभ हो सके, और युवाओं को एक सेल्फ रोजगार भी जनरेट करते हुए उन्हें अपने गांव में ही, अपने प्रखंड में रोजगार मिल सके, आत्मनिर्भर वो स्वयं बन सके।
1: जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी सर। अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं, खासतौर पर युवाओं और श्रमिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने स्तर पर?
0: मेरा संदेश हमारे किसान भाइयों को, हमारे युवा भाइयों को हमारी तरफ से संदेश होगा कि अगर हम साथ मिलकर काम करें, कहने का तात्पर्य हमारे सहकारिता विभाग का भी सिंबल है हैंड से, एक हाथ हमारा, एक हाथ किसान का, युवाओं का, अगर ये दोनों कड़ी जब जुटती है तो ताकत और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ती है।
1: जी बिल्कुल, वैसे भी कहा गया है कि एकता में बल है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साथ मिलकर अगर हम लोग काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल हो जाती है। सहकारिता का रास्ता ही समृद्धि की राह है।
1: बिल्कुल,
0: हर श्रमिक, हर युवा, हर किसान को चाहिए कि वे सहकारी समितियों से जुड़े, अपनी कौशल और मेहनत को संगठन के साथ जुड़े, यही आत्मनिर्भर भारत का असली रास्ता है।
1: श्रोताओं, आज की इस बातचीत से हमने जाना कि सहकारिता केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक समूह भावना है, जहां सबका साथ सबका विकास वास्तव में साकार होता है। जब हर श्रमिक, किसान और नागरिक मिलकर काम करता है, तभी बनता है समृद्ध भारत। सर, आपने बहुत ही प्रेरणादायक जानकारी हमारे श्रोताओं को आज दिया है, साथ ही आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इतनी अच्छी प्रेरणादायक जानकारी हमारे श्रोताओं को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: सहकारिता से समृद्धि की ओर, आज की चर्चा से हमने जाना कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि सामूहिक विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा का प्रभावी माध्यम है। अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं एफ्रेम जॉर्ज कुजूर जी का।
3: और साथियों, स्वस्थ जीवन हर व्यक्ति का अधिकार है, और इसी अधिकार को मजबूत आधार देता है आयुष्मान भारत। यह केवल एक स्वास्थ्य योजना नहीं बल्कि करोड़ों परिवार के लिए सुरक्षा और सम्मान का कवच है। आर्थिक तंगी अब इलाज में बाधा ना बने, इसी सोच के साथ यह योजना जरूरतमंद परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती हैं।
2: याद रखिए,

0: स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। आयुष्मान भारत के माध्यम से बेहतर इलाज, आर्थिक सुरक्षा और आत्मसम्मान तीनों एक साथ सुनिश्चित किए जा रहे हैं। आइए जागरूक बने, योजना का लाभ उठाएं और स्वस्थ सुरक्षित भारत के निर्माण में सहभागी बने।
1: बिल्कुल, हमारे जितने भी श्रमिक साथी हैं, इस योजना का लाभ आप जरूर उठाएं और अपने आसपास के श्रमिकों को भी इसके लिए प्रेरित करें। और सबसे ध्यान देने वाली बात तो ये है प्रणव, कि आज के डिजिटल युग में रोजगार के स्वरूप तेजी से बदल रहे हैं।
0: फूड डिलीवरी, कैब सेवा, ऑनलाइन कंटेंट डिजाइनिंग और अन्य डिजिटल कार्यों से जुड़े लाखों लोग गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये कार्यकर्ता अर्थव्यवस्था की नई ताकत है, लेकिन लंबे समय तक सामाजिक सुरक्षा और कानूनी संरक्षण से वंचित रहे।
1: बिल्कुल, अब समय की मांग है कि इन श्रमिकों को उनके योगदान के अनुरूप पहचान, सम्मान और सुरक्षा मिले। कानूनी मान्यता से उन्हें श्रमिक अधिकारों का संरक्षण मिलेगा, वहीं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं का भी लाभ सुनिश्चित हो सकेगा।
0: बिल्कुल, याद रखिए, श्रम का हर स्वरूप सम्मान का अधिकारी है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सुरक्षा और अधिकार प्रदान करना न केवल श्रमिक कल्याण की दिशा में कदम है, बल्कि समावेशी और सशक्त भारत के निर्माण की आधारशिला भी है। आपको ये भी बता दें कि भारत में झारखंड ऐसा चौथा राज्य है जिसने गिग श्रमिकों के लिए कानून बनाया है। उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। हमारे देश में 4 ऐसे राज्य हैं जिनमें प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाए गए हैं, उनकी सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। तो आप श्रमिक पोर्टल पर जाकर इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं।
1: बिल्कुल, वैसे तो हमें बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम अपने श्रमिक साथियों से इजाजत लेना चाहेंगे, क्योंकि अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपनी दोस्त सुषमा
0: और प्रणव को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

0: इस समय आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोक। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेटा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज साहिबगंज के बरहड़वा और गुड्डा के आदिवासी बहुल सुंदर पहाड़ी प्रखंड में मान्यता प्राप्त दलों के बीएलए 2 प्रशिक्षण का निरीक्षण करते हुए कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंड में रह रहे विदेशी नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के हकदार नहीं है और इन्यूमरेशन फॉर्म पर नागरिकता की गलत घोषणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत दंडनीय अपराध है। बोकारो जिले में पुलिस एवं झारखंड अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने बोकारो स्टील सिटी स्थित कोचिंग संस्थानों का फायर ऑडिट सह औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोचिंग संस्थानों में उपलब्ध अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास द्वार, अग्निशमन मानकों का अनुपालन, विद्युत सुरक्षा व्यवस्था और आपदा की स्थिति में निकासी व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के किरीबुरु थाना क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने आज सारंडा के टटीबा गांव के पास जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में संचालित 3 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान भारी मात्रा में जावा महुआ तथा शराब निर्माण में प्रयुक्त उपकरणों को नष्ट किया गया। गढ़वा जिले में आज विभिन्न सामाजिक और आध्यात्मिक संगठनों द्वारा गंगा दशहरा मनाया गया। सबसे अधिक कार्यक्रम गायत्री परिवार द्वारा सभी शक्तिपीठों और प्रखंड मुख्यालय केंद्रों पर आज सुबह हवन यज्ञ और मां गंगा की पूजा अर्चना की गई। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।
1: खेती बाड़ी कार्यक्रम सुन वहीं सौ भाई बहन मन के शांति बहन बटले जोहार। और आज मोर संगे है सुकेश दादा। सुकेश दादा राउर के भी बहुत बहुत जोहार।
0: जोहार शांति बहन, और संगे संगे जे खेती बाड़ी सुनवैया भाई बहन मन है उमन के भी जोहार।
1: तब दादा बताओ कैसा हाल चाल है।
0: हमारे बटे तो सब नगद नगद है, अपन बटे भी बताओ।
1: मोर बटे भी एकदम बेस बेस है। और एखन तो देखो कि तनिकुन मौसम बदल है तो तनिकुन राहत मिल है गरम से।
0: गरम से तो कुछ राहत मिल है, लेकिन दिन के तो इसनो चट चटाए के धूप लागत रहे है।
1: एक बेला हाँ दादा नगद कली, एक बेला तो रौद से केला और उल्टा बेरा तो बदरी ढाई देवेला।
0: बात कर रही थी जैसे अखन खेती बाड़ी का समय भी है, मौसम में उतार चढ़ाव चलते हैं, लेकिन बरखा अखन होए के रहे जितना उतना बरखा नहीं हो पाए। काहे इकर से किसान मन भी कुछ चिंतित है कि भाई खेती बाड़ी के कैसे निपटाल जा सके है नी। काहे देखो ईसन स्थिति में कम बरखा कर स्थिति रहेला तो जल स्रोत तो नीचे चल जाएगा।
1: हाँ।
0: और जे खेती बाड़ी में लागल है जुड़ल है वो भाई बहन मन के पटवन में भी कितना असुविधा होते, काहे पानी का अभाव है।
1: हाँ।
0: तो बात रहला कि खेती बाड़ी में जितना भी जुड़ल है वो पानी का जे अभाव होला, पानी का उपलब्धता कम होला, उसन स्थिति में देखू तकनीक का भी उपयोग करे चाहिए। और तकनीक ये है कि कृषि क्षेत्र में कि टपक सिंचाई आज का तारीख में एक क्रांतिकारी विधि भी है। काहे इकर से पानी का खपत भी कम होला और जे पानी दल जाएला पौधा में खेत में वो भी समुचित रूप से उकर उपयोग भी होला।
1: हाँ ये बात तो बहुत बेस कहली दादा रावरे। काले की है टपक सिंचाई व्यवस्था एक ऐसा तकनीक है के जे पानी कर बगरा से बगरा बचत करेला और जे हमरे मन खाद मन डाली ला वो एकदम जड़ में जाएला फसल कर।
0: जड़ में जाएला कहे का मतलब है कि जे उकर में दवा है, दवा कह दो चाहे पोषक तत्व है और पानी है, सीधा पौधा कर जड़ में चल जाएला और हमेशा पौधा के नमी बनाए रखेला। और जब नमी बनाए रखेला तो पौधा हमेशा हरा भरा और चमकदार रहेला, जेकर से उत्पादन क्षमता भी अधिक होला और माने बढ़िया उत्पादन भी होला कोई भी फसल कर।
1: और देखो कि टपक सिंचाई व्यवस्था ऐसा है कि उकर में है कि बगरा से बगरा घास फूस मन नहीं होवेला। काले कि उकर ले जे हमरे मन पौधा लगाएला हुए तक पानी पहुँचेला तो उकर से है कि खर पतवार मन इधर उधर कर नहीं पनपेला और जेकर से बचत होवेला हमरे मन के मेहनत करे में।
0: यानी कि टपक सिंचाई से कर जे किसान मन लाभ ले सके ना उकर में देखो खर पतवार से बच सके ना, घास फूस नहीं हो पावे। काहे अगर होबो करी तो बहुत छटपट होई उके आराम से उमन उकर निकाई गुड़ाई कर सके ना। लेकिन जे परंपरागत खेती बाड़ी करे ना उकर में खर पतवार नियंत्रण में बहुत कठिनाई होला और जे फसल का उत्पादन भी उकर में कम होला। काहे कि जे भी फसल में जाए चाहिए जो पोषक तत्व

0: ऊ चीज के घास फूस भी अपन में ले लेला।
1: और देखो इकर में है कि फसल मन कर उत्पादन और गुणवत्ता बनल रहेला।
0: हाँ,
1: और मजदूरी भी कम लागेला, ऊर्जा भी कम खपत होवेला।
0: ऊर्जा भी कम खपत होवेला, मजदूर भी कम लागेला। और इकर में यह बात है कि जैसे टपक सिंचाई से जब पानी कर पटवन होला खेत में पौधा में, तो मिट्टी कर कटाव भी कम होला। और जे उकर पोषक तत्व जे बई के पानी से बई के बाहर नीचे की ओर चल जाते हैं, उकर से का है संरक्षित हो जाते हैं, बच जाते हैं, और उकर से भरपूर पौधा मन के पोषक तत्व और पानी भी मिल जाएगा।
1: नगद बात करिए दादा। तो देखो,
0: तो जितना भी भाई बहन मन है खेती बाड़ी से जुड़ल है, अगर संभव है तो टपक सिंचाई विधि से अपन खेत के पटवन करू और अपन उपज के भी बढ़ाऊ। तो बातचीत कर ले तो निश्चय चलो कार्यक्रम के आगे बढ़ाईला। और हमारे मन एक किसान से करल बातचीत के जानकारी करीला। और किसान है दिनेश कुमार, जो जैविक खाद से संबंधित है, और इकर से बातचीत कर रहे हैं अरविंद कुमार मिश्रा।
2: किसान भाई जोहार, जैसन हमरे मन रोज दिना नवा नवा किसान से रोज मन कर भेंट करवाइला, उसने आज हमारे संगे एक ठो नौजवान किसान है और इनकर से हमरे मन भेंट करत थी और जानत थी इनकर खेती बाड़ी कर काम कैसन चलत है। सबसे पहले तो इनकर हमरे मन परिचय के जान लेती, का नाम होलक और कहाँ इनकर घर पड़ेला। भाई जोहार।
3: जोहार।
2: का नाम होलक दादा रूर?
3: मोर नाम है के दिनेश कुमार, गाँव चेड़ी पोस्ट कमरे में आयु थाना कांके है के।
2: अच्छा, कांके थाना कर रहे वाला रोरे दिनेश भाई ही। तो दिनेश भाई, सबसे पहले तो रोर पढ़ाई लिखाई कर बारे में जानकारी हम चाहब कि कितना तक पढ़ाई लिखाई रोर हो एक पैर है?
3: और पढ़ाई तो होलक है, इंटर तक होलक है, इंटर कम्प्लीट है।
2: अच्छा, तो कितना दिन पहले इंटर कर रहे?
3: इंटर कर ले 2008 में।
2: अच्छा, उकर बादे फिर एखन का चलत है?
3: उकर बादे बीए में एडमिशन करा ली रहे, तो फिर पढ़ाई लिखाई तो फिर अधे दूरा में खत्म हो गया।
2: तो एखन का करे के लागी?
3: एखन तो खेती बाड़ी करी ला।
2: तो रो आपन खेती है, मतलब आपन जमीन में रोरे खेती करी ला की दोसर?
3: हाँ,
2: कर
3: आपन जमीन है, आपन जमीन।
2: कितना ठाव है रोर अपन
3: है की
2: जेकर में खेती करी ला?
3: बारी खेती करी ला वो ला।
2: हाँ हाँ, बारी खेती।
3: बारी खेती तीन गो टुकड़ा है।
2: अच्छा अच्छा, तो एखन चूंकि बरसात कर मौसम चले के लायक है और ई मौसम में बहुत किसान मन नाना रकम कर खेती बाड़ी कर काम करे ना, सब्जी खेती भी लगाए ना, तो रोरे अपन खेत में डाड़ खेत में का लगा ही?
3: एखन तो भिंडी लगा ही, भिंडी है, बीन है, आ एक टुकड़ा ने मकई भी लगाए दे।
2: कितना नियर बिहीन लाग रहे अगर सब कर हम बात करब तो, अलग अलग रोरे बताओ कि कितना बिहीन रोप रही रोरे?
3: बीन तो आधा केजी लगाए रही।
2: अच्छा, और भिंडी कर बात करूँ तो?
3: भेंडियो आधे केजी रहे, मकई एक केजी रहे।
2: अच्छा, हम दुयो कर खेती कर बारे में अगर और से हम बात करब दिनेश भाई कि कैसे खेती रोरे करीला, बीन कर अगर खास कर बीन कर खेती कर बारे में बात करूँ तो कैसे खेत कर तैयारी करीला, उकर में का खाद बन के देवीला, उकर कैसे देख रेख करे पड़ेला?
3: खाद तो अपन घरेलू खाद जैसे कचरा उचरा जपना हो तो उकर हमें को बनाए दे ही खाद रखे लो अच्छी वाला प्लास्टिक वाला जे भी निकल सके कचरा को हुए डाल देवी ला और खेत तैयार करे से हुए से खाद के निकला के फिर डाल देवी ला।
2: तो आपने खाद बने ला कि उकर में कोनो डाल लीला जैसे केचुआ
3: मन कुछ के नहीं डाली ला, बहुत खाली एक बार पलटी कर देवी ला उके
2: अपने खाद बन जाएला फिर
3: बन जाएला सड़ जाएला तो खाद बन गया।
2: तो उकर में जैसे डीकम्पोस्ट डाले खुएला तो डीकम्पोस्ट बहुत जल्दी खाद तैयार कर देवेला?
3: हाँ, लेकिन हमें तो सब नहीं डाली ला, हमें बनल है प्लास्टिक थैला जैसा बनल है, खूटा गाड़ के राख बनाए दे ही।
2: तो जे भी घर कर जे कतवार मन होलक सबके लगाते गेले
3: रोड उड में गोबर उबर मिलक तो खोलाइन के हमें डाल देल।
2: बहुत सुंदर, कितना दिन में तैयार हो जाएगा खाद?
3: उकर में हवेला हम इनकर के एक साइड में डालते रहला और एक साइड से पलटी करते रहला तो माइन निकलते रहला इन्हें अथी होते रहला।
2: तो बाजार से किने कर नौबत नहीं?
3: हाँ, बाजार से नहीं किनी हम खाद।
2: वाह, बहुत बढ़िया। तो नामा बात करो बता लियो जिसे और किसान मन के देखिला कि केचुआ खाद बनाए ना चाहे डीकम्पोस्ट के देवे ना तो उकर बाद उकर से खाद तैयार हो जाएला। लेकिन रोड़े बढ़िया बात के बता ली कि जे भी घर कर कर कतवार है जैसे कतरन हो गेलक सब्जी कर तो
3: गोबर उबर हो गेलक बाढ़न तोड़न जे घर से निकलक कचरा।
2: हाँ, वो बाहर नहीं फेंक के उकरे में लगा देली है
3: और ऊपर से बाड़ी आसपास में जंगली घास लंत फंद घास जेके जे सब गाय गरु नहीं खाए ना से सब घास के काट के उकरे में डाल देवेला।

0: बहुत बढ़िया,
1: बारियो साफ हो गेल, गाय मने खादो बन गेल,
0: खादो बन गेल, कर कतवार भी जमा नहीं हुआ थे।
1: हाँ
0: इस स्वच्छ भारत अभियान जो आदमी में चलात है बार बार सरकार बटले भी
1: अभी जो भिंडी जो भिंडी जो खत्म हो जाए नहीं तो ओकर जितना डांटी बची उके काट के सबके उकरे में डाल देव।
0: बहुत बढ़िया, खेत भी सफा भ गेल और जे
1: भी सफा हो गेल उके जते सते कते फेंक देबे या दूसर के टाण बटे जाए तो हो दो बात बोली बट अच्छा चल हम कचड़े में जाई
0: आ खाद बन गेल फिर उकर बाद तो उकर से उपज में का रुए अंतर देखी ला।
1: उपज में इकर में है कि थोड़ा सा लंबा टाइम तक वो फल दे वाला जैसे डीएपी यूरिया वाला कर में दे वाला तो 2 से 3 तोड़न में अखन बीन खत्म हो जात लग 3 तोड़न तक तोड़ तर जे अखन हम 4 5 5 5वां तोड़न चलत
0: फसल बढ़िया है।
1: हां अखन बढ़िया है हरियर है
0: वाह।
1: लेकिन है कि

0: और जैविक खेती है शेकर बटे रोरे नवा नवा प्रयोग करे लाएगी किसान मन रो बात के सुनत हो गए उ मन के भी रोरे प्रेरणा देवे खोजत थी कि भाई जे आदमी मन का करे नहीं कि घर दूरा कर जे कतवार है कि ठाव है जमा कर देवे ना ऊपर से गंदगी भी पसरेला ऊपर से मच्छर होवी नाना रकम कर बर बीमारी होवी
1: बीमारी होवी।
0: लेकिन रोरे जे प्रयोग करत थी ई सबके ई काम करे के चाहिए कि जे भी घर कर कर कतवार है से कि एक ठो प्लास्टिक में जमा कर देली फिर तनी दिन बाद अपने आप खाद का रूप ले लेवेला है नहीं बहुत बढ़िया। और भिंडी कर तैयारी रोड़े कैसे करेला दिनेश भाई उगर खेती वास्ते
1: भिंडी के रोहे जोत कोड़ कर ले है नली बनाए के नली कर साइड साइड में लगा देवे एक एक फीट कर दूरी में उगर बाद थोड़ा सा बढ़ल ना हल्का हल्का डीएपी दे के और फिर से खुदाई करके ऊपर ऊपर माटी उठा देवे
0: उगर में का सेवा करी
1: अभी बरसाती है के तो पटाए के तो जरूरत न के पानी तो देवे डाले के जरूरत न के पानी डाले के रास्ता खोले हो गए दूसरा सिस्टम से नाली बनाती
0: है तो पानी निकासी करे पड़ी बरसात कर दिन
1: खेत कर आए आए के काट देवे पानी निकले वास्ते।
0: अब बीन और भिंडी में रोड़े कोनो रोग मन के देखी ला कोनो कीटनाशक मन कर छिड़काव करे
1: भिंडी में तो नखे बीमारी लेकिन बीन में थोड़ा थोड़ा उजे हमीन के देहात में का बोले लाही बोले
0: लाही हाँ हाँ हाँ लाही
1: वो लाही लाग जाए ना
0: तो उकर उपचार कोनो हुए ला कि वो तो बड़ा एक
1: नीम नीम करके वो है दवाई कर तो उके छिड़काव करेला तो फिर भाग जाए ना
0: तो उकर में रोड़े कोनो अपन घर में कीटनाशक तैयार नहीं करेला
1: नहीं कह रही एक बार कह रही लेकिन बढ़िया से नहीं बनला यूज नहीं कर पा लेंगे।
0: जे भी बीन कर खेती करे ना जे भी किसान से हम भेंट करे ला सबका शिकायत यह रहे ला कि लाही लाग गेलक देखो नी सारा फसल हमर बर्बाद हो गेलक और हमहू अपन खेत में लगाए है दिनेश भाई तो हमहू देखा थे कि वो लाही का समस्या बहुत ज्यादा है तो
1: लाही लेकिन लागे ला लेकिन एगो नीम करके एगो दवाई है ना वो बढ़िया सुने ला
0: बढ़िया सुने ला नहीं अच्छा रोह रोह बात के हमहू एखन अब गेठरी बांध लेती अब अपन खेत में हम लगा के देखब का ऊपर से फायदा हमके बुझाते तो आगे दिनेश भाई की रोड का योजना है आगे का करे विचार है जैसे बीन खत्म होए वाला है भिंडी भी अब लास्ट पोजीशन में है तो आगे फिर आगे का रोड़े सोचे के लाएगी का करे है
1: अब रे मिर्चा कर बीजा कर दे ही मिर्चा के लगा
0: अच्छा तो ये हाइब्रिड हके की देसी वाला हके
1: एक टुकड़ा देसी है यार एक पैकेट मतलब देसी भी है दोयो किस्म लगाए कई दिन अच्छी तरह।
0: अच्छा रोड़े सालों भर खेती बाड़ी कर काम करी ला
1: हाँ खेती बाड़ी करी ला
0: तो इकर से आमदनी कैसन बुझाते है खेती बाड़ी करके रोड के संतुष्टि है
1: ठीक है अपनो घर परिवार अपनो साग सब्जी खाए लो जाए ला प्लस दो पैसा आयो जाए ला
0: हाँ अच्छा हुआ मन के भी बढ़िया से पढ़ाते
1: हाँ,
0: हाँ, मन है दिनेश भाई रोर
1: दो गो है दो गो एगो बेटा है एगो बेटी है
0: बहुत बढ़िया छोट परिवार सुखी परिवार कहो नी
1: हाँ, हाँ।
0: बढ़िया से पढ़ाओ लिखाओ खेती बाड़ी का काम के जमकौ हुआ करू दिनेश भाई फिर रोर से कहियो भेंट घाट हुई तो हमरे मन और रोर से बढ़िया बढ़िया बात करब रोरे बहुत बढ़िया जानकार किसान ही नया नया रोरे प्रयोग करते रहिला आज रोर से नवा चीज के सीख ली हम तो ईसन ईसन बहुत नया जानकारी पिछला धान रोर से गुठिया रही तो से दिना भी रोरे नवा बात के हमके बताए रही तो जय धाम रोड से बतियाईला तय धाम नवा बात के रोड से सीखीला तो आसरा के रिला जे भी किसान मन हमरे कर बात के सुनत है उ मन भी रोड गोइट के सुन होबे और उकर प्रयोग में भी अपन लान भाई खेती बाड़ी में लगे दिनेश भाई रोड़े इतना समय के देली उकर ले बहुत बहुत धन्यवाद जोहार
1: जोहार।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कार्यक्रम में आगे बढ़ब और हमारे मन एक नागपुरी कृषि गीत सुनब। देवदास विश्वकर्मा और संगी मनकर कावल गीत है, चलू सुनेला।

0: और पर्यावरण के भी अनुकूल हों। प्राकृतिक रूप से तैयार जैव कीटनाशक इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण विकल्प है। जैसे नीम है, करंज है, धथुरा है, गोमूत्र तथा अन्य स्थानीय संसाधनों से तैयार कीटनाशक न केवल कीटों का प्रभावी प्रबंधन करते हैं बल्कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज हम इसी प्राकृतिक रूप से तैयार जैव कीटनाशकों के द्वारा सब्जी एवं फल फसलों में कीट प्रबंधन किस प्रकार की जाए, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीति प्रिया, सहायक प्राध्यापक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। डॉक्टर प्रीति, आपको नमस्कार है।
1: जी नमस्कार।
0: आप हमारे श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि जैव कीटनाशक क्या है।
1: जी सबसे पहले सभी किसान भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। देखिए, जो जैव कीटनाशक होते हैं वो जीवित सूक्ष्म जीव, पौधों या प्राकृतिक पदार्थों से बनाए जाते हैं
0: जी।
1: ये हानिकारक कीट को नियंत्रित करते हैं, लेकिन जो हमारे मित्र कीट होते हैं उनको और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, फल एवं सब्जी फसलों किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इन फसलों में विभिन्न प्रकार के कीट जैसे माहू, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, फल मक्खी तथा फल एवं तना छेदक कीट किसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन कीटों के नियंत्रण के लिए हम अक्सर क्या करते हैं, रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, जिससे कि कीटों में प्रतिरोधकता विकसित हो रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहे हैं, हमारे मित्र कीट नष्ट हो रहे हैं तथा फलों और सब्जियों में कीटनाशकों के अवशेष भी पाए जा रहे हैं
0: जी। तो इन कीटों की समस्या क्यों बढ़ रही है?
1: देखिए, कीटों की समस्या बढ़ने के कोई एक कारण नहीं है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे बहुत अधिक रासायनिक खेती करना, एक ही फसल को बार बार उगाना जिसे कि हम मोनोक्रॉपिंग भी कहते हैं, प्राकृतिक जो शत्रु कीट हैं उनकी कमी होना, मौसम में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है तो इसका एक रीजन यह भी है। इन सभी रीजन से क्या होते हैं कि कीट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और उससे दवाओं का असर भी कम हो जाता है
0: जी। डॉक्टर प्रीति, आपने जैव कीटनाशकों के महत्व के बारे में तो बताया, हमारे किसान श्रोता यह जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाने वाले प्रमुख जैव कीटनाशक कौन कौन से हैं तथा किसान उन्हें अपने घर या खेत पर किस प्रकार तैयार कर सकते।
1: जी बिल्कुल। देखिए, प्राकृतिक रूप से तैयार जो जैविक कीटनाशक होते हैं उनमें बीजामृत जिसे कि सीड ट्रीटमेंट सॉल्यूशन कहते हैं
0: जी,
1: जीवामृत जिसे कि लिक्विड माइक्रोबियल बूस्टर भी कहते हैं, इसके अलावे घन जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, दसपर्णी अर्क तथा नीम आधारित उत्पाद जैसे नीमामृत प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म जीवों पर आधारित जैव कीटनाशकों में बैसिलस थुरिंजेंसिस जिसे बीटी कहते हैं, ब्यूवेरिया बेसियाना, मेटारिजियम एनिसोपोल तथा वर्टिसिलियम लेकानी जैसे जैव एजेंट भी महत्वपूर्ण हैं। और ये जो जीवामृत और बीजामृत की मैंने जो बात की, तो ये पौधे को मजबूत भी बनाते हैं, कीटों को तो नियंत्रित करते ही हैं और साथ ही पौधों को भी मजबूत बनाते हैं
0: जी। तो अभी आपने बीजामृत की चर्चा की, तो यह बीजामृत कैसे बनता है, वे हमारे किसान भाइयों को बताएं।
1: देखिए किसान भाइयों और बहनों, बीजामृत को आप बीज का पहला टीका या सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं
0: जी।
1: जैसे हम देखते हैं ना कि माता पिता अपने बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए क्या करते हैं, समय पर टीका लगवाते हैं, तो वैसे ही बीज को खेत में बोने से पहले बीजामृत से उपचार किया जाता है। तो इससे भी क्या होता है कि बीज को शुरुआती रोग कीट जो होते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, उनसे बचाव मिलता है और अंकुरण भी अच्छा होता है। तो मैं आपको इसे बनाने का तरीका बताती हूँ कि इसके लिए हमें क्या करना है कि 5 किलोग्राम गाय का ताज़ा गोबर लेना है, साथ ही 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम चूना और 1 मुट्ठी खेत की मिट्टी ले लें, फिर साथ ही 20 लीटर पानी भी ले लें। सबसे पहले पानी को किसी प्लास्टिक के ड्रम या बाल्टी में लें, अब उसमें गोबर को अच्छी तरह घोल दें ताकि गुठली ना रहे। इसके बाद गौमूत्र मिलाएं और साथ ही उसमें थोड़ा चूना भी डालें। अंत में खेत की मिट्टी डालकर पूरे घोल को लकड़ी की डंडी से अच्छी तरह से मिला लें, फिर इसे छाया में 24 घंटे ढक कर रख दें और बुआई से पहले बीज को इस घोल में 10 मिनट तक डुबो कर रखें। इसकी मात्रा है 5 से 10 लीटर प्रति क्विंटल बीज, इसी हिसाब से आप सीड को ट्रीट करें। फिर बीज को छाया में सुखाकर उसके बाद इसकी बुआई करें। और इससे आपको बहुत तरह के फ़ायदे मिलेंगे, जैसे सब्जी फसलों में जैसे कि टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी और गोभी की बुआई या नर्सरी तैयार करते समय बीजामृत से आप बीज उपचार करें। इससे आपको अंकुरण अच्छा मिलेगा और शुरुआती जो फफूंद रोग होते हैं, कीट लगते हैं, वो भी कम होते हैं। साथ ही पौधे मजबूत बनते हैं और आगे चलकर कीट रोग का प्रकोप भी कम दिखाई देगा। फलदार फसलों में जब नर्सरी के पौधे तैयार किए जाते हैं या पौधरोपण किया जाता है, तब बीजामृत या उसके घोल से जड़ों का उपचार करने पर पौधे जल्दी स्थापित होते हैं और जड़ सड़न जैसी समस्याएं कम होती है।
0: जी, तो अभी आपने बीजामृत के बारे में बताया, अब आगे हमारे किसान भाइयों को जीवामृत के बारे में बताएं कि वे कैसे बनता है।
1: जी, किसान भाइयों और बहनों, देखिए, जीवामृत को लिक्विड माइक्रोबियल बूस्टर भी कहते हैं और आप जीवामृत को मिट्टी का पौष्टिक सूप या टॉनिक कह सकते हैं। जैसे हम ताकत बढ़ाने के लिए पौष्टिक भोजन खाते हैं, वैसे ही मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव जीवामृत से सक्रिय होकर पौधों को पोषण उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। इसके लिए आप 10 किलोग्राम गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलोग्राम गुड़, 2 किलोग्राम बेसन या दाल का आटा, साथ ही एक मुट्ठी खेत की मिट्टी, 200 लीटर पानी, ड्रम में पानी लें और उसमें गोबर अच्छी तरह से घोल दें। अब गौमूत्र मिलाएं, इसके बाद गुड़ और बेसन डालकर अच्छे से मिलाएं ताकि सब अच्छी तरह घुल जाए। अंत में मिट्टी डालें और लकड़ी से घोलें। ड्रम को ढककर छाया में 48 घंटे तक रखें तथा दिन में 2 से 3 बार लकड़ी की डंडी से अच्छी तरह हिलाएं। इसकी प्रयोग की मैं मात्रा बता देती हूँ। 10 से 20 लीटर जीवामृत को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ प्रयोग करें। इसे सिंचाई के पानी के साथ दिया जा सकता है अथवा पौधों की जड़ों के पास ड्रेंचिंग के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रयोग प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर करने पर इसका लाभ आपको अवश्य दिखाई देगा। सब्जी फसलों में नियमित रूप से जीवामृत के उपयोग से मिट्टी में जो लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी सक्रियता बढ़ती है, जिससे पौधों की वृद्धि तेज होती है, फूल एवं फल अधिक बनते हैं तथा पौधों की कीट एवं रोग सहन करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। फलदार वृक्षों जैसे आम, अमरूद एवं नींबू में जीवामृत को सिंचाई के साथ जड़ों के पास देने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है।
2: एखन हमरे मन जानकारी करत रही जव कीटनाशक द्वारा सब्जी और फल कर कीट प्रबंधन बतात रहे डॉक्टर प्रीति प्रिया और इका से बातचीत करत रहे कृष्ण जीवन पौराणिक।
3: तो दादा देखो, इकरे संगे हमरे कर खेती बाड़ी कर कार्यक्रम यही जगह सिरा है।
2: हाँ, तो सुनो या भाई बहन मन कहीं ना जा पाए, तुरंत हमरे मन घरनी सभा में लगातार कार्यक्रम हमरे कर चली। तो घरनी सभा में जे महिला मन है, ग्रामीण महिला मन है, उमन के स्वागत है और उमन ले जानकारी भी है।
3: तो आज खास ई दिन में हमरे मन गृहिणी दीदी बहन मन ले घरनी सभा करीला। तो कहल भी जाएला कि जोन घर गांव समाज में महिला मन सशक्त रहे ना, हुआ विकास हुए संभव हो जाएला।
2: एकदम नगद कहले शांति बहन, और बात अलग कि जहां महिला मन है जे घर में, इतना तो जाना थी कि हर घर में महिला मन ही कर ही योगदान अधिकतर रहेला सुबह से लेके शाम तक में। और जो छोट छुआ मन भी रहे ना, वो है माय कर संगे ही छुआ मन कर अधिकतर समय गुजरेला, है नी। स्कूल भी जाए ना छुआ मन, तो फिर आए के माय के पास ही, और माय ही उमन के तैयार करके स्कूल भी भेजे ना। यानी कि शुरुआत से ही छुआ मन के उमन के लगन और मेहनत कर बारे में उमन के जानकारी दिल जाए, उमन के आदत डलवाए चाहिए कि सिखाए चाहिए, ये सब मने माय मन कर काम जरूरी है।
3: और देखो दादा कि रावरे कहली कि स्कूल जाए से लेके घर आवे तक माय के ही खोजे ना, और देखो कि अगर हमरे मन भी अगर घर घुसीला तो सबसे पहले माय के ही खोजीला, अगर माय घर में नहीं रही तो घर सुना सुना बुझाएला। तो महिला मन कर हमरे मन बात करत ही, तो महिला मन के हर घर परिवार में सशक्त रहे है, जेकर से परिवार आगे बढ़ी, मजबूत बनी और जे भी काम हमरे मन ठाई नहीं सके कर पारब, काले की महिला मन ही घर के परिवार के चलाए ना। अगर उ मन शिक्षित नहीं रहब तो हमरे मन कर जे घर है उन्नी चले।
2: एकदम बात नगद कहली, लेकिन सवाल ये है कि घर में जब महिला मन है, माए मन है छुआ मन कर, तो

0: ओहे शुरुआत से ही उमन के पढ़े लिखे कर खेले कूदे कर आदत डालना चाहिए, काहे चाहे खेल कूद हो या पढ़ाई लिखाई में मेहनत तो जरूरी है। काहे आज कर तारीख में शॉर्टकट कर सफलता में कोई जगह नहीं है, इसलिए मेहनत करना सबसे जरूरी है। तो ये छोट समय से ही मेहनत करवाई चाहिए ताकि आगे अपन लक्ष्य के निर्धारित करके छुआ पढ़ सके ना और लक्ष्य के पाए सके ना। यह बात है काहे इकर ले और लक्ष्य पावे के लिए कोई कर शॉर्टकट नहीं, निरंतर मेहनत और करे है।
1: निरंतर मेहनत और धैर्य बनाए के चले के है।
0: हाँ।
1: धैर्य रखे है ना कि ये सोचे है कि आज हम कर दिली कल हमके सफलता मिली, उकर में संयम धैर्य बनाए के चले के है और अपन में सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़े के है।
0: कहे बहुत मन सोचे ना का कि अरे किस्मत में साथ दे तो इस लक्ष्य मिल जाए, किस्मत कर साथ उखे देवेला जे मन मेहनत करे ना और अपन लक्ष्य के निर्धारित करके आगे बढ़े कर कोशिश करे ना, वही मन के किस्मत भी साथ देवेला है नहीं।
1: हाँ दादा, और देखो कि आजकल के युवा मन है, पुरुष युवा मन अगर कोनो काम नहीं बने बनेला तो वो मन नशा की ओर अग्रसर हो जाए ना, तो वैसा नहीं करे है। अपन जे भी हताश है तनाव है उमन के दूर करे के लिए उमन बुरा संगति की ओर कदम बढ़ाए ना, तो वो काम नखे करे।
0: देखो गलत संगति में जाए के नखे मेहनत करे है और मेहनत कर अगर फल एक बार भी नहीं मिलेला तो उकर से सीख भी मिलेला, काहे कहल भी जाएला असफलता ही सफलता कर कुंजी है के।
1: हाँ।
0: है नहीं, तो उकर से घबराए के नहीं चाहिए लेकिन मेहनत जो है लगातार निरंतर हो चाहिए,
1: अपन में आत्मविश्वास के साथ ही अपन मेहनत के करेक है। आत्मविश्वास भी सबसे बड़ा कुंजी है।
0: आत्मविश्वास के साथ ही उमन मेहनत कर सके ना और अपन लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके ना, कहे आत्मविश्वास अगर नहीं रही तो उमन सकारात्मक काम नहीं कर सके ना, मेहनत नहीं कर सके ना, वही स्थिति में उमन कर सफलता भी दूर हो सकेला। सेले जितना भी सुनवाइया भाई बहन मन है छोट पर है उमन जरूर सोचो और करो कि सफलता के लिए मेहनत निरंतर होइक चाहिए, यह हमरे कर जीवन कर लक्ष्य है।
1: तो दादा हमरे मन रीझ रंग भी कटिक होइक चाहिए, तो नागपुरी लोकगीत है रूना देवी और संगी मन।

0: एखन हमरे बन सुनत रहे नागपुरी लोकगीत रूणा देवी और संगी मुनकर गावल गीत रहे। फिर कार्यक्रम में हमरे बन आगे बढ़ी ला और हमरे बन जानकारी करब कि डिजिटल शिक्षा आज कर आवश्यकता
1: अरे के बता है आंचल कुमारी।
0: चलो
2: ब्लैक बोर्ड हाथ में चौक के निशान अब भारी भरकम किताबों वाला वो बस्ता उन दिनों की बात ही कुछ और थी। लेकिन अब स्कूल और बस्ते थोड़े हल्के हो चुके हैं, साथ ही स्कूल का वो ब्लैक बोर्ड स्मार्ट बोर्ड बन चुका है। आज यानी साल 2026 में हमारी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। आज पढ़ाई सिर्फ चार दीवारों और एक क्लासरूम तक सीमित नहीं रह गई है। आधुनिक विकास ने पढ़ाई को ज्यादा आधुनिक गति दी है और यह आधुनिक गति आज अगर आपके हाथ में एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन है तो समझ लीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आपकी जेब में है। इसे ही हम कहते हैं डिजिटल शिक्षा। आज यह कोई लग्जरी शौक नहीं है, यह आज की सबसे बड़ी मजबूरी, जरूरत और मांग बन चुकी है। जरा सोचिए, कोडिंग, आर्टिफिशियल एजेंसी, डाटा साइंस जैसी चीजें जो आज के करियर के लिए सबसे जरूरी है, क्या उन्हें हम सिर्फ पुरानी कागजी किताबों से सीख सकते थे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें डिजिटल होना, डिजिटल शिक्षा को अपनाना और आज की सबसे बड़ी आवश्यकता को प्रोत्साहित करना जरूरी था। चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर क्या है डिजिटल शिक्षा। 21वीं सदी ज्ञान और तकनीक का युग है। आज के इस युग में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो डिजिटलाइज नहीं हुआ हो। चिकित्सा, व्यवसाय, मनोरंजन और प्रशासन के बाद जिस क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति आई है वह है शिक्षा। डिजिटल शिक्षा आज की आवश्यकता के रूप में उभर चुका है। परंपरागत शिक्षण की सीमाएं लांघकर शिक्षा अब स्क्रीन, इंटरनेट, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्टवेयर और डिजिटल टूल्स का उपयोग करके शिक्षार्थियों को ज्ञान प्रसार कर रहा है। या आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से शिक्षा प्राप्त करना। आज डिजिटल शिक्षा से विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन कक्षाओं में वीडियो, लेक्चर, ई बुक, सर्टिफिकेट जैसी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। यह पूरी तरह से इंटरैक्टिव प्रणाली है जिसमें एनिमेशन, ऑडियो, विजुअल्स, टूल्स, ग्राफिक, 3D मॉडल्स, वर्चुअल रियलिटी का उपयोग करके कठिन से कठिन विषयों को मनोरंजक और आसान बनाया जाता है। यह समय के साथ साथ सीमाओं से परे है। यह एक गतिशील शिक्षण पद्धति है। चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये डिजिटल शिक्षा हमारे जीवन को किस तरह से आसान बनाती है। इसके तीन सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण है एनी टाइम एनी वेयर लर्निंग, यानी आप देश के किसी भी कोने में, चाहे आप झारखंड के किसी छोटे गांव में हो, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में बैठे हों, किसी भी समय किसी भी वक्त आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से लेक्चर डिजिटल टूल्स के माध्यम से देख और पढ़ सकते हैं। दूसरा कारण, रटने से आज़ादी। पुरानी किताबों में लंबे

पैराग्राफ को याद करने के बजाय अब 3D एनिमेशन ग्राफिक और वीडियो की मदद से विज्ञान और गणित के मुश्किल से मुश्किल फॉर्मूले आप चुटकियों में समझ और सुलझा सकते हैं। तीसरा और सबसे जरूरी बात, यह जेब पर भारी नहीं है। बच्चों की पढ़ाई में लगने वाले महंगी कोचिंग फीस, हॉस्टल का खर्चा और रोज का आने जाने का किराया बचाता है। एक आम नागरिक बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों के भविष्य को खरीदता है। डिजिटल शिक्षा आम नागरिक के कंधे से यह बोझ हटाती है। बहुत से बेहतरीन कोर्स ऑनलाइन बिल्कुल मुफ्त या बहुत कम कीमतों पर उपलब्ध कराती है। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि डिजिटल शिक्षा ने ज्ञान का लोकतांत्रिकरण कर दिया है, यानी अब शिक्षा पर हर किसी का बराबर हक है। लेकिन आखिर क्या भारत में कहां से शुरू हुई है डिजिटल शिक्षा की नींव? डिजिटल शिक्षा का विकास मुख्य रूप से इंटरनेट क्रांति, सस्ते स्मार्टफोन और COVID-19 महामारी के दौरान हुआ तथा पारंपरिक ब्लैक बोर्ड शिक्षण से शुरू होकर आज AI संचालित वर्चुअल कक्षाओं तक का सफर कई महत्वपूर्ण चरणों में पूरा हुआ है। कंप्यूटर साक्षरता की शुरुआत 1990 में स्कूल और कॉलेज में कंप्यूटर को एक विषय के रूप में शामिल करने से हुई, जिससे शुरुआत में कंप्यूटर साक्षरता कहा गया। इस दशक के अंत में इंटरनेट के आने से बुनियादी ऑनलाइन कोर्स और डिजिटल अध्ययन सामग्री लर्निंग का जन्म हुआ। 2000 से 2010 में मल्टीमीडिया और LMS का दौर कक्षाओं में केवल किताबों की जगह प्रोजेक्टर, मल्टीमीडिया, CD और स्मार्ट बोर्ड के उपयोग के बाद शुरू हुआ। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आने से शिक्षक प्रणाली को ऑनलाइन व्यवस्थित करने और टेस्ट लेने में गति प्रदान हुई। 2010 के बाद उच्च शिक्षा के लिए मैसविक ओपन ऑनलाइन कोर्स जैसे वैश्विक प्लेटफॉर्म में घर बैठे बड़ी यूनिवर्सिटी के कोर्स उपलब्ध कराए गए। साथ ही बायजू, अनअकैडमिक, कोर्सेयर जैसी कंपनियों ने शिक्षा को आकर्षक और विजुअल बनाया। वर्ष 2017-18 के राष्ट्रीय नमूने सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार केवल 52% शहरी और 15% ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट की सुविधा मौजूद थी और केवल 44 शहरी एवं 11% ग्रामीण व्यक्तियों ने पिछले 30 दिनों में इंटरनेट का उपयोग किया था। यह स्पष्ट रूप से इस बात की ओर संकेत करता है कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के संचालन में स्वाभाविक रूप से कम 2/3 बच्चे डिजिटल शिक्षा से वंचित थे। जब भी हमारे दिमाग में डिजिटल शिक्षा की बात आती है तो इसका अर्थ इस बात की ओर अधिक जाता है कि शिक्षकों के साथ सीधे वीडियो कॉल के माध्यम से संवाद या ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से एक शिक्षक की व्याख्या करना। दोनों कार्यों के लिए एक स्थिर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता थी। इंटरनेट की पर्याप्त गति के अभाव से डिजिटल शिक्षा का उद्देश्य सफल नहीं हो रहा था। COVID-19 महामारी के दौरान सभी शिक्षण संस्थाओं के बंद करने के आदेश पर बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा और यह देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर इतने लंबे समय तक स्कूल कॉलेज कैसे बंद रहे। तभी शिक्षा को निरंतर रखने के लिए डिजिटल शिक्षा एक तत्कालीन आवश्यकता में बदलकर वैश्विक समाधान बन गया। इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाकर तथा पारंपरिक ब्लैक बोर्ड शिक्षण को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्मार्टफोन, इंटरनेट आधारित संसाधनों में बदल दिया गया। COVID-19 के दौरान शिक्षा की आवश्यकता को समझते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उदय हुआ। शिक्षा के लिए जूम और गूगल मीट जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस टूल्स का, गूगल क्लासरूम और कैनवस जैसी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। शिक्षण सामग्री का डिजिटलाइजेशन, ई-बुक, यूट्यूब वीडियो, इंटरैक्टिव क्विज का चलन तेजी से बढ़ा। छात्र अब कहीं से भी कभी भी पढ़ सकते हैं। डिजिटल शिक्षा के विकास में शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने के लिए समय और स्थान की सीमाओं को समाप्त करने और डिजिटल शिक्षा को विभिन्न शैक्षिक संस्थानों तक पहुंचाने में जरूरत और सहायता प्रदान की। COVID-19 के दौरान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 को गति मिली। इसका उद्देश्य भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और एक महान अर्थव्यवस्था बनाना है। डिजिटल शिक्षा को एक प्रोत्साहित करने के लिए मई 2020 में PM विद्या योजना चलाई गई, जिसका उद्देश्य एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म था। साथ ही दीक्षा, स्वयं प्रभा, पाठशाला, कम्युनिटी रेडियो ब्रॉडकास्ट, विद्यादान जैसी कई सारी योजनाएं भी डिजिटल शिक्षा के लिए चलाई गई। डिजिटल शिक्षा को महामारी के दौरान आज की आवश्यकता बनने और शिक्षा को निरंतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इंटरनेट की कमी, डिजिटल उपकरणों की अनुपलब्धता और डिजिटल साक्षरता जैसी चुनौतियां भी सामने आई, फिर भी इन पहलों ने भारत को डिजिटल शिक्षा को नई दिशा प्रदान की। डिजिटल शिक्षा ने शिक्षण और अधिगमन की प्रक्रिया को अधिक सरल, प्रभावी और सुलभ बनाया। चलिए इनके लाभों पर चर्चा करते हैं। शिक्षा प्राप्त करने में सुविधाजनक है। विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार घर या किसी भी स्थान पर पढ़ाई कर सकते हैं।
शिक्षा की पहुंच को आसान बनाता है। दूर दराज क्षेत्रों में

0: छात्र भी इंटरनेट के माध्यम से गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। समय की बचत करता है, विद्यालय या कोचिंग तक आने जाने वाला समय बचता है। कम खर्चीला शिक्षा पद्धति है, ई बुक, ऑनलाइन नोट्स और वीडियो लेक्चर कम लागत एवं निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। स्वयं की गति से सीखने की सुविधा, विद्यार्थी अपनी समझ के अनुसार पाठ को बार बार पढ़कर देखकर सीख सकते हैं। तकनीकी ज्ञान का विकास को बढ़ावा देता है, डिजिटल उपकरणों के उपयोग से विद्यार्थी तकनीकी कौशल में वृद्धि होती है। तत्काल मूल्यांकन, ऑनलाइन परीक्षा और क्यूज के माध्यम से तुरंत परिणाम और फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं। विविध अध्ययन सामग्री की उपलब्धता, इंटरनेट पर विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकें, शोध पत्र और शैक्षिक संस्थान, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होने के कारण जितना लाभ हमें डिजिटल शिक्षा से है, वहीं कहीं थोड़ी बहुत डिजिटल शिक्षा की चुनौतियां भी है। आइए उन पर भी चर्चा करते हैं। डिजिटल शिक्षा विभाजन, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की कमी के कारण सभी विद्यार्थियों को समान अवसर नहीं मिल पाता है। तकनीकी समस्याएं, कम नेटवर्क, बिजली समस्या तथा उपकरणों की खरीदी पढ़ाई में बाधा बनती है। ध्यान भटकाने की संभावना, मोबाइल और इंटरनेट के कारण विद्यार्थी सोशल मीडिया या अन्य मनोरंजक साधकों की ओर आकर्षित होते हैं। प्रत्येक संवाद का अभाव, ऑनलाइन शिक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच आमने सामने का संपर्क सीमित हो जाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहने से आंखों में तनाव, सिर दर्द और शारीरिक निष्क्रिय जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब यह भी जानते हैं कि आगे चलकर डिजिटल शिक्षा का क्या भविष्य होगा। आने वाले समय में डिजिटल शिक्षा का महत्व और अधिक बढ़ने की संभावना है। AI, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी तकनीकों के उपयोग से शिक्षा अधिक प्रभावी और भावनात्मक बनेगी। पारंपरिक शिक्षा और डिजिटल शिक्षा के समन्वय से ब्लेंडिंग लर्निंग का विकास होगा, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। भारत जैसे विशाल देश में जहां सभी का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचना चुनौतीपूर्ण है, वहां डिजिटल शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यदि इंटरनेट सुविधा का विस्तार किया जाए और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए, तो शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन संभव है। अन्यथा यह भी कहा जा सकता है कि डिजिटल शिक्षा आधुनिक युग की आवश्यकता है। यह शिक्षा को अधिक सुलभ, सुविधाजनक और प्रभावी बनाता है। हालांकि इसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन उचित योजना और संसाधनों के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। डिजिटल शिक्षा न केवल विद्यार्थियों के ज्ञान का विस्तार करती है, बल्कि उन्हें तकनीक रूप से समक्ष बनाकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार करती है। इसलिए डिजिटल शिक्षा को अपनाना और उसका सही उपयोग करना समय की मांग है। डिजिटल शिक्षा ज्ञान के नए द्वार खोलती है और शिक्षा को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनती है।
1: एखन जानकारी करत रही डिजिटल शिक्षा आज कर आवश्यकता बतात रहे आंचल कुमारी। चलू बाँचल समय में एक खोटा लोकगीत सुनब अनिता कुमारी और संगी मुनकर गावल गीत के।

0: एखन सुनत रही हमारे मन खोटा लोकगीत अनिता कुमारी और संगी मनकर गावल गीत रहे।
1: तो दादा इकरे संगे हमरे कर समय भी सिरात है तो बता देवे चाहिला कि कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लाल कर।
0: तो चलिला
1: जोहार।

इस समय आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी और हमारी दुनिया, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 262 चयनित अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज साहिबगंज में कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने कोडरमा में निर्माणाधीन स्टेशन भवन का किया जायजा। कोडरमा बरकाकाना रेलखंड के दोहरीकरण की स्वीकृति की दी जानकारी। राज्य में मॉनसून की रफ्तार धीमी, 24 जून तक 58% कम बारिश। राजधानी रांची में अब तक औसत से 13% कम हुई वर्षा। और रांची रेल मंडल खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने खेल बुनियादी ढांचे का कर रहा है विस्तार। रेलवे कॉलोनी और आसपास की स्लम बस्तियों के प्रतिभाशाली बच्चों को दिया जा रहा है निःशुल्क प्रशिक्षण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस विशेष समारोह में कुल 262 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कदम से राज्य के चिकित्सा प्रबंधन और ढांचागत व्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। आज झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई शुरुआत हुई है। डॉक्टरों के साथ साथ हॉस्पिटल मैनेजर्स और फाइनेंस मैनेजर्स की नियुक्ति से राज्य के अस्पतालों की कार्यप्रणाली को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
2: आज लगभग 262 लोग नियुक्त हुए हैं और इस बात को जरूर जहन में रखिएगा, जिस काम के लिए हमें तनख्वाह मिलती है उसको हम ईमानदारी पूर्वक निभाने का हम प्रयास करें। मैं नहीं कहता किसी भी व्यक्ति से गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम गलतियां हो। सरकार आपसे काफी उम्मीद के साथ और जिम्मेवारी के साथ चलने को तैयार है।
1: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज साहिबगंज के बरहड़वा और गुड्डा के आदिवासी बहुल सुंदर पहाड़ी प्रखंड में मान्यता प्राप्त दलों के BLA-2 प्रशिक्षण का निरीक्षण करते हुए कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंड में रह रहे विदेशी नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के हकदार नहीं है और एनुमरेशन फॉर्म पर नागरिकता की गलत घोषणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत दंडनीय अपराध है। के रवि कुमार ने बताया कि प्रारूप सूची में एब्सेंट, शिफ्टेड,

0: डेथ, डुप्लीकेट और रिफ्यूज टू साइन श्रेणी के मतदाता शामिल नहीं होंगे। वहीं एएसडीडी सूची 5 अगस्त 2026 को प्रारूप प्रकाशन के दौरान दलों को उपलब्ध कराई जाएगी और सभी मतदान केंद्रों पर प्रकाशित होगी।
1: संविधान आर्टिकल 326 में क्लियर दिया हुआ है, आपका भारत का नागरिक 18 उम्र हो चुका है, एक पोलिंग स्टेशन में रहेगा, मतलब उसका नाम रहेगी। बाकी कोई आदमी बाहर का आदमी यहाँ रहता है, मतलब विदेश का कोई आदमी रहता है, लीगली लीगली रहता है, उसका बारे में कोई मतलब नहीं, उनका नाम सूची में नहीं आया।
0: पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने आज एक दिवसीय दौरे के क्रम में कोडरमा में निर्माणाधीन स्टेशन भवन का जायजा लिया। स्पेशल सैलून बंधुआ स्टेशन से लेकर कोडरमा स्टेशन तक का जीएम ने इंस्पेक्शन किया। निरीक्षण के बाद जीएम ने रेलवे गेस्ट हाउस में रेल अधिकारियों के साथ बैठक भी की और यात्री सुविधाओं के बारे में कहा कि कोडरमा स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने धनबाद रेल मंडल में कई तरह के विकास कार्यों के बारे में बताया कि तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण प्रगति पर है। कोडरमा बरकाकाना रेलखंड के दोहरीकरण की भी स्वीकृति मिल गई है।
2: काफी एडवांस स्टेज में है स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण। कोडरमा से बरका की डबलिंग भी जो है अब स्वीकृत हो गई है, तो उसपे भी अब कार्य प्रारंभ होगा। इस तरह के बहुत सारे विकास कार्य हैं, सब एक साथ चल रहे हैं और आने वाले समय में जो है वो उपलब्ध भी हो जाएंगे देश की सेवा के लिए, यहाँ के यात्रियों के लिए।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में झारखंड को विकास की एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उन्होंने बताया कि अजमेर जयपुर रांची के बीच प्रस्तावित अमृत भारत वर्जन 3.0 ट्रेन से राज्य की रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित तथा सुविधाजनक यात्रा सुविधा मिलेगी। झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति के सभापति सरयू राय की अध्यक्षता में आज रामगढ़ परिसदन में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सभापति श्री राय ने सूचना का अधिकार अधिनियम, सेवा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा रोजगार का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन महत्वपूर्ण अधिनियमों का उद्देश्य आम नागरिकों को सेवाओं की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करना है। बोकारो जिले में पुलिस तथा झारखंड अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने बोकारो स्टील सिटी स्थित कोचिंग संस्थानों का फायर ऑडिट सह औचक निरीक्षण किया। कोचिंग संस्थानों के संचालकों को अग्नि सुरक्षा मानकों का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने, अग्निशमन उपकरणों को कार्यशील अवस्था में रखने तथा आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां बनाए रखने का निर्देश दिया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कर्नाटक से मजदूरी करने गए झारखंड के 18 मजदूरों को प्रशासन और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में मुक्त कराया गया। इन मजदूरों को पिछले कई महीनों से जबरन काम कराया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसके खिलाफ बंधुआ मजदूरी और श्रम कानून के उल्लंघन की धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
3: कोई अनजान व्यक्ति के साथ ये चले गए कर्नाटक, तो वहाँ एक बंधुआ मजदूर के तरह इनको रखा गया। वहाँ ये 1-1.5 साल तक काम किए और वहाँ का जो ऑनर था वो इन लोगों को पैसा वगैरह कुछ देता नहीं था, सिर्फ खाने पीने का देता था। तो फिर गांव वाले ने मैंने प्रशासन से वहाँ फिर संपर्क किया, बाद में फिर रेस्क्यू किया गया।
0: पश्चिमी सिंहभूम जिले के किरीबिरू थाना क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने आज सारंडा के टाटीबा गांव के पास जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में संचालित 3 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान भारी मात्रा में जावा महुआ तथा शराब निर्माण में प्रयुक्त उपकरणों को नष्ट किया गया। थाना प्रभारी रोहित कुमार ने बताया कि फरार हुए शराब कारोबारियों की पहचान कर ली गई है। मुहर्रम के मौके पर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर बोकारो जिले के सभी थानों को विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में माराफारी थाना क्षेत्र के जुलूस मार्गों का सत्यापन ड्रोन के माध्यम से करते हुए ऊंची ऊंची इमारतों का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा बोकारो जिले के सभी मुहर्रम अखाड़ों जुलूस मार्ग का सत्यापन सूक्ष्मता से करते हुए बिजली के तार, लटके हुए पेड़, रोड पर व्यवधान डालने वाले अवरोध का भौतिक सत्यापन भी किया जा रहा है। मौसम। रांची में अब तक लगभग 119 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य वर्षा के मुकाबले 13% कम है। सबसे चिंताजनक स्थिति गढ़वा और चतरा जिले की बताई जा रही है, जहां सामान्य से काफी कम वर्षा हुई है। रांची रेल मंडल खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने खेल बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है, ताकि रेलवे कॉलोनी और आसपास की स्लम बस्तियों के प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके। वर्तमान में क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 50 से अधिक बच्चे अनुभवी प्रशिक्षकों और रेलवे खिलाड़ियों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 262 चयनित अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज साहिबगंज में कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने कोडरमा में निर्माणाधीन स्टेशन भवन का लिया जायजा। कोडरमा बरकाकाना रेलखंड के दोहरीकरण की स्वीकृति की दी जानकारी। राज्य में मॉनसून की रफ्तार धीमी, 24 जून तक 58% कम बारिश। राजधानी रांची में अब तक औसत से 13% कम हुई बारिश। और रांची रेल मंडल खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने खेल बुनियादी ढांचे का कर रहा है विस्तार। रेलवे कॉलोनी और आसपास की स्लम बस्तियों के प्रतिभाशाली बच्चों को दिया जा रहा है निःशुल्क प्रशिक्षण। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चतरा संवाददाता।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर चतरा जिले में सामूहिक योग अभ्यास के जरिए स्वस्थ शरीर, शांत मन और सशक्त जीवन का संदेश दिया गया। मौके पर सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि
2: आदरणीय मोदी जी ने अपने प्रभाव आभा मंडल से पूरे विश्व को इस योग दिवस से अवगत कराया और आज पूरे विश्व में योगा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हर व्यक्ति को चाहिए अपने स्वास्थ्य, किसी भी देश के सफलता का पहला मूल मंत्र होता है स्वास्थ्य, वहाँ के नागरिक रहे, इसलिए हम योग करें स्वस्थ रहें। उन्होंने नारा दिया, योग करो स्वस्थ रहो देश सबल बनाओ।
1: बीते रविवार चतरा जिले के इकलौते परीक्षा केंद्र पर नीट की परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गई। परीक्षा में कुल 407 परीक्षार्थी शामिल हुए।

0: जिनकी आस्था है वही लोग इस मंदिर को चलाएंगे। सरकार इतना ही करे कि एक समिति बनवा दे यहाँ आस्थावान लोगों की, अपने सरकार ले लेती है मंदिर को धार्मिक न्यास बोर्ड के माध्यम से, ये उचित नहीं है। धार्मिक न्यास बोर्ड सबका देख रेख करे, कहाँ उचित हो रहा है अनुचित हो रहा है इसको देखे, मगर प्रबंधन संभालने की जिम्मेदारी स्थानीय आस्थावान लोगों की होनी चाहिए।
1: बोकारो जोन के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने चतरा में समीक्षा बैठक के दौरान अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और पुलिस जनता के बीच बेहतर समन्वय को लेकर आवश्यक निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि
2: चतरा पहुंचने का जो पहला उद्देश्य था वो था कि अपने पदाधिकारियों के साथ बैठकर एक मीटिंग करना। हमारे पदाधिकारी बहुत अभी नए ज्वाइन किए हैं, तो अपने पदाधिकारियों से एज ए जोनल आईजी हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, तो यहाँ मैं जो अपने हमारे पदाधिकारी हैं जिले के सारे वरीय पदाधिकारी हैं, थाना प्रभारी हैं, तो कुछ बिंदुओं पर बात कर रहा हूँ। वह है, पहला तो है कि जो हमारे थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों का है वो व्यवहार अच्छा हो, यानी हमारे थाने में जो पब्लिक आती है उनके साथ उनका व्यवहार कैसा हो, जो थाने में रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं FIR दर्ज किया जाए, जो पदाधिकारी या पुलिसकर्मी हैं उनका टर्नआउट जो है वो काफी अच्छा हो।
1: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत चतरा जिले में 28, 29 और 30 जून को 5 वर्ष उम्र तक के बच्चों को पोलियो का ड्रॉप दिया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम और ट्रांजिट टीमों का गठन किया गया है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा।
3: अभी आप सुन रहे थे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

मीडियम वेव 540.4 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा। आज का यह कार्यक्रम मुंडारी भाषा में है।

0: आदिवासी आखड़ा कार्यक्रम अयम तन सोबेन हागा मिसिको अन इंगा आपु ओड़ो सोंगे को अन बिरसा पूर्ति ओड़ो
1: अन सिमेला कुमारी ताकिन साते
0: जोआर
1: जोआर
0: तीसरी या कार्यक्रम रे चर्चाबु अयुमिया फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इटका दो नशा से दूर हैं तोबे ना दो सीधा फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक विषय रे बु चर्चाया फास्ट फूड मेल्ले रे अबु या मुंडे जगर ते सीधा ते इसीन तेरकन जोमिया को चा सिकिड़ा गे मीन गाड़ी के रेगे तैयार ओलिकन जोमिया को ओकुना को तिसिंगपा होरा चा सांडका जपा ठेला ओड़ो ओ हुपुड़ी होटल कोरे लेन नामोगा इनरा आ स्वान सिबिल ते जपा ते सेन पारम जत कुआ मोचारे उली दागे को उदिया ना आ जुगरेन दंगड़ा दंगड़ी को इनकन दुकान ता आ कोरे बुर्दुलु को लिका को जुरुगड़ी एकन तैना इनकु बारिका मेंदो ना आ सोबेन निकन कुबु जोमतना इट अजोमिया कुआते संगी गुनुआ कनरियो वो किरिंग दुकु जट गया
1: हे ने लिकाते निमिर गपा इनकन जोमनु कुगे अबु इसुबु सुकुगतना ना आते निया काबु आहुम मुंडी काबु जा मुंडी ता ची फास्ट फूड लेकन जो मैं आकोरे काट हाउ का लेकन जिनिस चा लोबो को मिसा कना इन लिका बिसीयकन जिनिस को जोम किया ते होड़मो काबू बगड़ाओ गिड़ी जिदा

इस समय आप सुन रहे थे कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा। आज का यह कार्यक्रम मुंडारी भाषा में था। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा FM 102.5 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

0: करती हूँ कार्यक्रम हमारी बेटियाँ में। आप हमारा पता जरूर लिख लें। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1100001। और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
1: तो दोस्तों, आइए हम आपको लेके चलते हैं एक कहानी की तरफ, जो कि है एक लड़की के बारे में। वो लड़की गौरी, जो बचपन से अपने सपने संजोती है, शादी के सपने। तो आइए हम जानते हैं उसके सपनों की हकीकत के बारे में। शादी, हाँ दोस्तों, शादी लड़की का सपना होता है। वो बचपन से ही अपने राजकुमार के सपने सजाती है। छोटी उम्र में ही वह गुड्डे गुड़ियों की शादी कराती है। ये सपना हकीकत में देखने लगती है। कहते हैं हर लड़की का एक नहीं बल्कि दो परिवार होता है, पहला जहाँ वो पैदा होती है और दूसरा जहाँ उसकी शादी होती है। ये कहानी भी एक ऐसी ही लड़की गौरी की कहानी है, जो शादी के सपने सजा रही थी। पढ़ाई लिखाई खत्म होने पर गौरी के माँ बाप उसके लिए एक लड़की की तलाश में लग गए। वो लड़का जो उसका हमसफर बन सके। गौरी बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की थी।

0: सॉरी। अब देख, जब हम तेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं, जो कि हमारी जिम्मेदारी है, पर तू भी बता दे तुझे कैसा लड़का चाहिए।
1: हाँ बेटा देख, हम तो चाहते हैं लड़का खानदानी हो, पढ़ा लिखा हो और घर में इकलौता हो, ताकि तुझे किसी चीज की कभी कोई कमी ना हो। तू रानी बन के रहे बेटा, रानी।
2: नहीं नहीं पिताजी, मुझे अमीरी गरीबी नहीं देखना, मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे अपनी कमाई में भी खुश रखे और हम छोटे से घर में एक साथ अपने सुख दुख बांट सके, और कुछ नहीं चाहिए।
0: अरे तू बावली हो गई है क्या गौरी? ये सब तो सिनेमा की बातें हैं जो बड़े पर्दे पर ही अच्छी लगती हैं। आज के जमाने में पैसा ही खुशियों को खरीदता है। अब बस हमें जैसा लड़का ढूंढना है, हम तेरे लिए ढूंढ रहे हैं, तू चिंता मत कर।
3: ये सच है कि हर माता पिता अपनी बेटी के लिए एक आलीशान ससुराल चाहते हैं, जहां वो रानी बन के रहे। पर क्या पैसा प्यार से ज्यादा कीमती होता है?
2: अरे अंकल आप, नमस्ते अंकल, आइए बैठिए, मैं पिताजी को बुलाकर लाती हूँ। पिताजी

0: आया बेटे। अरे रमेश, कैसे आना हुआ तुम्हारा? बताओ, कोई मेरे लायक काम है तो आओ बैठो।
1: अरे भाई साहब, मुझे पता चला कि आप अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको एक लड़के के बारे में बता सकता हूँ?
0: हाँ, मगर हम ऐसे लड़के की तलाश में हैं जो घर में इकलौता रहे और सरकारी नौकरी भी करता हूँ। बाकी हमारी कोई और इच्छा नहीं है।
1: हाँ हाँ, आप चिंता ना करें, बिल्कुल यही खूबियां हैं। अगर आप कहें तो मिला दूं उससे।
2: और रमेश गौरी के पिता से उस लड़के को और उसके परिवार को मिलवाता है। गौरी और उस लड़के दिनेश की शादी हफ्ते भर में ही हो जाती है, शादी के कुछ ही दिनों बाद।
3: अरे गौरी, तुम इतनी रात तक क्यों जग रही हो? देखो, मैं तो अपने दफ्तर से देर से आता हूँ, तुम मेरा इंतजार मत किया करो, खाना बना के खा के सो जाया करो।
2: शादी के बाद जो प्यार एक लड़की अपने पति से चाहती है, वो प्यार गौरी को नहीं मिल पाता। और थोड़े समय बाद तो दिनेश पूरे पूरे दिन घर नहीं आता था और रात को देर से शराब पीकर घर में घुसता था।
4: आप आज शराब पीकर आए हैं? आपको पता है ना मुझे आपकी कितनी चिंता होती है। आप देर से आते हैं और आज तो आपने शराब भी पी ली। आप शराब मत पिया कीजिए।
3: तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? रुक, मैं तुझे बताता हूँ।
4: अरे मत मारो मुझे, मेरे बाल, प्लीज मत मारो।
2: दिनेश गौरी को नशे में खूब मारता है और गौरी रोती है, चिल्लाती है, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। सुबह उठकर गौरी दिनेश की माता को रात के बारे में बताती है।
5: अच्छा बहू, तू मुझे ये सब बता रही है? अगर ये समय तू काम में लगाती तो तेरे लिए ज्यादा अच्छा होता। मुझे तो पता है मेरे बेटे का शौक है पीना, और उससे तू जबान लड़ाएगी तो गुस्सा ही करेगा ना, हाथ ही उठाएगा ना, बड़ी भोली बनती फिरती है घर में।
2: गौरी बहुत निराश हो जाती है और ये सोचकर कि उसके माता पिता भी परेशान होंगे, वो उन्हें भी नहीं बताती। पर हाँ, दिनेश अब अपनी हदों से आगे बढ़ गया था। वो रोज देर रात से शराब पीकर आता और गौरी को जानवरों की तरह मारता था। अब तो जैसे गौरी टूट ही चुकी थी। समय जरूर बीत गया था, पर हाँ, परिस्थितियां अभी भी बदली नहीं थी। एक दिन गौरी की पुरानी सहेली उसे बाजार में मिलती है।
6: अरे गौरी, तू कैसी है?
4: अरे प्रिया, मैं अच्छी हूँ, तू सुना?
6: मैं भी अच्छी हूँ। मुझे माफ करना यार, तेरी शादी में नहीं आ पाई, कहीं बाहर गई हुई थी परीक्षा देने को।
4: अच्छा,
6: पर तू अब ये बता, जीजू कैसे हैं?
4: हाँ ठीक है वो।
6: और सुना है तेरा नया ससुराल, वो तो बहुत ही बड़ा है।
4: हाँ,
6: काफी पैसे वाले लोग लगते हैं।
4: हाँ वो तो है, लेकिन
6: तो तेरी शादी काफी अमीर खानदान में हुई है।
4: तू वो सब छोड़, लेकिन मैं समझ सकती हूँ यार, तू क्यों नहीं आई होगी, इसके पीछे जरूरी कोई काम होगा। चल चल, अब मैं घर जाती हूँ, मुझे बहुत काम है, अब हम कहीं और मिलेंगे।
6: अरे रुक तो सही, क्या बात है, तेरे चेहरे पे ऐसी उदासी क्यों छाई हुई है? मैं तो तुझे बचपन से जानती हूँ, इतनी उदास पहले तो कभी नहीं रहती थी। तू लगता है मुझसे कुछ छुपा रही है। देख, मैं तेरी सहेली हूँ, मैं तेरे को बचपन से जानती हूँ। हंसते रहने वाली लड़की कभी उदास चेहरे में ऐसे अच्छी नहीं लगती। बता क्या बात है?
2: और गौरी रोते रोते अपनी सारी परिस्थितियों का बयान प्रिया को करती है।
6: देख गौरी, तू रो मत और कमजोर मत पड़, क्योंकि लड़की व पत्नी को मारना शादी के बाद कानूनी जुर्म है। हम इसके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं। मुझे तुझ पर गर्व है कि तूने हिम्मत रखी और तूने मुझे बताया, वरना आजकल की लड़कियां इतनी कमजोर पड़ जाती हैं कि ऐसी परिस्थितियों को देखकर अपनी जान दे देती हैं। पर क्या ये एक समस्या का हल है? नहीं, समस्याओं से लड़ना ही हिम्मत का काम होता है, ना कि उससे डर कर जान दे देना।
2: गौरी को प्रिया की बातें सुनकर और हिम्मत मिलती है और वो दोनों उसी समय दिनेश के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। गौरी छुपके से अपना सामान लेके अपने ससुराल से निकल जाती है और अपने माता पिता के पास पहुंचती है।
5: बेटी, तू यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना?
2: तभी गौरी सारी बातें और हुई घटना के बारे में अपने माता पिता को बताती है।
0: बेटी हमें माफ कर दे, हमने अपनी बच्ची के जीवन को बर्बाद कर दिया। काश हम पैसे और शान शौकत नहीं पर एक प्यार करने वाला लड़का अगर अपनी बेटी के लिए ढूंढते जैसा उसे चाहिए था। तूने हमारी वजह से कितना सहा, फिर भी यह सोचकर कि हम परेशान होंगे हमें पता तक लगने नहीं दिया। बेटा, आज तूने बता दिया कि लड़कियों में कितनी सहन शक्ति होती है और वो अपनी परिस्थितियों को अंत तक बदलने की कोशिश करती है और आखिर में अपनी बहादुरी से निर्णय लेती है।
2: हाँ, ये बिल्कुल सही है कि लड़कियों में सहन शक्ति व परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत होती है, पर ये भी सच है कि हर लड़की गौरी नहीं होती। पर बहुत से जीवन है जो रेल की पटरी पर लेटकर, आग में झुलसकर और पंखे पर लटककर अपने आप को खत्म कर देते हैं। पर क्या यही समस्याओं से बचने का हल है? नहीं, हम भी इतनी हिम्मत रखें कि हमारी बहादुरी और हमारा आत्मविश्वास ही हमें हमारी परिस्थितियों का हल बताए, ना कि जीवन का अंत। ये कहानी हर माता पिता के लिए एक प्रेरणा है कि हमारी बेटियां कीमती हैं, उन्हें पैसों की कीमत नहीं परंतु कीमती हाथों में दें। और हर लड़की अपने आप को मजबूत करे, क्योंकि परिस्थितियों से भागना ही उसका हल नहीं होता। अगर गौरी भी ऐसा करती तो शायद उसे बहादुर लड़की हम नहीं कहते, जिसने परिस्थितियों से भागकर नहीं पर उससे लड़कर उसका हल निकालना चाहा।
0: दोस्तों, ऐसी ही कई गौरियां हमारे समाज में यहां वहां विद्यमान है जो ऐसी कई परेशानियों से जूझ रही हैं। अगर आपके पास या आपके नजदीक में कोई अगर आपको ऐसा घटना मिले तो दोस्तों आप उसकी जिम्मेदारी लें और उसके उत्थान के लिए आप आगे बढ़ें।

0: अब श्रोताओं, समय है कि कुछ श्रोताओं के नाम आपके सामने हम रखें जो हमारे कार्यक्रम को लगातार सुनते हैं। और फूलग्राम जिला भिवानी से कुछ लिसनर्स हैं, कुछ श्रोतागण हैं जो हमारे कार्यक्रम को लगातार सुनते हैं और दूसरों को भी हमारे कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। तो इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: मुन्नीलाल प्रजापति, सुमित्रा देवी जी, जय भगवान प्रजापति जी, मट्रो रणबीर, रणबीर प्रजापति जी, गुड्डी संतोष जी, शंकर मास्टर और अनुप। ये हमारे श्रोता हैं जो फूलपुर ग्राम जिला भिवानी से हैं, हमारे कार्यक्रम को लगातार सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं हमारे कार्यक्रम में आपका नाम प्रसारित हो, या फिर आप कविता या फिर कहानी लिखने का शौक रखते हैं, तो हमें जरूर बताएं। तो आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद।
1: छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की,
2: मेरे प्रियो, अगर आपको आज के विषय में हमसे कुछ बातचीत करनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आप हमारा नंबर नोट करें। हमारा नंबर है
3: 9311504004। जी हाँ, 9311504004। हमारा पता है

कार्यक्रम हमारी बेड़ियां पोस्ट बॉक्स नंबर 6 नई दिल्ली 110001। हम आपको बता दें कि यह कार्यक्रम सप्ताह में 2 बार प्रसारित किया जाता है संध्या 7:45 पर हर बुधवार और रविवार। जी हाँ, संध्या 7:45 पर हर बुधवार और रविवार। तो आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे 545.45 बैंड पर। जी हाँ, 545.45 बैंड पर। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

इस समय आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम है रजनीगंधा। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं कुमार शानू को फिल्म तुमसे अच्छा कौन है में। शब्द रचना समीर की है, संगीत नदीम श्रवण का।

कार्यक्रम रजनीगंधा में आगे सुनते हैं। फिल्म दिल है कि मानता नहीं में अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू को गीत रचना समीर की है, संगीत नदीम श्रवण का।

क्षमा करेंगे, फिल्म धड़कन का गीत, गायक कलाकार नुसरत फतेह अली खां, शब्द रचना समीर की है, संगीत नदीम श्रवण का।

0: फिल्म धड़कन के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक संकट पर केंद्रित 16वीं ब्रिक्स

0: सुर्खियों
1: राजदूत हैं। ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा हुई और ब्रिक्स के जो भी सदस्य देश हैं उनके बीच में कैसे सहयोग बढ़ाया जाए और खास तौर से जो सुरक्षा के मसले हैं, जिस तरह से वैश्विक स्थितियां बदल रही हैं आज के जमाने में, ऐसे हर राष्ट्र के सामने सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है। तो ब्रिक्स के जितने भी देश हैं उनके बीच में किस तरह से सहयोग बढ़ाया जाए जिससे कि आतंकवाद पर काबू पाया जा सके, साइबर सुरक्षा की चुनौतियों का सामना किया जा सके और अन्य क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर जो भी समस्याएं हैं उनका निदान ढूंढा जा सके। तो सबसे पहले मैं त्रिपाठी जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ जो विचार विमर्श किया उसके मुख्य बिंदु आपके अनुसार क्या है?
2: देखिए, ये पहली बार था ब्रिक्स के इतिहास में जबकि ब्रिक्स के सुरक्षा अधिकारियों की बैठक सुरक्षा का आयाम बड़ा किया गया, विस्तार दिया गया, इसका स्कोप बढ़ा दिया गया। पहले जब सिक्योरिटी की बात होती थी तो सिर्फ यही होता था कि सिक्योरिटी का मतलब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, तो एक देश की सेना दूसरे पे हमला न करे, उनसे सुरक्षा, या ज्यादा से ज्यादा टेररिज्म से या टेररिस्ट एक्टिविटीज से जो की बाहर से स्पॉन्सर होती है, पोषित होती है बाहर से, उनके खिलाफ। लेकिन इस मीटिंग में इसका स्कोप बढ़ा करके काफी कुछ कर दिया है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी चैलेंज जो है जिस पे ये बहस की गई, जिस पे वार्तालाप किया गया, विचार विमर्श हुआ, वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज, ट्रेडिशनल पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के अलावा वो एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, सप्लाई चेन सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो अभी टेररिस्ट नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं उससे सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और क्लाइमेट इंड्यूस इंस्टेबिलिटी, मतलब जो मौसम में चेंज आ रहा है, पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उससे जो असुरक्षा की भावना या अस्थिरता की भावना आ रही है उससे। एनर्जी सिक्योरिटी सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सारे देशों के लिए, पूरे विश्व के लिए, खासतौर से जब ये दिखा कि ईरान और अमेरिका के युद्ध में ऊर्जा का आवागमन कितनी बुरी तरह से प्रभावित हुआ, ऊर्जा का आयात निर्यात, और उससे कई देशों में बहुत बड़ी समस्याएं हुई। तो एक तो ये, दूसरा फूड सिक्योरिटी। आज जहां कुछ तथाकथित धनी देश अधिक उत्पादन को सिर्फ दाम पे कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए दूध नालियों में बहा दिया जाता है या फसलें जला दी जाती है, वहीं दूसरी ओर अफ्रीका के कई देशों में और जगहों पे लोग अभी भी खाने बिना कई जगह भुखमरी की स्थिति। तो ये जो इम्बैलेंस है, जो असंतुलन है, इसको दूर करने का यही एक उपाय है कि हम फूड सिक्योरिटी के बारे में कुछ करें, सप्लाई चेन सिक्योरिटी, इन दोनों ही मामले में। फिर जो टेररिस्ट नेटवर्क अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर, UAV का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, इनके खिलाफ लड़ने की भी आवश्यकता है। साइबर सिक्योरिटी, जो साइबर स्पेस का गलत उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, साइबर स्पेस में आप जाके उनकी सीधी खबरें आप प्रसारित करा रहे हैं, जिससे और ऐसे भी कंटेंट आप करा रहे हैं ताकि लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज के प्रति ज्यादा झुकाव या रुझाव हो, ये सब चीजें इसमें अभी सम्मिलित की गई है एक बार, और इस तरह से इसका सिक्योरिटी चैलेंजेस का दायरा बढ़।
1: जी, यहाँ पर त्रिपाठी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जिक्र भी किया सप्लाई चेन का, क्योंकि जो भी युद्ध की स्थिति बनती है और जैसे आपने कहा भी ईरान और अमरीका का जो युद्ध हुआ वो हमारे सामने है कि किस तरह से जो देश किसी भी रूप में इस युद्ध में शामिल नहीं थे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, लेकिन सब पे प्रभाव पड़ा, हमारी जितनी भी सप्लाई थी ऊर्जा की वो सारी बाधित हो गई। तो जब हम ब्रिक्स के देशों के बीच में सहयोग

0: बात करते हैं, तो ये जो सप्लाई चेन की समस्या है उसका ब्रिक्स के सहयोग से किस तरह से उसका समाधान ढूंढा जा सकता है?
1: देखिए, मेरे विचार से ब्रिक्स के सहयोगी देशों या ब्रिक्स के सदस्य देशों को ये चाहिए कि वो ऐसा तरीका इनके ढूंढे कि अगर कहीं पर इंस्टेबिलिटी हो, अस्थिरता हो या फ्लैश पॉइंट हो जहाँ पर युद्ध होने की संभावना हो या युद्ध हो रहा हो, वहां से गुजरने वाले जहाजों या वहां से गुजरने वाली सप्लाई को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। देखिए, ये प्यास लगने पर कुआं खोदने वाली बात नहीं, ज्ञान युद्ध समाप्त हो गया है जहां तक हमें उम्मीद, लेकिन फिर भी हमें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए कि अगर भविष्य में कहीं कुछ ऐसा होता है तो हम अल्टरनेट सप्लाई चेन की व्यवस्था करें, ताकि ऐसा होते ही हम दूसरे रास्ते से सामान का, गुड्स का, एनर्जी का, ऊर्जा का आवागमन करा सकें।
0: इसके अलावा त्रिपाठी जी, जैसे सुरक्षा की हम बात करते हैं और सारे जो ब्रिक्स के सहयोगी देश हैं उनके बीच में आपसी तालमेल की बात करते हैं सुरक्षा को लेकर, लेकिन मैं फिर से ईरान को संदर्भ के रूप में प्रस्तुत करके मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे भारत के ब्रिक्स के अन्य देशों के जो शिप्स हैं या उनपे जो हमारे नाविक तैनात है, इस तरह के मामलों में ब्रिक्स के देश किस तरह से आपस में ऐसा तंत्र विकसित कर सकते हैं कि वहां पर हमारे शिप्स को या उनमें सवार नाविकों को सुरक्षा प्रदान की जा सके?
1: देखिए, इसमें एक वो बिंदु जिस पर सुरक्षा अधिकारियों की मीटिंग में विचार विमर्श किया है वो इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने ये कहा है कि ब्रिक्स की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, जो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाली जो एजेंसी, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, समन्वय करना चाहिए, ताकि वो टेररिज्म को काउंटर कर सके, टेररिज्म को, साइबर रिस्क को, इसको एक सम्मिलित रूप से, एक संयुक्त रूप से मिल करके इसका सामना किया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और इसी के संदर्भ ये है कि ये अब हमें देखा जाना चाहिए कि जब भी कभी ऐसी समस्या है, जब भी किसी देश पर साइबर अटैक हो, टेररिस्ट अटैक हो, या यूएवी का अटैक हो, या सप्लाई चेन बाधित हो, उस वक्त के लिए हमें ये कोशिश करते रहना था, एक कोई संगठन बनाए या कोई ऐसे एजेंसीज का एक कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट बनाए, कॉन्टेक्ट पॉइंट, जहां की ऐसी स्थिति में तुरंत सारे देशों को खबर दी जा सके और तुरंत उनकी एजेंसी जो है वो चालू हो जाए, वो एक्टिव हो जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी भी क्षेत्र में हो रहे आतंकवाद को खत्म करने के लिए, उनका सामना करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पुनर्स्थापित करते हैं कि हम प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी स्थिति में, किसी भी स्वरूप में अगर आतंकवाद हो तो उसका हम सामना करेंगे। ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा है, ब्रिक्स के जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी 21-22 मई में, और जो एक मीटिंग हुई थी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर 8 और 9 जून को दिल्ली में इसी साल, उस पर भी विचार किया है। तो अब ये आगे अपरिहार्य हो जाता है कि इन चीजों पे जो विचार हुआ है इसका तत्काल ही कुछ रिजल्ट आना चाहिए, कुछ परिणाम आना चाहिए। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी इंगित किया है कि हमें अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे ज्यादा जोर देना चाहिए, हो सकने योग्य है ऐसे समाधानों पर ज्यादा जोर देना चाहिए, ताकि हम इसमें काम जल्दी से कर सकें।
0: जहाँ तक त्रिपाठी जी साइबर सुरक्षा की अगर हम बात करें, क्योंकि साइबर के खतरे काफी ज्यादा हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमें किस तरह का एक डिजिटल नेटवर्क तैयार करने की जरूरत है जिसमें आसानी से कोई सेंध न लगा पाए और ये ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम हो जहां पर हम किसी भी तरह के साइबर हमले को रोक सकें और सूचनाओं के आदान प्रदान से बाकी जितने भी सदस्य देश हैं ब्रिक्स के उनको इस साइबर खतरों से हम बचा सकें, इसके लिए क्या और अतिरिक्त करने की जरूरत है आपके अनुसार?
1: जी देखिए, इसके लिए ये भी कहा गया है कि हमें AI ह्यूमन सेंट्रिक बनाने और AI ड्रिवन सिक्योरिटी रिस्क जो है उसको खत्म करने के लिए तुरंत ही हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। हम यूनिफाइड एफर्ट करेंगे, मतलब एक संयुक्त प्रयास, सम्मिलित रूप से हम करें, ताकि जैसे ही किसी देश के ऊपर कोई अटैक हो, साइबर अटैक हो, वो अन्य सभी सदस्य देशों को तुरंत ही सावधान कर सके, देखिए ऐसी समस्या आई है और अपने नागरिकों से कह दीजिए कि ये प्लेटफॉर्म न खोले या ये चीज न खोले इंटरनेट पे, नहीं तो इससे सिक्योरिटी को, सुरक्षा को, इससे समझौता हो सकता है। जैसे नेवी में होता अर्ली वार्निंग सिस्टम, नेवी में या सुनामी में, यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ ऐसा अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। हालांकि वार्निंग तो यहाँ हम अर्ली तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जैसे ही कहीं किसी भी देश में

0: ऐसे खतरे को महसूस किया जाता है, तुरंत समस्त देशों में इसको विचारित कर देना चाहिए ताकि खतरा कम से कम हो सके।
1: त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री ने जो ब्रिक्स के सलाहकार आए हुए हैं उनसे बातचीत में इस बात का जिक्र भी किया कि कैसे ग्लोबल साउथ के बीच में एक सामंजस्य बनाने की स्थिति है, जिससे कि पूरी दुनिया में समावेशी माहौल तैयार किया जा सके और जिसमें पूरी दुनिया के जो नागरिक हैं उनको हर तरह की सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराई जा सके और सभी लोग मिलकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें। तो यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ के सामने कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका हमें मिलकर सामना करना है और इस दिशा में खास तौर पर ब्रिक्स के देश क्या कर सकते हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो मेरे विचार से ग्लोबल साउथ के सामने जो है वो ये है कि ग्लोबल नॉर्थ की दादागिरी। दूसरी चुनौती ये है कि ग्लोबल साउथ की बात विश्व के प्लेटफॉर्म पर जनरली आमतौर पर नहीं सुनी जाती। इसलिए इसी के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि भारत जो है अब एक तरह से ग्लोबल साउथ का अघोषित प्रवक्ता बन चुका है और ये उसके लिए एक बड़ी अच्छी स्थिति है कि वो एक पुल के तौर पे ग्लोबल नॉर्थ को ग्लोबल साउथ की बातें, उनके कंसर्न, उनकी चिंताएं वहां तक प्रेषित करने में समर्थ है, क्योंकि भारत पिछले 9 साल से G7 की समिट में भी बुलाया जाता रहा है। तो अपनी इस स्थिति का उपयोग करके भारत ये काम कर सकता है। तीसरी चीज ये है कि ग्लोबल साउथ की जो समस्या है ये वातावरण से संबंधित है। वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए जो भी तरीके या जो भी तकनीक अपनाई जाएगी उस तकनीक को फ्री में लोगों को मुहैया कराया जाए। इसके साथ ही साथ ये कि नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक कृषि के क्षेत्र में हो, एनर्जी के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, नई तकनीक भी जल्दी से जल्दी मुहैया कराया जाना चाहिए। विश्व अभी अभूतपूर्व जल संकट से जूझ रहा है। ये हालांकि सस्टेनेबल गोल में है लेकिन इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जहां विश्व जो है वो बहुतायत से पीड़ित है वहां हमारे यहाँ अभाव से।
1: अंत में मैं त्रिपाठी जी एक सवाल फिर से सुरक्षा से संबंधित आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि इस विषय में भी चर्चा हुई कि कैसे हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं ब्रिक्स के देशों की, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो कानून का अनुपालन कराएं और जो सूचनाओं का आदान प्रदान है कानून को लागू करने से संबंधित या इंटेलिजेंस से संबंधित, इसमें आदान प्रदान को कैसे और हम प्रगाढ़ और सुदृढ़ कर सकते हैं?
0: देखिए, मेरे विचार से तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का अपना एक छोटा ग्रुप होना चाहिए, वर्किंग ग्रुप, जिसकी रेगुलर मीटिंग हो और ऐसी व्यवस्था हो कि कहीं भी अगर ऐसी कोई बात हो तो तुरंत ही उनको सूचित किया जाए, वो और लोगों को सूचित करें कि आपके यहाँ ऐसा अटैक होने वाला है या हमने ऐसी इमेजरी देखी है कि आपके यहाँ कुछ जहाज या किसी उससे होगा, या हमने ये देखा है कि सुनामी आने वाला है, हमने देखा है कि बाढ़ आने वाली है। ये चीजें भी जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती, या ये देख के करें कि कहीं टेररिस्ट अटैक की योजना तो नहीं बन रही है, या कहीं अगर किसी सदस्य देश की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी में ये उसको पता लगा कि हाँ हमारे यहाँ से कुछ लोग दूसरे देशों आतंकी कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं, तो तुरंत और देशों को सावधान करना बहुत जरूरी है। इसी की वजह से ये जरूरी है कि एक लगातार निर्बाध और सेफ, पूरी तरह से सुरक्षित चैनल इन देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच में हो, हॉटलाइन की तरह जैसे कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में होती है, ताकि निर्बाध तुरंत ही वो जानकारी प्रेषित की जाए।
1: जी त्रिपाठी जी, चलते हैं अब कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और जैसा कि ब्रिक्स की जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक है उसमें जो मुख्य बातें हुई आतंकवाद से संबंधित और साइबर सुरक्षा और अन्य वैश्विक चुनौतियों से संबंधित, आपने उसके बारे में न सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारी दी बल्कि उन विषयों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित कराया, जैसा कि आपने कृषि की बात की, जल संकट की बात की और किस तरह से ब्रिक्स के बीच में सहयोग को बढ़ाकर इन समस्याओं का सामना किया जा सकता है जिससे कि हम एक बेहतर विश्व बना सकें। आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक संकट पर केंद्रित 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना।
3: सुर्खियों में

मीडिया वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप समाचार संध्या सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: The Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरूपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
5: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
6: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजानी स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
7: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आईएनएस कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अम्बरीश सक्सेना।
8: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 से खेले जाएंगे। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का

आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तिजारती नुमाइंदे सफीर जेमिसन ग्रेयर के साथ तिजारती मुजाकरात की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने सियोल में जनूबी कोरिया के अपने हमनसब शोहयून के साथ मीटिंग की और आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारत जनूबी कोरिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। ओमान ने आबनाए हुरमुस के जरिए एक आर्जी बहरी राहदारी खोलने का ऐलान किया है। कोलकाता में एक जेर तामीर गोदाम के मुनहदिम होने के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। इमदादी कार्रवाइयां तेजी के साथ जारी हैं। अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के सबब अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। आसाम में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात वैंकूवर में ग्रुप बी के मैच में कैनेडा का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तिजारती उमूर के नुमाइंदे सफीर जेमिसन ग्रेयर और उनके वफद के साथ आज सुबह सिलसिलेवार मीटिंगें की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंगों में भारत और अमरीका के दरमियान जारी तिजारती मुजाकरात की पेशरफ्त का जायजा लिया गया और दोनों मुल्कों के दरमियान इकतसादी शराकतदारी को मजीद गहरा करने के मौके के इम्कान की तलाश की गई। उन्होंने सफीर ग्रेयर की क्यादत और बातचीत को एक तामीरी अता देने की फाल कोशिशों की सताइश की। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने नई दिल्ली में स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदारी के फ्रेमवर्क के तहत दिफाई ताउन की तरक्की में पेशरफ की गरज से आज एक मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत दिफा ने मुत्तला किया कि मीटिंग की मुश्तरका सदारत बैनुल अक्वामी ताउन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अमिताभ प्रसाद और मुत्तहिदा अरब अमारात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि तबादला ख्याल में दिफाई सनअती शराकतदारी को वसअत देने, इख्तिरा को फरोग देने, जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने और बहरी सलामती में इजाफा करने पर तवज्जो मरकूज की गई। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज कहा कि मौजूदा आलमी चैलेंजों के दौर में भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना निहायत अहम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुश्तरका अकदार और बाहमी एतमाद रखने वाले मुल्कों को एक दूसरे के साथ ज्यादा करीबी ताउन करना चाहिए। सियोल में जनूबी कोरिया के वजीर खारजा शोहयून के साथ मीटिंग के आगाज में अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा बैनुल अक्वामी हालात काबिल एतमाद शराकतदारों के दरमियान ताउन को पहले से ज्यादा अहम बना रहे हैं। डॉ जयशंकर ने आज शाम जनूबी कोरिया के कौमी सलामती के डायरेक्टर बी संगलेक से भी मुलाकात की। बाद में सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि दोनों फरीकों के दरमियान आलमी हालात और वाकयात और भारत बहरुल काहिल खित्ते से मुतालिक अहम स्ट्रेटेजिक उमूर पर मुफीद और नतीजा खेज बातचीत हुई। ओमान ने स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम आबनाए हुरमुस के जरिए आर्जी बहरी राहदारी को खोले जाने का ऐलान किया है। ये इकदाम तिजारती बहरी नकलो हमल की बहाली और इस बहरी बहरान को कम करने की जानेब एक अहम कदम करार दिया गया है, जिसके 22 खलीज में हजारों समुद्री कारकुन फंसे हुए थे। ओमानी हुकूमत के मुताबिक ये मनसूबा अक़वामे मुत्तहिदा की बैनुल अक़वामी बहरी तंजीम आईएमओ के ताउन से तैयार किया गया है, ताकि इलाकाई तनाजात से पैदा होने वाली कई माह की रुकावटों के बाद आबी गुजरगाह से जहाजों के महफूज आमदरफ्त को यकीनी बनाया जा सके। बैनुल अक़वामी बहरी तंजीम के मुताबिक खित्ते में 11,000 से ज्यादा बहरी कारकुन फंसे हुए हैं और जिन्हें मरहलावार तरीके से निकाला जाएगा और आमदरफ्त के मनसूबे के तहत मदद फराहम की जाएगी। तेहरान में वाकई भारतीय सिफारतखाने ने ईरान में सिक्योरिटी की सूरतहाल में बेहतरी के मद्देनजर भारतीय शहरियों के लिए सफर से मुतालिक नजरसानी शुदा एडवाइजरी जारी की है। सिफारतखाने ने हालिया मुस्बत हालात वाकयात और मजमुई सूरतहाल में बेहतरी के तनाजुर में भारतीय शहरियों को ईरान के सफर के बारे में संजीदगी से गौर करने का मशवरा दिया है। मजीद तफसील हमारे नामानिकार से।
1: एडवाइजरी के मुताबिक भारतीय शहरियों को आइंदा इत्तला तक ईरान के गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। सफारतखाने ने कहा है कि जो भारतीय शहरी इस वक्त ईरान में मुकीम हैं या नागुजेर वजूहात के बिना पर ईरान का सफर करना चाहते हैं वो इंतहाई एहतियात बरतें, सूरतहाल पर मुसलसल नजर रखें और मकामी हालात से बाखबर।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
3: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
2: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार है, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार में विशेष है।
3: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
2: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की वो किस तरह से, हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
3: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही मतलब उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
2: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल, तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
3: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्ट्यूमस मतलब जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ए मतलब अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक

0: हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था। तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं, और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा
1: जी जी।
0: और वो नित्य नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। पांचवी जो कैटेगरी है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन एआई से रिलेटेड, और इस प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन छह एंट्रीज में, छह जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
1: जी, आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांव से आए, और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं। तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त, कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
0: अवश्य। देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं। तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हरेक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं है, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के, और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
1: बिल्कुल। और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे, तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है, कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन। तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें ये भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
0: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे, और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
1: जी,
0: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती है।
1: जी, जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं, इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं। तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
0: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं, और वहां के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं, और उन बच्चों को वो जहां भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हो तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है, तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने, और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार है, अभिभावक है या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत जरूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
0: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हो, आसपास में हो, उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं, जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में, और अन्य सारे विभाग जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सके। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सब से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आए ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी, आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सो मच।
1: अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपनी कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरू, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉर्टफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहां से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
2: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ
1: जी,
2: और मैं पैरा एथलीट हूँ, शॉटपुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से ही मेरा हाथ नहीं है
1: जी,
2: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी।

0: मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसा। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी, 6 से लेकर 12 तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो हम पापा ने एक ही बात बोला है कि हम तो बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम हमारा इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6th से लेकर 12 तक।
1: जी
0: फिर
1: जी
0: एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है जिसमें ओनली सारे एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं। उसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था, तो मेरा शॉट पुट जावलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कॉम्पिटिशन भी देते हैं। ऐसे में शॉट पुट जावलिन में स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ। इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ, और ऐसे मेरे पास अभी अभी तक 19 मेडल्स है, उसमें से 16 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। और मैं उसके बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ आगे।
1: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
0: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़े लोग ऐसे मैं कब मिलूंगी, ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा ही सोची थी। पर मैं बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है। उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा।
1: जी बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी से 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया। साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला, और इन्होंने खासतौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा एनवायरमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
2: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
1: जी तो बताएं अपने बारे में, आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है।
2: मेरा मेन मोटिव ये होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, सो दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन दीज स्टफ एंड या आई वांट टू वर्क फर्दर ऑन इट, मेकिंग मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड व्हाटएवर आई कैन डू।
1: जी तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिके, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने?
2: राइट नाउ आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टुडे व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज टू कम अप विद द मोस्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू ऑल द सोसाइटल प्रॉब्लम्स, and if future I get the chance to implement them in real life, definitely I am very eager to do that, but right now I am just focusing on building the solutions, and as of now I am trying to focus on my studies also as I am a 10th grader this year.
1: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
2: It was something that I never dreamed of, and even today, आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, like it's something the little Aishi inside me was very happy and excited for. And I don't know how to explain it, to be honest.
1: Thank you so much, Aishi. Aap, हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस अपने इनोवेशन के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया. थैंक यू सो मच.
2: थैंक यू सर.
1: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल. वंश तयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर है और एक केयर गिवर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है. तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे. वंश, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा. हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया. बताएं अपने बारे में कुछ.
3: तो ये मौका मेरे लिए बहुत कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था. बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए, बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पर. बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना, कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसी रह जाऊंगा. वहां मुझे रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना. फिर थोड़ा होप हुई, एक फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में. फिर देखा वहां पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना, कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया. वहां के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए. उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, एक साइबर पॉलिसी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था. तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ चलो बहुत छोटा है और उसको बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया, उसको भी हाँ उसकी हालत ऐसी है. तो मैं फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, कि कुछ भी कर सकता हूँ. आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, कि हाँ यू कैन डू वेल, यू कैन सर्वाइव. तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम. तो काफी अच्छा मौका था, मैंने फिर काफी इंस्पायर होके मैंने सोचा कि इसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा. और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबकी हेल्प करना, हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, और उस बच्चे को मैंने काफी नाइक टूडे की वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, भूल भी पा रहा है आराम से. तो काफी था ये समय. फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का नॉमिनेशन हो जाता है सोशल वर्क में. तो मेरे सुपरिटेंडेंट थे मिस्टर ललित अरोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया. काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो. तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा.
1: बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात है. हम आपसे और जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में जिस तरह से हमने, हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
3: जैसे कि मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए. उनका साथ में सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ जितनी मेरे से हो सके, मतलब सेल्फ होके उन्हें हेल्प करना चाहूंगा उनकी.
1: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी, कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहे. बहुत बहुत धन्यवाद. अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से. सुमन सरकार एक तबला वादक है, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है. तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही है. बहुत स्वागत है सुमन आपका.
4: सर आपको बहुत धन्यवाद.
1: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं.
4: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था. तो तभी मैं ये तबला को, मतलब आसपास के जगह कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था. मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे. मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे. तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया. तो जब मैं 3 साल का उम्र का था तभी मेरे पापा ने

0: ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर काल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गांव में। मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पबेर कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया। तो वहां से जानने शुरू हुआ, तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ तो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, कंपटीशन था। तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ। मेरा उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ। तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ। तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से। तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है, तभी शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत। मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय संगीत का जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा
1: जी। और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दे जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
0: आज के जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है, इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं। यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर, जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
0: थैंक यू सर।
1: अब हम जुड़ रहे अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक AI पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए, वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन हासिल की है। तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं, और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने AI के जरिए एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की।
2: मेरा जो AI सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है। जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स। ये जो AI इनोवेशन है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
1: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
2: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली, मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
1: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार है, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। चर्चा का विषय है। मीडियम 546.4।

5 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम समर्पित रूपक।

0: राज
1: विषय है अब पॉलीथीन का प्रयोग नहीं।
0: राज्य स्तरीय समन्वित रूपक श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है हजारीबाग केंद्र की प्रस्तुति अब पॉलीथीन का प्रयोग नहीं। वाचन स्वर अनामिका, संजय केसरी और मनमथ नाथ मिश्र। बाह्य ध्वनांकन संजय केसरी। प्रस्तुतकर्ता मनमथ नाथ मिश्र और अमिताभ कुमार। संयोजक डॉ अब्रू चौधरी। तो प्रस्तुत है रूपक अब पॉलीथीन का प्रयोग नहीं।
2: मनुष्य की भौतिक उपलब्धियों और उन्नति के विकास के बीच लगातार साथ साथ चलती हुई एक वस्तु उसे विरासत में स्वतः प्राप्त हो रही है। वह है खतरनाक स्तर से भी बहुत आगे तक प्रदूषित जलवायु और विकृत धरती का भयावह स्वरूप।
3: श्रोताओं, साफ स्वच्छ वायुमंडल, हरी भरी धरती और निर्मल जलधारा हमारे आने वाले कल के लिए गौरवशाली संपदा है। इनको संजोना हमारा अधिकार और कर्तव्य दोनों ही है।
0: ये वे अमूल्य धरोहर हैं जिनके कारण हम जीवित हैं और हमारा अस्तित्व बचा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार हम लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, उससे निकट भविष्य में हमारे सामने एक विकट समस्या उभर कर आने वाली, या कहें तो हमारे दरवाजे पर आ खड़ी हुई है।
2: आज मनुष्य के द्वारा कई ऐसी चीजों का आविष्कार किया जा चुका है जिससे पर्यावरण को अतुलनीय क्षति हो रही है और जिसकी भरपाई हम कभी नहीं कर सकते।
3: ऐसी ही एक वस्तु है पॉलीथीन या प्लास्टिक। पॉलीथीन या प्लास्टिक एक नष्ट न होने वाला पदार्थ है जिसको केवल जलाकर ही एक सीमा तक नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न होगी जो हमारे लिए प्राणघातक सिद्ध हो सकती है।
0: दूसरी ओर अगर इसे मिट्टी में दबा दिया जाए तो भी इसका विघटन असंभव है। श्रोताओं, पॉलीथीन का प्रयोग पूरे पर्यावरण के लिए हानिकारक और घातक सिद्ध हो रहा है और इसी गंभीरता को देखते हुए सरकार के द्वारा पॉलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
2: आज प्लास्टिक थैलियां या कैरी बैग्स का उपयोग इतनी अधिक मात्रा में हो रहा है कि सारे विश्व में 10 खरब पॉलीथीन कैरी बैग काम में लेकर फेंक दिया जाता है।
3: आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि केवल अकेले जयपुर में रोजाना 35 लाख लोग प्लास्टिक का कचरा बिखेरते हैं और 70 टन प्लास्टिक का कचरा सड़कों, नालियों तथा खुले वातावरण में फैलता है।
0: केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के अध्ययन के अनुसार एक व्यक्ति प्रतिदिन 6 से 7 किलो तक का प्लास्टिक कचरा फैलाता है। इस प्लास्टिक कचरे से नालियां बंद हो जाती हैं, धरती की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, भूगर्भ का अमृत जैसा पेयजल विष हो जाता है, रंगीन प्लास्टिक थैलियों से कैंसर जैसे असाध्य रोग हो जाते हैं तथा लाखों जीवों की अकाल मृत्यु हो जाती है।
2: पर्यावरण को स्वच्छ, सुंदर और पॉलीथीन के प्रयोग से होने वाली अतुलनीय क्षति से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा लोगों से नो टू प्लास्टिक बैग्स की पद्धति के अनुसरण की अपील की जा रही है।
3: पर्यावरण को पॉलीथीन से मुक्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने देश में सबसे पहले यह कदम उठाया जिसमें पूरी तरह से प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए मुहिम शुरू की गई और आज भारत के लगभग सभी राज्यों द्वारा पॉलीथीन के कैरी बैग पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
0: झारखंड सरकार ने भी पॉलीथीन से उत्पन्न हो रही विभिन्न समस्याओं को देखते हुए राज्य में उसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
2: हमारा राज्य पूरी तरह से पॉलीथीन मुक्त बन सके इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा किस प्रकार के दिशा निर्देश

0: इस जारी किए गए हैं। जब इस विषय पर हमने बात की हजारीबाग के सदर एसडीएम श्री आदित्य रंजन जी से, वो इस पर बतलाते हुए कहते हैं,
1: जैसा कि हम लोग जो है प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड बनाने के प्रति हम लोग जागरूक हुए हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड लेवल पे जितने कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं उसमें इंडिया को भी एकदम फोकस रखा गया है। उसके आलोक में जो है देश स्तर पे जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके आलोक में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उनमें से सबसे पहले तो बड़े लेवल पे कॉन्फ्रेंस कर करके हम सभी अधिकारियों को बुलाकर बैठक करके रांची में ये बताया गया है कि प्लास्टिक मुक्त शहर एक एक करके हम लोगों को बनाना है पूरे झारखंड में। तो कुछ कुछ नियमावली नगर निगम की तरफ से है और कुछ कुछ डायरेक्शंस जिला प्रशासन को भी है। नगर निगम की तरफ से कुछ फाइन के प्रावधान है और कुछ सीजर के प्रावधान है, जिसमें नगर निगम एक्ट जो है म्यूनिसपैलिटी एक्ट उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि डिपेंडिंग ऑन क्वांटिटी कि कितना प्लास्टिक मिलता है सीजर के टाइम में, या पहली बार नोटिस जा रहा है, दूसरी बार जा रहा है, रिपीट ऑफेंस है, उसके आलोक उसके तरह से 500 से 5000 रुपया किसी किसी का वो किसी किसी एक्ट में 1,00,000 रुपये तक का भी फाइन है और 1 साल की सजा है।
0: राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अब प्लास्टिक थैला के निर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
2: लेकिन इसके बावजूद अगर कोई भी प्लास्टिक के कैरी बैग का इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
3: हमारा शहर स्वच्छ हो, सुंदर हो, पूरी तरह से पॉलिथीन मुक्त हो, इसके लिए हजारीबाग जिला प्रशासन के द्वारा किस प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, इस पर आगे बतलाते हुए हजारीबाग के सदर एसडीएम कहते हैं
1: कि एक तो हम लोगों ने सबसे पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स और नगर निगम के जितने भी वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर हैं, सब लोगों के साथ मिलकर एक बैठक करी थी, जिसमें हम लोगों ने ये रखा था कि हम लोगों को इसको पूर्ण रूप से बंद करना है। पहले तो हम लोगों ने वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को आखिरी तारीख दी थी और वो सफल भी रहा काफी हद तक, लेकिन उसके बाद हम लोग ईद को देखते हुए कि पर्व त्योहार का दिन है तो हम लोगों ने थोड़ा और समय भी दिया, क्योंकि एक बड़ी समस्या है और सभी लोग इसकी आदत से जुड़े। तो पहला पहल हम लोग यही रखे थे कि डेट्स दे देकर, 2-3 अलग अलग तारीख देकर, थोड़ा समय और देकर, थोड़ा लीनियंसी बरतकर, फिर थोड़ा कड़ाई बरतकर हम लोगों ने काफी प्रयास किया कि ये धीरे धीरे कम हो। अभी हम लोगों ने निगम की तरफ से लगभग 10 फाइन टीम बनाई है। हर फाइन टीम में एक इंचार्ज होते हैं, बाकी गार्ड्स होते हैं और तहसीलदार होते हैं। ये लोग जाकर दुकान दुकान सर्वे करते हैं, और उससे पहले हम लोगों ने फूल देकर दुकान दुकान सबसे कहा था कि आप लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करिए। कुछ पैम्पलेट्स छपवाए थे जिसमें डूज एंड डोंट्स लिखे थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए नगर निगम को स्वच्छ बनाने के लिए। वो पैम्पलेट सभी दुकानों में दे देकर एक एक कॉपी और उसकी रिसीविंग भी ली थी। अभी रिसेंट टाइम्स हम लोगों ने कई दुकानदारों से शपथ पत्र भी साइन कराया है, जो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से लिख कर दिया है आज के बाद से वो लोग जो है प्लास्टिक का ना इस्तेमाल करेंगे, ना ही बिक्री करेंगे, ना किसी को इस्तेमाल करने देंगे।
2: श्रोताओं, राज्य में पॉलीथीन के कैरी बैग का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित हो चुका है। चूंकि लगभग 3 दशकों से पॉलीथीन का प्रयोग चलन में था और अब इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगने से सभी को थोड़ी परेशानियां भी हो रही हैं। पॉलीथीन का क्या विकल्प होना चाहिए और इसके लिए जिला प्रशासन किस प्रकार से सक्रिय है, इस पर बतलाते हुए आदित्य रंजन कहते हैं,
1: विकल्प के रूप में हम लोगों ने कुछ महिला मंडल को जोड़ा है। उन महिला मंडलों से हम लोगों ने लगभग 10,000 थैले भी बनवाए कपड़े के, पुराने साड़ियों से, सस्ते कपड़ों से। उन थैलों को दुकान दुकान में 5-5 पीस, 10-10 पीस मुफ्त में बंटवाया भी। हर थैले के ऊपर जो है महिला मंडल का नाम, उसका मोबाइल नंबर, ये सब डाला है। ठोंगा भी कुछ कुछ हम लोग बनवा के बंटवाए हैं, उसमें भी नाम मोबाइल नंबर लिखा है। तो जिस्ट में यही है कि एक बहुत अच्छा मौका है हम सबको सुधरने का, हम सबको प्लास्टिक मुक्त हजारीबाग बनाने का, प्लास्टिक मुक्त झारखंड बनाने का। साथ ही साथ एक अच्छा सुनहरा अवसर है लोगों को एक अच्छा रोजगार देने का। इससे कई महिलाओं, कई महिला मंडलों और कई छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज को काफी फायदा होगा, जिससे कि आने वाले समय में प्रदूषण मुक्त भी होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
0: शहर व गांव में रहने वाले लोग पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करें और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें, इस पर सदर एसडीएम श्री आदित्य रंजन सभी से अपील करते हुए कहते हैं कि
1: छोटा सा बात यही है कि प्रशासन, उसके अधिकारी, सरकार, ये सब बदलते रहते हैं, वो आएंगे चले जाएंगे। एक ही बात है कि भाई ये शहर आप लोगों का है और आप लोग को ही इसको संभाल कर रखना है।

0: ये आपकी चीज है। प्रशासन सरकार इसमें आपके लिए हर तरह की मदद करने के लिए आगे आएगी, पर ये थोड़ी सी जागरूकता अपने मन में लाइए कि जो प्रशासन कर रहा है या जो सरकार की जो नीतियां हैं वो आपके हित में है। भले ही थोड़ी कठिनाई आज कल एक आध सप्ताह एक आध महीने के लिए या एक आध साल के लिए हो जाए, पर यह कठिनाई आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। आने वाले समय में हजारीबाग एक ऐसा शहर हो जिसमें आपके बच्चे आपके बच्चों के बच्चे यहां आकर रह सकें, साफ हवा का आनंद ले सकें, हरियाली का आनंद ले सकें, आबो हवा को हम लोग जैसे आज से 25 साल पहले 50 साल पहले अप्रिसिएट करते थे कि कितना सुंदर शहर है, बाघों का शहर है, तो ये बाघों का शहर रहे, घोड़ों का शहर न हो जाए, इसके लिए आपकी जिम्मेवारी और आपको ही करना है।
1: दोस्तों, वर्तमान समय में प्लास्टिक का चलन, उसका उपयोग हमारे आधुनिक रहन सहन की एक अनिवार्य शैली के रूप में उभरा और जिस प्रकार हमारी मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और शिक्षा है, ठीक उसी प्रकार से हमारी दैनिक कार्य पद्धति में प्लास्टिक को स्वीकार कर लिया गया।
2: और हमारे सुविधापूर्ण दृष्टिकोण के कारण आज हम प्लास्टिक पॉलिथीन की विकराल समस्या से पूरी तरह घिर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हम में से बहुत सारे लोग आज भी पॉलिथीन के कैरी बैग का उपयोग कर रहे हैं। जब इस विषय पर हमने हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल से बात की तो वे इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं,
3: देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम सबों को मिलकर के विश्व है इसको रहने योग्य बनाना है। जीवन बहुत सालों से चल रहा है और आगे भी अनंत सालों तक चलेगा। हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि पहले जितने भी पोल्यूटेंट हुआ करते थे इसका उपयोग हम लोग बहुत कम करते थे। धीरे धीरे अपने सुविधा के अनुरूप हम लोगों ने पोल्यूटेंट्स को, जिसमें कि प्लास्टिक कैरी बैग्स भी है, पूरा प्लास्टिक भी है, का उपयोग हम लोगों ने शुरू किया। अब उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे पहले हम लोग जब सब्जी लेने जाते थे या जो हमारे घर से हमारे कभी पिताजी को हमने देखा जाते हुए या हमारे घर में जो हमारा स्टाफ मेंबर है वो जाता था अगर सब्जी लेने के लिए, तो मैंने देखा है कि वो कपड़े का बैग कैरी करता था अपने पॉकेट में और उधर से सब्जी भर के लाता था। आज भी संगति इतनी आ गई है कि अगर वो 200 ग्राम मिर्चा लेता है तो एक पॉलिथीन में लेता है, उसके बाद लहसुन लेता है तो एक पॉलिथीन में लेता है और सब 10 पॉलिथीन को मिला करके 11वें पॉलिथीन में वो सारे आइटम को डाल करके लाता है। ये केवल सुविधा है, कन्वीनियंस है, लेकिन इस कन्वीनियंस से जो मानवता को नुकसान हो रहा है, जो विश्व को पर्यावरण को नुकसान हो रहा है वो अतुलनीय है। आपने देखा होगा कि 100 वर्ष की खुदाई के बाद जब प्लास्टिक को हम लोग निकालते हैं जमीन के अंदर से तो वो बिल्कुल उसी प्रकार से मिलता है जैसे कि कल उसको दबाया गया हो। तो ये डिग्रेडेबल नहीं है, ये नॉन डिग्रेडेबल आइटम है और इसका प्रयोग मैं तो मानता हूँ थोड़ा कड़ाई से करना चाहिए और बिल्कुल ही इसके उत्पादन पर ही हम लोगों को कहीं न कहीं सोच रखना चाहिए कि इसका उत्पादन बैंड हो ताकि ये मार्केट में उपलब्ध ना हो तो लोग इसकी ना तो ट्रेड कर सके और ना तो इस्तेमाल कर सके।
1: भारत में बहुत सारे उद्योग प्लास्टिक और पॉलिथीन के उत्पाद में लगे हुए हैं और जहां काफी संख्या में श्रम का उपयोग भी होता है, ऐसी स्थिति में जब पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पॉलिथीन के कैरी बैग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तो स्वाभाविक है कि बेरोजगारी की संख्या बढ़ेगी। ऐसे में पॉलिथीन के क्या विकल्प होने चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सके, इस पर सदर विधायक मनीष जायसवाल जी कहते हैं,
3: देखिए अभी कई एक विकल्प हैं, लोग इसको रोजगार से जोड़ के देखते हैं कि प्लास्टिक में बहुत बड़ा रोजगार है। कितना भी बड़ा रोजगार का सृजन हो वो मानवता से पर्यावरण से ऊपर नहीं हो सकता। उस बात को लेकर के अगर मेरे पक्ष को आप रखना चाहेंगे तो मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ कि 100% पॉलिथीन जो है पैकेजिंग मटेरियल में और इसमें जो है वो बैन करना चाहिए। आप उन्नत देशों में देखेंगे कि उन्नत देशों में जो ट्रे है ये लोग बनाते हैं, कई एक सारी जो कृषि के उत्पादित जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं से ये ट्रेस को बनाया जाता है और इसमें इसका रैपिंग वगैरह किया जाता है। तो उन सभी चीजों पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और बेसिकली ये प्लैनेट हमारा है, ये सभी को चिंता करना पड़ेगा। ये नहीं कि ये सरकार की जिम्मेवारी है या कोई विधायक कोई MP या कोई नगर निगम के अध्यक्ष या अधिकारियों की जिम्मेवारी है कि ये प्लास्टिक ना आए। ये एक एक

0: श्रोताओं, हजारीबाग के सदर एसडीएम श्री आदित्य रंजन और सदर विधायक मनीष जायसवाल जी से बातचीत करने के बाद हमने बात की हजारीबाग कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय कृषि वैज्ञानिक राजकुमार सिंह से और जानना चाहा कि पॉलीथीन का प्रयोग हमारी मृदा और पशुओं के लिए किस हद तक हानिकारक है। तो वे बतलाते हुए कहते हैं कि
1: पॉलीथीन की बात जो कर रहे हैं तो पॉली माने बहु, जैसे होता है ना मोनो माने एक हो गया और जैसे कि दो के लिए, पॉली मीन्स बहुत सारा, यानी कि एक पॉली चेन होती है तो वो एक एथिलीन चेन होती है जो पॉलीथीन के नाम से हमको हम उसको जानते हैं। जैसे ही हम लोग इसको बाजार से लाते हैं और हम इसको कहीं भी इसको कलेक्शन करके और इसको छोड़ देते हैं तो एक तो दो रूप से ये नुकसान पहुंचाती है। एक तो जैसे कि कलेक्शन करके आप इसको जलाएंगे तो ये हमारे एनवायरमेंट जो हमारी जो हवा है उसको प्रदूषित करती है, क्योंकि उसमें से बहुत सारी जहरीली गैसें बनके निकलती हैं और वो सीधे स्वास्थ्य को, चाहे हमारी हवा को, चाहे हमारे वातावरण को, हर तरह से दूषित करती हैं। दूसरा होता है कि हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो जैसे कि आपने खाना, बचा हुआ खाना, सब्जी, फल, ये सब लिए, पॉलीथीन में बांधे और आपने कहीं रख दिए, तो वो जो उसके अंदर का मटेरियल है वो तो समाप्त होकर खाद बन जाएगा, खेत में मिल जाएगा, लेकिन वो पॉलीथीन जो है उसका डिकम्पोजिशन बहुत स्लो है, माने बहुत धीमे है, उसको बरसों लग जाएंगे और उसी बीच में जब वो एक के बाद जब वो इकट्ठा होता चला जाएगा तो हमारी जो पर्यावरण की समस्या है उसको बहुत ज्यादा तादाद में वो नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर मिट्टी में ही अगर उसको डाल देंगे तो मिट्टी में आपने जैसे कि फल सब्जी या फिर बचे हुए खाना या कुछ चीजें आपने खेत में आपने उदाहरण के तौर पर डाले तो उसमें क्या होगा, सब्जी फल सब डिकम्पोजिशन, वो खाद बन जाएगा, पॉलीथीन उसमें बच जाएगी। अब वो क्या करेगा, जैसे कि बहुत सारे अगर पॉलीथीन्स या फिर उस टाइप के टुकड़े या प्लास्टिक के टुकड़े, वो रहने से वो डिकम्पोजिशन होगा नहीं, क्योंकि जो मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया होता है, जो हमारी जो इस तरह का जो विघटन क्रियाएं होती हैं, जो खाद बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक सूक्ष्म बैक्टीरिया काम करता है, वो बैक्टीरिया प्लास्टिक को खाने में अक्षम है, तो प्लास्टिक है चाहे पॉलीथीन है वो उस तरीके से हमारे खेतों में पड़ी रहती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब तादाद मात्रा उसकी अधिक हो जाती है तो जैसे किसान भाई बहन हम चाहे उसमें खेती की किसी क्रियाएं करें या फिर पौधा लगाएं तो उस तरीके से भी नुकसान पहुंचाता है। अब जैसे कि आपने बीज लगाया, आसपास में अगर पॉलीथीन है तो वो पानी को भी जड़ों तक नहीं पहुंचने देगा, उस तरह से भी नुकसान होगा। तो एक तो उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, उसका विघटन नहीं हो रहा है, उसका खाद नहीं बन रहा है और अधिक मात्रा में होते होते होते होते वो उसका जो चरण है वो एक लंबे समय तक नहीं होने के कारण वो पर्यावरण को, हमारे जो मिट्टी का पर्यावरण उसको भी दूषित करने लगे। और दूसरा जो आपने हमारे पशुओं के बारे में बोला, देखिए पशुओं को तो वो सीधा सीधा उसका नुकसान है, उसमें तो बहुत ज्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ लोगों से अपील करना चाहेंगे कि पॉलीथीन का प्रयोग जितना हो सके न करें और इवन मैं तो ये कहूंगा कि बिल्कुल बंद करें उसको। जैसे कि मैं पशुओं के बारे में बताऊं, जैसे कि होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कुछ रोटियां ली, कुछ सब्जी ली या फलों के टुकड़े लिए, कुछ बचा हुआ लिया, हमने सड़क के किनारे किसी कूड़ेदान में रख दिया या कहीं फेंक दिया, तो हमारा कोई पशु आता है, जैसे हमारी गाय है, बैल है या फिर हमारे जो और दूसरे भैंस हैं, चाहे दूसरे पशु हैं, वो क्या करते हैं उसको पॉलीथीन सहित खा जाते हैं। तो फिर वही चीज होती है, जैसे ही वो पेट में जाता है तो पेट में भी हमारे में भोजन पचाने के लिए कुछ एंजाइम्स इस तरह की चीजें होती हैं और जिसको अगर देखा जाए तो वो जो पचाने वाले जो रस हैं वो खाने को पचाते हैं लेकिन पॉलीथीन पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे धीरे धीरे पशुओं के पेट में वो चीजें इकट्ठी होती रहती हैं, कुछ चीजें गोबर की और मल के माध्यम से बाहर भी निकल जाती हैं, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं आहार नाल में या फिर दूसरे आंत में या दूसरे किसी आमाशय के किसी हिस्से में जब वो फंस जाती हैं तो वो हमारे पशु को नुकसान पहुंचाती हैं। और उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे धीरे धीरे जब उनका कलेक्शन हो जाए तो जब पशु हमारा खाना खाता है तो वो दीवारों से चिपक के हमारे खाने का जो पाचन क्रिया है उसको, हमारे पशु की जो पाचन क्रिया उसको सीधे सीधे इफेक्ट नुकसान पहुंचाती है, पशु हमारे कमजोर हो जाते हैं और बहुत परिस्थितियों में पशुओं की मौत भी उसमें हो जाती है, नहीं तो कमजोर हो जाएंगे, दूध नहीं देंगे या फिर वो बीमार रहेंगे।
2: कृषि वैज्ञानिक राजकुमार सिंह के इस बातचीत के बाद हमने बातचीत की हजारीबाग के जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ ओपी पांडे से और जानना चाहा कि पॉलीथीन जानवरों के लिए किस प्रकार हानिकारक है। इस विषय पर उनका कहना है,
3: गाय जब वो आपको खा लेती है तब ये उसे आपको पता नहीं चलता है।

0: कि अब ये आपको उसका निकास कैसे होगा। अब होता क्या है कि जब पॉलिथीन अंदर जाता है, उसके रूमेन में जाता है, तो वहां विभिन्न आपको मतलब कि जो भी हमारे यहाँ सिक्रीट होता है, आपको हार्मोन्स होता है, जूसेस होता है, सब होता है, उससे क्या होता है कि वो सीमेंट के रूप में होता है, बॉल बन जाता है, और बॉल बन जाता है वो पेट फूल जाता है। किसान हमारा ये समझता है कि भाई ये तो आपको लगता है कि पेट फूल गया है, गैस हो गया है, अब वो इसका इलाज कराता है तो मालूम चलता है कि आपको डायरिया हो गया, क्योंकि आपको उससे तो आपको निकलता नहीं है। जब नहीं निकलता है तब अंत में आपको जानवर जो है वो आपको कमजोर होते जाता है, खाना उसका छूट जाता है, और उससे क्या होता है कि उत्पादन पर असर पड़ता है, दूध देना बंद कर देता है। डॉक्टर के पास इलाज करने जाते हैं, डॉक्टर ये कहेगा कि भाई आपको ये मतलब कि पॉलिथीन आपको अंदर चला गया है किसी कारणवश से, और उसको आपको हटाना पड़ेगा। अब उसमें क्या है कि आप पॉलिथीन का आप कराइएगा तो उसमें आपको ज्यादा खर्चा पड़ेगा, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद आपको पोस्ट केयर ऑपरेटिव जो है आपको नहीं, अगर पोस्ट ऑपरेटिव केयर नहीं कीजिएगा तो जानवर को मरने की भी संभावना होती है। तो जो उत्पादन है वो किसी कारण से आपको इफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए प्लास्टिक को अगर हम लोग समझिए कि न आपको यूज करें तो ही अच्छा है। अगर मान लीजिए कि दूध जो है, अगर प्लास्टिक गाय खाई हुई है और अगर आपको दूध का सेवन करते हैं तो ह्यूमन के भी आपको स्वास्थ्य पर उसका आपको बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो भाई आपको किसी न किसी रूप में प्लास्टिक का यूज व्यवहार इसको आपको बंद किया जाए। सरकार इस पर आपको चिंतित है, सरकार आपको इस पर रोक भी लगा दी है, फिर भी अभी आपको कहीं कहीं इसका व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन आदमी को अपने दिनचर्या में भी आपको माने इसमें सुधार लाना पड़ेगा।
1: पॉलीथीन का प्रयोग पिछले 3 दशकों से प्रचलन में है और अब इसे प्रयोग से बिल्कुल बाहर कर दिया गया है, तो इससे हमारे व्यवसायी भाइयों और ग्राहकों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पॉलीथीन के प्रयोग के प्रतिबंध पर व्यवसायी अनु सोनी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं।
2: पॉलीथीन को रोकने के लिए सरकार से निवेदन है कि कम से कम जहां से प्रोजेक्ट होती है माल फैक्ट्री, उस पर लगाम लगाए। जब तक फैक्ट्री चालू रहेगा तो किसी भी कीमत पर पॉलीथीन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। वहां से माल जब तक नहीं निकलेगा तो फिर टोन आएगा ही नहीं। फैक्ट्री चालू रहेगा तो किसी कीमत पर ये तो चुपा चुरी तो आएगा ही, माल तो आना ही है। गवर्नमेंट ही है या प्रशासन है, वो कहाँ कहाँ चेकिंग करेगा, वो डेगे डेग तो नहीं लगाएगा पूरा शहर में, क्या ई चौक पर है पुलिस, ऊ चौक पर पुलिस है, ऊ चौक पर पुलिस है, खाली पॉलीथीन के लिए नहीं कर सकता है इतना। जो चीज 20 साल 25 साल से चल रहा है उसको आप तुरंत चाहिएगा तो कंट्रोल भी नहीं होगा। और दूसरा कि जो थैला का दाम है उस पर टैक्स कम कर दिया जाए, सस्ता मिलेगा थैला तो फिर प्लास्टिक में आदमी जाएगा नहीं।
3: व्यवसायी अनुज सोनी की प्रतिक्रिया जानने के बाद हमने मुलाकात की गृहिणी रेणु कुमारी से और जानना चाहा उनकी प्रतिक्रिया को।
4: चूंकि हम लोग इसका प्रयोग के आदि बन चुके थे, इसीलिए शुरू में जैसा कहा जाता है सरकार के द्वारा भी ये बात कही गई कि अपने ही आप थैलियां ले जाएं, जूट की थैली या और कुछ दूसरे बैग ले जाया करें। तो ये सब सुविधा लेकर के घर से निकलने की आदत पहले थी नहीं, जो कि उसको हम लोगों को भी झेलना पड़ रहा है। परेशानी है कि हम लोगों को वो चीज सामने में नहीं मिल पा रहा इसके लिए, लेकिन अगर हम लोग पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो ये परेशानी उस परेशानी के आगे कुछ भी नहीं है जो परेशानी का हम लोगों को सामना करना पड़ सकता है। जितना हो सके हम लोग पॉलीथीन के प्रयोग को बंद कर दें। ऐसा है कि अभी जो बाजार में उपलब्ध है इसके विकल्प के रूप में जो बैग्स हैं वो आम आदमी के पहुंच से परे हैं, क्योंकि वो थोड़ा महंगा है जिसके वजह से सभी कोई उसको नहीं खरीद पा रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार इस चीज को ध्यान दे और उसको मतलब उसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा इतना जेन्युइन से रखे कि हर कोई उसको ले सके, फिर तो हमारे लिए कोई दिक्कत ही नहीं है।
1: हमारे जीवन के लिए पर्यावरण सर्वोपरि है। एक वो भी समय था जब हम प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए पॉलीथीन को उपयोग में ले आए, लेकिन आज फिर वही समस्या हमारे सामने।

0: खड़ी हुई है। पॉलिथीन का बढ़ता प्रयोग आज पूरे पर्यावरण को दूषित करता जा रहा है। अब पुनः हम सभी को मिलकर अपनी प्रकृति को पॉलिथीन के दुष्प्रभाव से बचाना है, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुंदर वातावरण देना है। पॉलिथीन का उपयोग नहीं करें। इसी संदर्भ में अपनी बात रखते हुए विनोबा भावे विश्वविद्यालय के शिक्षक श्री दिलीप कुमार प्रसाद जी कहते हैं,
1: पॉलिथीन जो है ये हमारे प्रकृति के लिए और हमारे रोजमर्रे की जिंदगी के लिए एक विषक्त रूप से उभर रही है और हमारे जो इतने संसाधन जो प्रकृति में पड़े हुए हैं ये वहां पे जाकर के इसको डाइल्यूट करती है। हमारी जिंदगी में हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी चीज पॉलिथीन में लेकर के आ रही है, हमारी परंपरा चल चुकी है। आइए इसको रोकिए, अपनी जिंदगी को बचाइए और पर्यावरण को बचाइए। पर्यावरण है या प्रकृति है तो हमारा जीवन है, और अगर हमारा जीवन को बचाना है तो आपको पॉलिथीन छोड़ना पड़ेगा। इससे बहुत ही नेगेटिव पॉइंट्स हैं और जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, बहुत से इससे डिजीज उत्पन्न होती है।
0: श्रोताओं, आज के इस रूपक के माध्यम से हम आप सभी श्रोताओं से ये कहना चाहते हैं कि हम सभी को पॉलिथीन का इस्तेमाल करने से बचना होगा और इसकी जगह हमें कागज के ठोंगे और कपड़े के झोले, बैग आदि का प्रयोग करना है, इसे प्राथमिक तौर पर अपनाना होगा। हम सभी को मिलकर पॉलिथीन मुक्त पर्यावरण की संकल्पना को साकार करना होगा।
2: अब पॉलिथीन का प्रयोग नहीं, आप सुन रहे थे ये रूपक। वाचन स्वर अनामिका संजय केसरी और मन्मथनाथ मिश्र, बाह्य ध्वनांकन संजय केसरी, प्रस्तुतकर्ता मन्मथनाथ मिश्र और अमिताभ कुमार, संयोजक डॉ अभ्र चौधरी। राज्य स्तरीय समन्वित रूपक श्रृंखला के अंतर्गत यह रूपक आकाशवाणी हजारीबाग केंद्र द्वारा निर्मित किया गया।

इस समय आप सुन रहे थे रूपक। अब पॉलिथीन का प्रयोग नहीं, कार्यक्रम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र की प्रस्तुति थी। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं पंडित विश्वमोहन भट्ट से गिटार पर राग बागेश्री में आलाप और गत, मध्य लय की रचना झप ताल में और द्रुत लय की रचना तीन ताल में निबद्ध है। साथ ही आप सुन सकेंगे गिटार पर ही राग मिश्र गारा में धुन।

0: इस समय आप गिटार पर पंडित विश्वमोहन भट्ट से रचनाएं सुन रहे थे। अब आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप क्रमशः हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिये। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: It is really our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज एआई आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और आरएफआईडी सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।